एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 20वीं तिथि, तदनुसार 11 जुलाई सन 2026। प्रातः के 5:58 हुए हैं। अब हमारे केंद्र से आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने को हैं। थोड़ी ही देर बाद आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच मुक्त व्यापार समझौते सहित वाणिज्य और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर बातचीत जारी है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और प्रमुख उद्योग तथा खेल जगत की हस्तियों से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया की यात्रा पूरी करने के बाद न्यूजीलैंड पहुंचे। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। भारतीय समुदाय ने भी उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी की 2 दिवसीय यात्रा के स्वागत में ऑकलैंड के प्रसिद्ध स्काई टॉवर को भारतीय तिरंगे के रंगों से रोशन किया गया है। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये न्यूजीलैंड की 40 साल बाद पहली यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत की राजदूत मुआनपोई साइवई ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों को लाभ होगा।
2: फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी।
3: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुँचा सकें।
2: And then we can sell to further markets as well.
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज बिहार के गया जी का दौरा करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृहमंत्री कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाना चाहिए। स्वदेशी स्टील फिगरेट INS महेंद्र गिरी को आज आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। समारोह से पहले रक्षा मंत्री ने नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखना भारत की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि देश का 90% से अधिक व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, इसीलिए समुद्री सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। ये सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। रेलवे ने उत्तरी रेल के 680 किलोमीटर मार्गों पर स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन के लिए 206 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार करना है। इस बीच रेलवे ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक इंजन के लिए अतिरिक्त प्राथमिक रखरखाव केंद्र बनाने के लिए 175 करोड़ रुपए मंजूर किए। प्राथमिक केंद्र में इंजन की सुरक्षा जाँच, मरम्मत और देखभाल की जाती है। भाजपा ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी ने मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है। बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजलपुर विधानसभा सीटों पर मतदान 30 जुलाई को होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन अहमद अल बुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क,

0: समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा एआई क्षेत्रों पर केंद्रित रही। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों तथा सिक्किम में मूसलाधार और कुछ स्थानों पर अत्यधिक बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। खेलों में फीफा विश्व कप में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। स्पेन के लिए विजयी गोल मिकेल मेरिनो ने 88वें मिनट में किया। आज तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। विंबलडन टेनिस में आज महिला सिंगल्स फाइनल में चेक गणराज्य की कैरोलिना मुकोवा का मुकाबला लिंडा नोस्कोवा से होगा। दोनों खिलाड़ी पहली बार विंबलडन फाइनल में पहुंची हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एक 103.4 MHz पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। चिंतन।

ईश्वरीय शक्ति अदृश्य शक्ति है। ये शक्ति हमारे भीतर विश्वास, सहनशीलता और सच्चाई की प्रेरणा है। ये अदृश्य शक्ति हमें सही राह पर चलने की प्रेरणा देती है, भले ही हमारे सामने कितनी भी चुनौतियाँ क्यों न हो। कई बार जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब कोई अदृश्य सहारा हमें फिर से पुनः प्राप्ति की ताकत देता है। ये ईश्वर की लीला है। हमें चाहिए हम इस अदृश्य शक्ति पर विश्वास रखें। जब मनुष्य अपने कर्मों में सत्य, प्रेम और श्रद्धा रखता है, तब ईश्वरीय शक्ति स्वतः उसके जीवन में प्रवाहित होती है। ये शक्ति न तो दिखती है, न ही उसे बंद किया जा सकता है, लेकिन उसका प्रभाव अमिट होता है। यही विश्वास हमें हर मुश्किल से लड़ने की शक्ति देता है और जीवन को एक ऊंचे उद्देश्य की ओर ले जाता है।

केंद्र से। प्रभु परमात्मा सर्वव्यापी हैं, हम अपने फर्जों को निभाते हुए भी परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं और प्रभु की प्राप्ति कर सकते हैं।

सिवाय प्रभु नाम के कोई कर्म नहीं है जो बंधनों से आजाद कर सके। अगर मुक्ति है तो प्रभु नाम में है।

ये थी वंदना कार्यक्रम की अंतिम भक्ति रचना। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। 6:40 हुए हैं, आइए अब सुनते हैं श्री राम चरित मानस गान।

राम राम की रट लगाते हुए दशरथ जी उस पक्षी की भांति बेहाल हो रहे हैं जिसके पंख काट दिए गए हों। वो मन ही मन कामना कर रहे हैं कि किसी प्रकार सवेरा न हो और इस वज्राघात का संदेश राम तक न पहुंचे। किंतु प्रकृति के कार्यकलाप भला किस भांति रुक सकते हैं। राजा के विलाप करते करते सवेरा हो गया और नित्य की भांति राजद्वार पर वीणा, बांसुरी और शंख ध्वनि होने लगी। भाटों द्वारा विरुदावली और गवैयों के गायन की ध्वनि दशरथ जी के हृदय में बाण की भांति मर्मांतक पीड़ा देने लगी। राजद्वार पर मंत्रियों तथा सेवकों का समूह महाराज के अब तक न जगने से चकित विस्मित हो रहा है। महल में भयानक शांति छाई देखकर मंत्री सुमंत्र अंदर प्रवेश करने में डर रहे हैं। कुछ पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। अंत में असमंजस छोड़ वे उस महल में गए जहां कैकेयी और महाराज थे। दशरथ जी की दशा देख वे स्तब्ध रह गए। मुखमंडल का रंग उड़ा हुआ, सोच से व्याकुल राजा यूं पड़े थे जैसे जल से उखड़कर कमल धरती पर मुरझाया पड़ा हो। सुमंत्र को कुछ पूछते न बन पड़ा। तब कैकेयी ने अशुभ संदेश सुनाया कि राजा को रात भर नींद नहीं आई। इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया किंतु इसका भेद नहीं बताते। तुम राम को जल्दी बुला लाओ, तब समाचार पूछना। किसी कुचक्र की आशंका से ग्रस्त सुमंत्र श्री राम के महल की ओर चले।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 6:50 हुए हैं। अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। सुबह 7:10 पर सुबह सुहानी कार्यक्रम में आज विशेष के साथ साथ विश्व जनसंख्या दिवस भीष्म साहनी की पुण्यतिथि आज की खबर और मौसम की जानकारी साझा की जाएगी। 7:40 पर आप सुनेंगे हिमाचली गीतों और लोकगीतों का कार्यक्रम शुभ प्याग गाने सुहाने, ये कार्यक्रम होगा 8:30 पर। सुबह 9:00 आज आप सुनेंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम गीतांजलि। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतों का कारवां ये प्रसारित किया जाएगा सुबह 10:00। 10:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम पहाड़ों के सुर। 11:05 पर आपके लिए पेश किया जाएगा कार्यक्रम गूंज पहाड़ों की। 11:30 पर आप सुनेंगे जय हिंद गीतमाला। सैनिकों के लिए ये कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर 12:00। 12:30 पर महिलाओं के लिए कार्यक्रम होगा सुनो सखी। 3:05 पर सामयिक चर्चा आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले की जाएगी। दोपहर 1:10 से लेकर शाम 5:00 तक हमारे केंद्र से रिले किए जाएंगे विविध भारती के कार्यक्रम। शाम 5:10 पर सुनिएगा भजन सुरमई सांझ, ये कार्यक्रम होगा शाम 6:06 पर। शाम 5:30 पर युवा साथी सुनेंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम युवा मंच। आज सुनिए सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो जीनियस। मौजा गराइंदिया ये कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे शाम 6:30 पर। इसमें जानकारी दी जाएगी राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के बारे में और किसान वाणी कार्यक्रम में किसान भाई सुनेंगे शाम 7:10 पर। रात 8:00 सुनिएगा विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस, देशगान 8:30 पर प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किया जाएगा कार्यक्रम हिम दर्शन रात 9:15 पर। रात 10:00 संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा। आकाशवाणी के शिमला केंद्र से प्रातः 9:20 पर सुबह 11:00 दोपहर 3:00 शाम 6:00 और 7:45 पर प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुबह 8:00 समाचार प्रभात, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज, रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या, 9:00 News@9, रात्रि 11:00 हिंदी में समाचार और सभा के अंत में 11:05 पर अंग्रेजी में

इंगलवुड नगरस्य लॉस एंजलिस क्रीडांगणे द्वितीयायां प्रागुपांत्य चक्रे बेल्जियम देशं द्वे एकम अंकहि पराजित्य उपांत्य चक्रे स्वस्थानं सुनिश्चितम अकरोत् इति वार्ताः।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ आज ऑकलैंड में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। वार्ता के बाद दोनों देशों ने रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 40 वर्ष बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है।
1: 40 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आना हुआ है और एक प्रकार से आपकी आर्थिक राजधानी में कार्यक्रम बना करके भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों को एक नई ताकत देने का एक अवसर पैदा किया है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। ये हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है जो हमारे संबंधों की नई ऊर्जा, हमारी मित्रता के नए संकल्प को दोहराने वाला है।
0: प्रधानमंत्री ने न्यूजीलैंड सरकार द्वारा मुक्त व्यापार समझौते की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इससे दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे। इससे पहले गवर्नमेंट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। प्रधानमंत्री आज भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे तथा उद्योग और खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से मुलाकात करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज एक दिन के बिहार दौरे पर गया जी जाएंगे। इस दौरान वे बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृह मंत्री ने कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाना चाहिए। स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी को आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। ये भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। समारोह से पहले रक्षा मंत्री ने नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखना भारत की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि देश का 90% से अधिक व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, इसलिए समुद्री सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। भाजपा ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी ने मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है। बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजलपुर विधानसभा सीटों पर 30 जुलाई को मतदान होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा AI क्षेत्रों पर केंद्रित रही। फीफा विश्व कप में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। स्पेन के लिए विजय गोल मिकेल मेरिनो ने 28वें मिनट में किया। आज तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 बजे शुरू होगा। विंबलडन टेनिस में आज महिला सिंगल्स फाइनल में चेक गणराज्य की कैरोलिना मुकोवा का मुकाबला लिंडा नोस्कोवा से

होगा। दोनों खिलाड़ी पहली बार विंबलडन फाइनल में पहुंची हैं। पुरुष सिंगल्स फाइनल में कल विश्व के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर का सामना जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 7:10 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम सुबह सुहानी।
1: सुबह सुहानी।

0: सुबह सुहानी।
1: नमस्कार, सुबह सुहानी कार्यक्रम के साथ हाजिर हूँ मैं आपकी रेडियो दोस्त संगीता, और आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम का आगाज सुविचार के साथ। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ, यही सफलता का मूल मंत्र है। जी हाँ, हम अपने भाग्य के निर्माता खुद हैं। डर को छोड़ना, अपनी ताकत को पहचानना और समाज की भलाई के लिए आगे बढ़ना ही असली काम है।

सुबह सुहानी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। और अब नजर डालते हैं इतिहास में आज के दिन कौन कौन सी घटनाएं हुई, यानी किस घटना ने आज के दिन को बनाया खास और विशेष। मंगोलिया को चीन से आजादी आज ही के दिन 1921 में मिली थी। 1889 में सोबा बाजार क्लब किसी फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग लेने वाली पहली भारतीय टीम बनी थी। 1893 में 11 जुलाई के दिन जापान के व्यवसायी कोकिचो मिकीमोटो ने पहली बार मोती को लैब में तैयार किया था। उस दौर में मनुष्य द्वारा मोती को तैयार कर पाना असंभव माना जाता था। और ख़ास बात ये भी है कि 2002 से 2007 तक और फिर 2017 में मिस यूनिवर्स के ताज के तौर पर प्रयोग होने वाला फीनिक्स मिकीमोटो क्राउन भी उनके आविष्कारों में से एक है। 2003 में आज ही के दिन हिंदी विकिपीडिया की शुरुआत हुई थी। आपको बता दें विकिपीडिया 301 अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध है। भारत के पहले रक्षा मंत्री और प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी सरदार बलदेव सिंह का जन्म पंजाब में 1902 में हुआ था। और 2003 में आज ही के दिन भारतीय लेखक भीष्म साहनी का निधन हुआ था। भीष्म साहनी की कई प्रसिद्ध रचनाएं थी। उनके उपन्यास तमस पर तो 1986 में एक फिल्म भी बनाई गई थी। 1998 में उन्हें भारत के तीसरे सबसे बड़े पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इनके बारे में और भी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे इस गीत के बाद।

सुबह सुहानी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। हिंदी साहित्य के महान स्तंभ उपन्यासकार और नाटककार भीष्म साहनी जी की पुण्यतिथि 11 जुलाई को मनाई जाती है। इनका निधन 11 जुलाई 2003 को दिल्ली में हुआ था। साहनी जी ने अपनी लेखनी से भारतीय समाज की कड़वी सच्चाइयों, विशेषकर देश के विभाजन के दर्द को बेहद संजीदगी से पन्नों पर उतारा था। तमस उनकी कालजयी कृतियों में से एक है। इस उपन्यास पर प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक गोविंद निहलानी ने एक बेहद लोकप्रिय टीवी धारावाहिक और फिल्म भी बनाई थी। भीष्म साहनी सिर्फ एक लेखक ही नहीं बल्कि एक बेहतरीन शिक्षक, अनुवादक और अभिनेता भी थे। उन्होंने अपने बड़े भाई बलराज साहनी के साथ रंगमंच पर काम किया। मोहन जोशी हाजिर हो और मिस्टर एंड मिसेस अय्यर जैसी फिल्मों में अभिनय भी किया। साहित्य में उनके अमूल्य योगदान के लिए उन्हें 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1998 में उन्हें भारत के तीसरे सबसे बड़े पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उनकी पुण्यतिथि पर देश हर साल साहित्य जगत के इस भीष्म पितामह को याद करता है, जिन्होंने अपनी सरल भाषा और गहरी मानवीय संवेदनाओं से करोड़ों पाठकों के दिलों में अपनी जगह बनाई।

सुबह सुहानी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। और श्रोताओं, 11 जुलाई को भारत सहित पूरे विश्व में विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इस दिन विश्व की जनसंख्या 5 अरब का आंकड़ा पार कर चुकी थी। इसी कारण 1987 में हर साल इस दिवस को मनाया जाता है, यानी 1987 से हर साल इस दिवस को मनाने की परंपरा शुरू हो गई। और इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों के बीच परिवार नियोजन, लैंगिक समानता, गरीबी, मातृ स्वास्थ्य और मानव अधिकारों जैसे महत्वपूर्ण जनसंख्या संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। और वर्ष 2026 की थीम है युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं को साकार करना आज और भविष्य के लिए। ये थीम इस बात पर जोर देती है कि दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए युवाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल और अधिकारों में निवेश करना कितना जरूरी है। जनसंख्या का बढ़ना सिर्फ एक संख्या नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर हमारे संसाधनों और जीवन स्तर पर पड़ता है। पानी, भोजन और ऊर्जा जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर भी दबाव बढ़ता है। तेजी से बढ़ती आबादी के कारण बेरोजगारी, गरीबी और कुपोषण जैसी चुनौतियां भी सामने आती हैं। वर्तमान में विश्व की आबादी 8 अरब पार कर चुकी है। इसीलिए ये दिन हमें याद दिलाता है कि एक संतुलित और खुशहाल समाज के लिए जनसंख्या का स्थिर और नियंत्रित होना बेहद ज़रूरी है।

सुबह सुहानी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। और अब आज की खबर। ऑस्ट्रेलिया से भारत की सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी तीन प्राचीन धरोहरें वर्षों बाद भारत वापस लाई जा रही हैं। 40 साल बाद भारत के प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड दौरा, ये भारत न्यूजीलैंड की मित्रता को और प्रगाढ़ करेगा। अब खबरें हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में जनगणना 2027 के प्रथम चरण के कार्यों की प्रगति समीक्षा 15 जुलाई तक पूरा करने के निर्देश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है, भविष्य में कई सरकारी दफ्तर कांगड़ा जिले में स्थानांतरित किए जाएंगे। उन्होंने ये घोषणा धर्मशाला में पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष के कार्यालय का डिजिटल माध्यम से उद्घाटन करने के दौरान की। सरकार ने हाल ही में इस कार्यालय को शिमला स्थित सचिवालय से कांगड़ा जिले में स्थानांतरित किया था। राज्य सरकार ने कांगड़ा को पर्यटन राजधानी घोषित किया है। हिमाचल प्रदेश में पुलिस में भर्ती होने का मौका, आज से ऑनलाइन आवेदन। 734 पदों के लिए 6 अगस्त तक होंगे आवेदन। आयु सीमा 18 से 29 वर्ष तय की गई है। किसानों के लिए जरूरी खबर। जिला सोलन में धान और मक्की की फसल का बीमा करवाने की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। ये जानकारी कृषि उप निदेशक सोलन डॉक्टर देवराज कश्यप ने दी। जिला सोलन में

टमाटर की फसल बीमा करवाने की तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। इच्छुक किसान फसलों का बीमा अपने नजदीकी लोक मित्र केंद्र के माध्यम से करवा सकते हैं। हिमाचल में मॉनसून ने पकड़ी रफ्तार, कई जिलों में जमकर बरसेंगे बादल, ऑरेंज अलर्ट जारी। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने अगले कई दिनों तक भारी से भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। 8 जिलों में भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी और लगातार हो रही बारिश के कारण कई जगहों पर स्कूल कॉलेज बंद। नदी नालों से दूर रहने और लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने को भी कहा गया है।

सुबह सुहानी। सुबह के 7:40 हुए हैं। FM धर्मशाला पर अगला कार्यक्रम है शुभ प्रयाग।

शुभ प्रयाग कार्यक्रम में आप सुना करते हैं हिमाचली गीत और लोकगीत। आज के कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं ये भजन।

0: भूमिका निभा सकते हैं। स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट महेंद्र गिरी आज नौसेना में शामिल होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो के क्रियान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की, मजबूत तटीय सुरक्षा उपायों के निर्देश दिए। फीफा विश्व कप में स्पेन बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में, आज रात तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से। और विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज्य की कैरोलिना मुकोवा हमवतन लिंडा नोस्कोवा के साथ खेलेंगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच आज ऑकलैंड में द्विपक्षीय वार्ता हुई। इसके बाद दोनों देशों ने रक्षा, पशुपालन एवं डेयरी, पर्यटन, खेल और आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑकलैंड स्थित गवर्नमेंट हाउस में औपचारिक स्वागत किया गया। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने उन्हें राजकीय सम्मान के साथ रिसीव किया। औपचारिक स्वागत के बाद दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस दौरान रक्षा, पशुपालन, डेयरी, पर्यटन, खेल और आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ, जिससे भारत न्यूजीलैंड साझेदारी को नई गति मिली। इसके बाद दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत न्यूजीलैंड बिजनेस एंगेजमेंट कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने रिकॉर्ड कार समय में मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने पर खुशी जताई और विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2030 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2 गुना हो जाएगा। उन्होंने न्यूजीलैंड के उद्योग जगत को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि भारत केवल एक बड़ा बाजार ही नहीं बल्कि वैश्विक विकास का एक सशक्त लॉन्च पैड भी है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
0: वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 40 वर्ष बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है।
2: 40 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आना हुआ है और एक प्रकार से आपकी आर्थिक राजधानी में कार्यक्रम बना करके भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों को एक नई ताकत देने का एक अवसर पैदा किया है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। ये हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है जो हमारे संबंधों की नई ऊर्जा, हमारी मित्रता के नए संकल्प को दोहराने वाला है।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जो भविष्य के सहयोग को नई दिशा देगा। प्रधानमंत्री ने भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते को द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने वाला एक ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
2: लोकतांत्रिक मूल्यों के में दृढ़ विश्वास हमें नेचुरल पार्टनर बनाता है, मेड फॉर ईच अदर जैसा है ये। और दूसरी प्रकार से दो मैरिटाइम देश के रूप में हमारा करीबी सहयोग इंडो पैसिफिक को एक नई ताकत देता है और शांति के हमारे जो लक्ष्य है उसको अचीव करने में हमारे संबंध एक नई ऊर्जा भर सकते हैं।
0: न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाई देगी। उन्होंने कहा कि सामरिक साझेदारी से व्यापार सहित कई क्षेत्रों में सहयोग का दायरा और बढ़ेगा।
3: Marking the first visit by an Indian Prime Minister to New Zealand in 40 years. This visit is also a significant milestone in the New Zealand-India relationship. When I visited last year, you welcomed me and my delegation with great warmth and tremendous generosity.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और उद्योग तथा खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से भी मुलाकात करेंगे। स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी को आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। ये भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। समारोह से पहले रक्षा मंत्री ने नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता का प्रमुख संरक्षक है। उन्होंने कहा कि देश का 90% से अधिक व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, इसलिए समुद्री सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है।
4: हमारे व्यापार का 90% से अधिक हिस्सा समुद्री मार्ग से ही होता है। हमारे विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिक जोन है, हमारे आइलैंड टेरिटरीज है और यह जो रीजन है और आज पहले से कहीं अधिक कॉम्प्लेक्स और अधिक चैलेंजिंग होता जा रहा है और इस रीजन में एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स की प्रेजेंस और एक्टिविटी लगातार बढ़ रही है, इससे आप प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख रहे हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाना चाहिए। उन्होंने वर्तमान बुनियादी ढांचे का उपयोग करते हुए पत्तन सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण शीघ्र शुरू करने का निर्देश दिया।
2: इस बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, खुफिया ब्यूरो के निदेशक, सीमा प्रबंधन सचिव, पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय सचिव, मत्स्य पालन विभाग के सचिव, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। BOPS का गठन मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 की धारा 13 के प्रावधानों के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में किया जा रहा है। ब्यूरो का नेतृत्व एक महानिदेशक करेंगे और यह पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के अधीन काम करेगा। श्री शाह ने मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के साथ मछली पकड़ने वाले बंदरगाहों और मछली उतारने के केंद्रों के लिए सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी की। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज एक दिन के बिहार दौरे पर गया जी जाएंगे। इस दौरान वे बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हाल के तनाव के बावजूद अमेरिका और ईरान वार्ता जारी रखने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान ने वार्ता जारी रखने का अनुरोध किया है और अमेरिका इस पर सहमत हो गया है। अमेरिका ने ईरान से होर्मुस जलडमरू मध्य में जहाजों पर हमले रोकने की मांग की है। इन हमलों के कारण तनाव बढ़ने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। वेनेजुएला में पिछले महीने आए 2 शक्तिशाली भूकंप में मरने वालों की संख्या 4,000 से अधिक हो गई है। वेनेजुएला संसद प्रमुख जॉर्ज रोड्रिगेज के अनुसार अब तक 4,118 लोगों की मौत हो चुकी है और 16,740 लोग घायल हुए हैं। वहीं हजारों लोग अब भी लापता हैं। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत लोगों को पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के काम में लगे आशीष अग्रवाल से बातचीत प्रसारित की जाएगी।
3: प्लास्टिक को रिप्लेस कर दिया हमने कपड़े के बैग से, वैसे ही प्लास्टिक की बॉटल्स को रिप्लेस कर दिया मेटल की बॉटल से, टिश्यू पेपर को रिप्लेस कर दिया रुमाल वगैरह से। अनरीड मेल्स 2000 रहेंगे, 5000 रहेंगे, 10000 रहेंगे, 100 रहेंगे, कितना बड़ा मेल है उसमें अटैचमेंट है कि नहीं है, तो सिर्फ इनबॉक्स को अगर हम लोग क्लियर रखते हैं उससे बहुत सारे एमिशंस बच सकते हैं।
4: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: ये चर्चा आज सवेरे 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड पर प्रसारित होगी। मौसम विभाग ने बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले 3 दिन मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। और अब खेल खबरों के साथ है मुकेश कुमार।
5: स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। लॉस एंजलिस में आज क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हरा दिया। स्पेन के लिए विजयी गोल मिकेल मेरिनो ने 88वें मिनट में किया। इससे पहले फ्रांस ने पहले क्वार्टर फाइनल में मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 शुरू होगा। वहीं चौथे क्वार्टर फाइनल में कल मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। उधर विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज की कैरोलिना मुकोवा का सामना लिंडा नेस्कोवा से होगा। चेक गणराज्य की दोनों खिलाड़ी पहली बार विंबलडन फाइनल में पहुंची हैं। पुरुष सिंगल्स फाइनल में कल विश्व के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर का सामना जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव से होगा। सिनर ने सेमीफाइनल में नोवाक जोकोविच को और ज़वरेव ने ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इस बीच लंदन के लॉर्ड्स में पहले महिला क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में कल के 21 रन पर एक विकेट के स्कोर से आगे खेलेगा। कल का खेल समाप्त होने के समय माया बाउचियर 17 और हीथर नाइट 1 रन बनाकर क्रीज पर थीं। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 285 रन बनाए थे। स्मृति मानधना ने 83 रन, कप्तान हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा ने अर्धशतक बनाए।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन यायार मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
6: धन्यवाद कनक। पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण से संबंधित खबर आज अखबारों के पहले पन्ने पर है। हिंदुस्तान ने सरकार का बयान दिया है, E20 से माइलेज थोड़ा घटेगा मगर इंजन सुरक्षित। जनसत्ता लिखता है, पेट्रोलियम मंत्रालय ने दी जानकारी, इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से 5% कम हो जाएगी औसत। पत्र ने संपादकीय में लिखा है, ये अच्छा हुआ कि अंततः सरकार की ओर से ये स्पष्ट किया गया कि E20 ईंधन से गाड़ियों का माइलेज भले ही कम होता हो लेकिन ये ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ पर्यावरण के लिए उपयोगी होने के साथ ही किसानों के लिए लाभकारी भी है। अल्कोहल युक्त दवाओं पर नए नियम लागू होने पर नवभारत टाइम्स ने नहीं मिलेगी छूट से लिखा है, अल्कोहल 12% से अधिक तो डॉक्टर की पर्ची से ही दवा, सरकार ने कहा हो रहा था गलत इस्तेमाल। सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान बदतमीजी करने पर याचिकाकर्ता को कक्ष से बाहर निकाले जाने की खबर दैनिक जागरण, नवभारत टाइम्स और हिंदुस्तान में है। दिल्ली में भूजल में तय सीमा से अधिक यूरेनियम, NGT सख्त, अमर उजाला की खबर है। वंदे मातरम जन गण मन को लेकर नई गाइडलाइन पर पंजाब केसरी लिखता है, सभी राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं और पहले वंदे मातरम तथा उसके बाद जन गण मन गाया जाएगा। फीफा विश्व कप की खबर देते हुए जनसत्ता ने लिखा है, गोल्डन बूट की दौड़ में अब एम्बाप्पे आए मेसी के बराबर। अमर उजाला ने अमरनाथ यात्रा पर लिखा है, प्रकृति में दखल से जल्दी अंतर्ध्यान हुए बाबा बर्फानी। दैनिक भास्कर ने अपने खास आलेख में लिखा है, अतीत आज से बेहतर ये सच नहीं, बीते कल की चाहत में आज गुम न होने दे, यादों से ऊर्जा ले, भविष्य की चुनौतियों से लड़ सकेंगे।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और न्यूजीलैंड ने आर्थिक तथा रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रक्षा, आपदा प्रबंधन और पशुपालन सहित प्रमुख क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। स्वदेशी स्टील फ्रिगेट महेंद्र गिरी आज नौसेना में शामिल होगा। फीफा विश्व कप में स्पेन बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंचा। आज रात तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। और विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज्य की कैरोलिना मुकोवा अपने ही देश की लिंडा नोस्कोवा से खेलेंगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस: India and New Zealand signed 5 MOUs in key areas including defense, disaster management and animal husbandry to boost economic and strategic cooperation. Prime Minister Narendra Modi holds delegation level talks with New Zealand Prime Minister Christopher Luxon in Auckland, says India and New Zealand can play important role in strengthening peace and security in Indo-Pacific region. Indian Navy to commission indigenous stealth frigate Mahendragiri in Vishakhapatnam today. Home Minister Amit Shah reviews progress in rollout of Bureau of Port Security, directs stronger coastal security measures. In FIFA World Cup, Spain books spot in semi-finals, defeating Belgium 2-1, Norway to face England in third quarter-final tonight. And in Wimbledon tennis, Czechia Karolina Muchová to face compatriot

हम अपने सभी श्रोताओं को याद दिला दें कि इस रविवार दिनांक 12 जुलाई 2026 को सुबह 9 बजे से 10 बजे तक प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम का विषय होगा डिजिटल आई स्ट्रेन। इस विषय से संबंधित अपनी जिज्ञासाएं और प्रश्न स्टूडियोज में उपस्थित नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप महाजन से आप पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए दिन और समय नोट कर लें, रविवार दिनांक 12 जुलाई 2026 सुबह 9 बजे से 10 बजे तक। प्रश्न पूछने के लिए हमारा टेलीफोन नंबर है 01892224391। फ़ोन नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए 01892224391। तो फ़ोन करना न भूले, रविवार दिनांक 12 जुलाई 2026 सुबह 9 बजे से 10 बजे तक FM 103.4 MHz पर और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी आप इसे सुन सकते हैं। सूचना समाप्त हुई। गाने सुहाने कार्यक्रम का अगला गीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन पर सजा हुआ, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म आक्रमण।

एतवार फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। आशा भोसले और भूपेंद्र सिंह ने इस गीत को गाया था। हसन कमाल के बोल थे भप्पी लहरी का संगीत। गाने सुहाने कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम का आखिरी गीत पेश कर रहे हैं दूसरा आदमी। इस फिल्म का ये गीत है, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल हैं। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें हैं।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार के गाए इसी खूबसूरत से गीत के साथ आज का गाने सुहाने कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बजे हैं। अब प्रस्तुत है सजीव फोन इन कार्यक्रम गीतांजलि। सुबह की खूबसूरत सी सुबह, रिमझिम बारिश की फुहारे, हाथ में चाय का प्याला और रेडियो पर बजती एक ऐसी धुन जो सीधे दिल में उतर जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो हमसफर संगीता और आप सुन रहे हैं सजीव फोन इन कार्यक्रम गीतांजलि, दिल की बातें गानों के साथ। श्रोताओं, कुछ गाने जिनके बोल हमें बहुत कुछ सिखा देते हैं, दिल को छू लेते हैं, और कुछ ऐसे ही गीतों के बारे में आज आप अपनी भावना, अपनी याद हमारे साथ साझा कर सकते हैं कि कौन सा है वो गीत, वो गाना और क्यों वो आपको अच्छा लगता है। बस यही सारी बातें करने के लिए आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। टेलीफोन लाइनें खुल चुकी हैं और फ़ोन नंबर है वही जाना पहचाना 01892224391। जी हाँ, 01892224391।

0: जी नमस्ते।
1: नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं और कहां से?
0: जी प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
1: जी उज्जैन से बात कर रहे हैं आप, कैसा मौसम है वहाँ पर?
0: जी मौसम काफी अच्छा है, ठंडी हवाएं चल रही है, बरसात हो चुकी है यहाँ पर।
1: जी
0: हाँ जी,
1: सुहावना मौसम
0: बन चुका है।
1: जी बहुत सुहावना मौसम हो चुका है जी। तो आज हमने जो विषय रखा है वो ये है कि कुछ गाने जिनके बोल हमें बहुत कुछ सिखा देते हैं, दिल को छू जाते हैं, और ऐसे ही कुछ गीतों के बारे में जो आपको अच्छा लगता है उनके बारे में आप अपनी भावना हमारे साथ व्यक्त कर सकते हैं।
0: जी
1: जी
0: बिल्कुल, जैसे आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि गाना है प्यासा सावन फिल्म का,
1: जी
0: मेघा रे मेघा मत परदेश जा।
1: हाँ जी,
0: तो इस समय वो बारिश अगर हमारे यहाँ पे परदेश न जाते हुए अगर हमारे यहाँ पे बरसात कर देते हैं, मेघा बरसात हो जाती है, तो मतलब किसानों को काफी फायदा होता है और फसल में भी काफी मतलब होता है, प्रॉफिट मिलता है।
1: जी तो ये गाना आपको दिल से पसंद है?
0: हाँ जी काफी पसंद है, और मैं एक दो बार इसकी फरमाइश भी कर चुका हूँ
1: जी,
0: क्योंकि अभी बादल भी आ रहे हैं, बरस बहुत कम रहे हैं, तो उनसे तो हमें रिक्वेस्ट भी करेंगे और सॉन्ग भी अच्छा लगता है ये।
1: अच्छा जी, चलिए बहुत अच्छी बात है, और बहुत ही अच्छा गाना है ये प्यासा फिल्म का, और जितेंद्र और मौसमी चटर्जी पर ये गाना जो है फिल्माया गया था।
0: जी बिल्कुल, प्यासा सावन का है, मेगा रे मेगा मत परदेश जा।
1: जी बिल्कुल, हम सिर्फ आपसे जानना चाहेंगे कि कौन सा जो गीत है आपको अच्छा लगता है, लेकिन गाने
0: हाँ।
1: हम अपनी मर्जी के चलाने वाले हैं
0: हाँ
1: आज के इस कार्यक्रम में।
0: गाने आपकी मर्जी के चलेंगे।
1: जी जी जी
0: बाकी
1: बिल्कुल,
0: श्रोता से मतलब उनकी पसंद के गाने जानेंगे केवल आप,
1: हाँ
0: जो उनके
1: जी
0: दिल के करीब हो।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, और
0: जी
1: जो
0: और
1: हमारी
0: आपको
1: पसंद के
0: बताऊं,
1: गीत है वो भी आप सुनते रहिए, वो भी बहुत ही खूबसूरत है, हमें दिल से पसंद है वो सारे गाने।
0: जी हाँ और आपको
1: जी
0: बताऊं, मैं मोबाइल ऐप से कार्यक्रम सुनता हूँ आपके,
1: जी
0: और मैं मोबाइल पर आने की वजह से मतलब काफी श्रोताओं का नेटवर्क बढ़ चुका है, आकाशवाणी के श्रोता बढ़ चुके हैं, और हर राज्य के कार्यक्रम सुनने को स्पष्ट रूप से मिलते हैं।
1: और
0: हाँ
1: बहुत
0: जी
1: सारी जानकारी हमें प्राप्त होती है, और नए नए श्रोता जो क्या सोचते हैं उनके बारे में भी हमें पता लगता रहता है।
0: जी बिल्कुल
1: जी आपने कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी थैंक यू सो मच।
1: इनकी तरह आप भी अपने दिल की बात हम संग साझा कर सकते हैं कि कौन सा ऐसा गीत है जो आपको दिल से पसंद है।

0: हेलो,
1: हेलो संगीता जी, नमस्कार।
0: नमस्ते जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया है जी, आप सुनाइए क्या समाचार है,
0: बहुत
1: मौसम
0: बढ़िया।
1: कैसा है?
0: हमारे यहाँ रिमझिम बारिश हो रही है।
1: चलिए कोई बात नहीं,
0: और
1: हमारे
0: आपके
1: जहाँ भी
0: यहाँ का मौसम कैसा है?
1: मौसम देखिए, 5-6 दिन हो गए बारिश नहीं हो रही, बहुत गर्मी हुम्मस है, तो
0: जी
1: आप थोड़ा थोड़ा बादल छाए हुए हैं और बूंदाबांदी भी थोड़ी थोड़ी ड्रिजलिंग जैसे बोलते हैं ना, फुहारा चल रहा है, वैसा मौसम है।
0: जी खूबसूरत सा सुहावना सा मौसम है, लेकिन जब थोड़ी थोड़ी थोड़ी बारिश होती है तो उमस भी हो जाती है।
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: चलिए, ये प्रकृति का नियम है, मौसम है ऐसे ही।
1: बिल्कुल
0: और
1: जी,
0: देखिए,
1: बिल्कुल
0: प्रकृति का हर रूप हमें प्यारा लगता है। ये पहाड़, झरने, नीला आसमान, चांद, सितारे, मौसम, सब कुछ दिल को अच्छे
1: बिल्कुल,
0: लगते हैं।
1: इसलिए
0: जी
1: हमको प्रकृति के साथ ही चलना चाहिए। देखिए, जैसे प्रकृति दिन होता है तो रात होती है, रात होती है तो दिन होता है, तो वो तो समय चलता ही रहता है, इसमें कोई दो राय तो नहीं है। लेकिन हम लोग हैं जो सामाजिक प्राणी हैं, तो हम घबरा जाते हैं, कुछ थोड़ा सा भी दुख आया तो हमको कष्ट होने लगता है, ये क्या हो गया। तो जिस आदमी के मतलब सकारात्मक है ना, सोच है, वो तो कभी नहीं जिंदगी में घबराता। देखिए, कष्ट आते हैं जाते हैं, मौसम आते हैं जाते हैं, तो जीवन ऐसे ही चक्कर चलता रहता है, तो इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो आज गर्मी है तो कल सर्दी भी आएगी।
0: जी बिल्कुल। और कौन सा ऐसा गीत है जो आपके दिल को छू जाता है?
1: देखिए संगीता जी, गीत तो ऐसे हैं, देखिए ये कवि के ऊपर जो लिरिक्स लेखक हैं, जो गाने लिखते हैं, उनको चाहिए कि हम समाज में ऐसे गाने प्रस्तुत करें जिससे कि हम वातावरण के बारे में या हमारे देश समाज के बारे में या किसी मनुष्य के बारे में कोई भी ऐसे इस तरह का गाना लिखें जिससे कि हम अपने परिवार में बैठ करके अच्छे तरीके से सुन सकें
0: जी,
1: और हम
0: आज
1: से
0: हम बात
1: उनको।
0: कर रहे हैं राणा जी, कि कौन सा गीत आपको अच्छा लगता है। हमारे कवियों ने, गीतकारों ने बहुत ही अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे गीत लिखे
1: बहुत
0: हैं।
1: बहुत आप बड़ी बढ़िया गीत लिखे हैं।
0: हर
1: हाँ जी,
0: परिस्थिति के
1: बहुत
0: गीत
1: बहुत
0: लिखे
1: बढ़िया गीत
0: हैं।
1: लिखे हैं,
0: जी
1: इसमें तो कोई गुंजाइश ही नहीं है।
0: जी तो वो
1: लेकिन
0: बताइए ना,
1: आजकल
0: कौन सा
1: सभी
0: गीत आपको अच्छा लगता है जो आपके दिल के करीब है बहुत
1: गाने जो
0: ही?
1: अच्छे हैं, एक गाना तो मुझे, एक फूल दो माली का गाना है, किस्मत का लिखा कौन टाले मेरे भैया, किस्मत के खेल निराले मेरे भैया। देखिए उसमें बिल्कुल सच्चाई लिखी हुई है कि किस्मत का लिखा कौन टाले मेरे भैया। तो कवि की जो कल्पना होती है वो इस तरह से कल्पना करते हैं कि जो सच्चाई है जीवन की या दुनिया की, वो सामने प्रस्तुत कर देते हैं। लेकिन कई कवि ऐसे होते हैं जो आजकल के गाने हैं, उसका को ना ऊट पटांग, ऐसे गाने होते हैं, उसका ना सिर होता है ना पाँव होता है,
0: जी, हम
1: ना
0: उनकी
1: सुनने
0: बात
1: में
0: नहीं
1: मजा
0: कर रहे
1: आता
0: हैं, आज हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि कौन सा गीत आपको अच्छा लगता है। और आपने बताया कि एक फूल दो माले फिल्म का गीत आपको बहुत ही पसंद है। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपने फ़ोन किया। और ऐसे ही अच्छे और मज़ेदार से गीत हम आपके लिए भी पेश करते रह रहे हैं। सजीव फोन इन कार्यक्रम गीतांजलि है ये। और इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए टेलीफोन नंबर है 01-8922-2-4-3-9-1। हेलो
2: हेलो,
0: हेलो, नमस्कार जी।
2: नमस्ते मैम जी।
0: जी अपना नाम बताइए और बताइए कहाँ से बात कर रही हैं।
2: मैम मैं अंजू बोल रही हूँ, डांड से।
0: जी

0: अंजू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में।
1: थैंक यू मैम जी।
0: जी, आज हम बात कर रहे हैं उन गीतों की जो सीधे दिल को छू जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम कहीं कोई बात कर रहे होते हैं, शब्द कम पड़ जाते हैं, तो एक धुन, एक गीत सब कुछ कह जाता है। जैसे लगता है कि ये गीत आपके लिए ही बना है।
1: मैम, पुराने गीत अच्छे लगते हैं, जैसे आप आए बाहर आई हैं।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल। कोई एक ऐसा गीत जो बहुत पसंद है?
1: मैम, हीना फिल्म के गाने।
0: सारे गाने आपको अच्छे लगते हैं।
1: हाँ जी
0: जी, चलिए, बहुत
1: प्यार झुकता नहीं।
0: हाँ, बहुत ही प्यारे और खूबसूरत
1: बहुत
0: गीत
1: ही
0: हमारे।
1: प्यारा गीत है, इसमें दिल को छू लेने वाला गीत है वो तो।
0: जी बिल्कुल, प्यार झुकता नहीं फिल्म भी बहुत ही सुपर हिट रही थी, मिथुन चक्रवर्ती और पद्मिनी कोल्हापुरी। जी हाँ, जैसे कई बार होता है ना, कोई एक फिल्म हमें बहुत ही अच्छी लगती है, चाहे हम उसे 1000 बार देख ले, फिर भी ऐसा लगता है कि वो नई जैसी ही है, आज ही देखी है, आज ही हमने देखनी शुरू की है।
1: मैम, वो दीवाना फिल्म, दीवाना
0: ना जी, ऐसी होती है कई फिल्में, और वैसे ही कई गाने
1: वो
0: भी
1: तो मैं
0: ऐसे
1: बार
0: होते
1: बार
0: हैं।
1: देखना, मतलब एक हफ्ते में 2-3 बार लगे तो 2-3 बार ही देखती हूँ।
0: जी बहुत अच्छी बात है। और क्या कर रही हैं आप?
1: बस मैम, अभी खाने की तैयारी हो रही है, घर का काम कर रही है।
0: जी, बहुत अच्छी बात है, खाने की तैयारी कीजिए और सुनिए ये गीत, बहुत ही प्यारा सा ये गीत है। और आपने कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू मैम।

गीतांजलि कार्यक्रम जारी रहेगा प्रादेशिक समाचारों के बाद भी, और अब से थोड़ी ही देर बाद आकाशवाणी के शिमला केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। रिले की प्रतीक्षा करें।

बक्सल में अत्याधुनिक डिजिटल संग्रहालय का किया शुभारंभ। केंद्र सरकार ने 12% से ज्यादा अल्कोहल वाली दवाओं की बिना पर्ची के बिक्री पर लगाई रोक। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत ऊना जिला में 8611 महिलाओं को किया गया लाभान्वित। और प्रदेश में मॉनसून की भारी बारिश व भूस्खलन से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 6 जिलों के लिए जारी

0: रहेगा ऑरेंज अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कल शाम शिमला के बेंटनी कैसल में अत्याधुनिक डिजिटल संग्रहालय का शुभारंभ किया। ये संग्रहालय आधुनिक डिजिटल तकनीक के माध्यम से हिमाचल प्रदेश की समृद्ध संस्कृति, इतिहास और विरासत को संरक्षित करने और दुनिया तक पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेंटनी का शिमला के इतिहास में विशेष महत्व रहा है। यहाँ डिजिटल संग्रहालय की शुरुआत राज्य की विरासत के संरक्षण, सम्मान और वैश्विक स्तर पर प्रचार प्रसार की दिशा में एक नए अध्याय की शुरुआत है। ये डिजिटल संग्रहालय अतीत और भविष्य के बीच एक मजबूत सेतु का कार्य करेगा। इन सुविधाओं के माध्यम से आगंतुक हिमाचल की लोक परंपराओं, हस्तशिल्प, आध्यात्मिक विरासत और स्वतंत्रता सेनानियों की प्रेरणादायक गाथाओं को जीवंत और आकर्षक रूप में देख सकेंगे। साथ ही हिमाचल प्रदेश की ऐतिहासिक धरोहरों, महान विभूतियों के जीवन और योगदान, कालका शिमला रेलवे, राज्य गठन के बाद की विकास यात्रा, समृद्ध कला व संस्कृति और पारंपरिक खानपान को भी आकर्षक तरीके से प्रदर्शित किया गया है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि ये डिजिटल संग्रहालय भविष्य में हिमाचल प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान का प्रमुख केंद्र बनेगा।
1: हिमाचल प्रदेश का पहला डिजिटल म्यूजियम जो है वो शिमला के बैटरी कैसल में शुरू किया गया है और ये 8 करोड़ की लागत से बना, काफी पुरानी पहला डिजिटल म्यूजियम बैटरी कैसल के में बनाया गया है और ये हिमाचल संस्कृति को भी जनता को बताएगा और बाहर से जो पर्यटक आएंगे इसमें यहाँ का शिमला कैसे बना, कैसे रेलवे आया, पुराने उसको डिजिटल करके अपनाया गया।
0: इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री सहित अन्य पदाधिकारी व गणमान्य लोग मौजूद रहे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा का लाहौल स्पीति का आज प्रस्तावित दौरा खराब मौसम के कारण रद्द हो गया है। प्रदेश में हो रही भारी वर्षा के कारण केंद्रीय मंत्री का यह दौरा रद्द करना पड़ा है। नड्डा केलंग में ICMR के उच्च हिमालयी चिकित्सा व जनस्वास्थ्य अनुसंधान केंद्र का शिलान्यास करने वाले थे। केंद्र सरकार ने 12% से ज्यादा अल्कोहल वाली दवा के बिना पर्ची के बिक्री पर रोक लगा दी है। ये नियम 30 मिलीमीटर से बड़ी बोतलों पर लागू होगा। केंद्र सरकार ने इन दवाइयों के गलत और नशे के लिए इस्तेमाल को रोकने के लिए इन्हें सख्त नियामक निगरानी के दायरे में ला दिया है। इसके लिए सरकार ने ड्रग्स रूल 1945 में बदलाव किया है। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य बढ़ती आबादी की चुनौतियों, परिवार नियोजन, लैंगिक समानता, गरीबी और स्वास्थ्य जैसे गंभीर मुद्दों के प्रति वैश्विक स्तर पर लोगों को जागरूक करना है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की गवर्निंग काउंसिल ने 11 जुलाई 1989 में इसे औपचारिक रूप से मनाने की शुरुआत की। 2026 की थीम इस वर्ष के लिए युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं को साकार करना वर्तमान तथा भविष्य के लिए है। ये थीम युवाओं के विकल्पों, सशक्तिकरण और पारिवारिक जीवन में उनकी प्राथमिकताओं को समझने पर केंद्रित है। ये दिवस हमें याद दिलाता है कि संख्या के बजाय लोगों के जीवन की गुणवत्ता, कौशल और मानव संसाधन के विकास पर ध्यान दिया जाना चाहिए। भारत जैसे देश के लिए जहां एक विशाल युवा आबादी है, ये दिन शिक्षा और रोजगार के सही अवसरों के उपयोग पर जोर देता है। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना भारत सरकार द्वारा गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य में सुधार और आंशिक वेतन क्षतिपूर्ति के लिए चलाई जा रही एक प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना है। योजना के तहत ऊना जिला में 8611 महिलाओं को लाभान्वित किया गया है। इसके अंतर्गत प्रथम जीवित संतान के जन्म पर पात्र लाभार्थी महिला को 5000 रुपये, वहीं दूसरे प्रसव पर बालिका के जन्म की स्थिति में 6000 रुपये की एकमुश्त सहायता राशि का प्रावधान है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे ऊना जिला संवाददाता की ये रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के प्रभावी एवं पारदर्शी क्रियान्वयन के उद्देश्य से 15 जून से 15 जुलाई तक पूरे देश में विशेष पंजीकरण अभियान संचालित किया जा रहा है। इस कड़ी में ऊना जिला बाल विकास परियोजना में अधिकारियों, वृत्त पर्यवेक्षकों तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को नवीन डिजिटल प्रणाली एवं तकनीकी प्रक्रियाओं बारे अवगत करवाने हेतु एक विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जिला की प्रत्येक गर्भवती एवं धात्री महिला

0: तक योजना का लाभ सुगमता से पहुंचे। ऊना जिला में वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान इस योजना के अंतर्गत प्रथम प्रसव के लिए अब तक 7,472 लाभार्थियों को 1,87,00,000 रुपए तथा दूसरे प्रसव पर बालिका के जन्म के लिए 1,139 लाभार्थियों को 68,00,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भारत सरकार द्वारा प्रदान की जा चुकी है। आकाशवाणी के लिए ऊना से राजेश शर्मा।
1: प्रदेश में मॉनसून सक्रिय बना हुआ है। बीते 48 घंटे के दौरान प्रदेश में भारी वर्षा से जनजीवन प्रभावित हुआ है। राज्य में वर्षा से बाधित कई संपर्क सड़क मार्ग पेयजल योजनाओं को बहाल करने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। मौसम विभाग ने आज सिरमौर, शिमला, सोलन, किन्नौर, कुल्लू और मंडी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आगामी 15 जुलाई तक प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी रहेगा, जबकि 22 जुलाई के बाद प्रदेश में मॉनसून कमजोर पड़ने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक शोभित कटियार ने बताया कि सिरमौर, शिमला, कुल्लू, मंडी और सोलन में अगले 5 से 7 दिन तक मध्यम से भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है। वहीं कांगड़ा और चंबा में अगले 2 से 3 दिन तक मॉनसून सक्रिय रहने का पूर्वानुमान है। 22 जुलाई तक मध्यवर्ती क्षेत्रों में मध्यम और कुछ जिलों में भारी बारिश की संभावना है। इसके बाद मॉनसून के कमजोर होने की संभावना है। प्रशासन ने भूस्खलन और बाढ़ प्रभावित इलाकों में खतरे को देखते हुए लोगों से नदी नालों के किनारे ना जाने की सलाह दी है।
2: 11 जुलाई को प्रदेश के मध्यवर्ती इलाकों के लगभग सभी जिलों में बारिश की एक्टिविटी एक बार फिर से हमें बढ़ती हुई नजर आएगी। मुख्य रूप से जो हमारा सिरमौर जिला है, शिमला जिला है, उसी के साथ कुल्लू, मंडी और सोलन जैसे जिलों में बारिश की जो एक्टिविटी है वो मध्यम से लेकर के भारी स्तर तक की जो बारिश का दौर है वो 5 से 7 डेज तक लगातार चलता रहेगा। और वहीं पे जो हमारा पश्चिमी हिमाचल प्रदेश के कुछ एक जिले हैं जैसे कांगड़ा या चंबा की अगर मैं बात करूं तो वहां पे मध्यम से लेकर के भारी बारिश का दौर अगले 2 से 3 दिनों तक हमें देखने को मिलता रहेगा। जो हमारा सिरमौर जिला है, शिमला जिला है, सोलन, किन्नौर, कुल्लू और मंडी जैसे जिलों के लिए अभी फिलहाल 6 to 8 आवर्स के लिए हमने ऑरेंज अलर्ट और साथ में एडवाइजरी जारी की हुई है।
1: मंडी के उपायुक्त अपूर्व देवगन ने विद्यार्थियों का आह्वान किया है कि वे जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें हासिल करने के लिए पूरी लगन, अनुशासन और निरंतर कठिन परिश्रम करें। उन्होंने कहा कि आज का समर्पित प्रयास ही कल के उज्जवल भविष्य की नींव रखता है। उपायुक्त मंडी में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बगला की जमा 1 और जमा 2 की छात्राओं के एक्सपोजर विजिट कार्यक्रम के दौरान उन्हें संबोधित कर रहे थे। उपायुक्त ने कहा कि यदि अपने जीवन के लक्ष्य को लेकर गंभीर हैं तो आज से ही पूरी निष्ठा के साथ मेहनत शुरू करें। और अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज अधिकांश समाचार पत्रों ने मौसम से जुड़ी खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला की सुर्खी है, हिमाचल में भारी बारिश, भूस्खलन, 1 की मौत, 5 घायल, नदी नाले उफान पर, 270 सड़कें बंद। पंजाब केसरी के शब्द हैं, आनी व कुनिहार में पहाड़ी से पत्थर गिरे, 1 की मौत, 5 घायल, नाहन में 40 लोग घरों में फंसे। 17 IAS व 22 HAS अधिकारियों के तबादले की खबर को भी अधिकांश समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण का शीर्षक है, ओंकार को परिवहन, स्वास्थ्य आशीष को। हिमाचल दस्तक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हवाले से लिखता है, हिमाचल में 3500 करोड़ से आपदा रोधी आधारभूत संरचना होगी विकसित। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शिमला के बेंटनी कैसल में अत्याधुनिक डिजिटल संग्रहालय का किया शुभारंभ। केंद्र सरकार ने 12% से ज्यादा अल्कोहल वाली दवाओं की बिना पर्ची के बिक्री पर लगाई रोक। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत ऊना जिला में 8611 महिलाओं को किया गया लाभान्वित। और प्रदेश में मॉनसून की भारी बारिश व भूस्खलन से जनजीवन प्रभावित, मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 6 जिलों के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
3: प्रादेशिक समाचारों के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है गीतांजलि कार्यक्रम में। और ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से 103.4 MHz पर। और आज आपके साथ मैं हूँ संगीता। सजीव फोन इन कार्यक्रम गीतांजलि में बात करने के लिए टेलीफोन नंबर है 01-892-224-391। और आज हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे गानों की जिनके बोल हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं या फिर दिल को छू जाते हैं।

0: जो बार बार वही करते हैं, सात आठ लोग हैं, दूसरे को मौके नहीं देते,
1: जी सबके लिए ही हमने ये कहा है। और देखिए आपने हमारी बात मानी है और वो सब भी एक न एक दिन हमारी बात मान ही जाएंगे। तो चलिए बताइए ना, हाँ कौन सा गीत है जो आपको सबसे अच्छा लगता है? जी
0: बहुत जो अच्छा लगता है, चल अकेला चल अकेला तेरा मेला पीछे छूटा रहा है।
1: जी बहुत ही खूबसूरत ये गीत है जी,
0: बहुत प्यारा गीत है, जिंदगी की सजाई बताई उसमें
1: जी। तो और वैसे भी जीवन के सफर में
0: कहाँ खेला
1: जी, जीवन के सफर में कई बार अकेले चलना पड़ता है और आगे है ना निकलना पड़ता है जी जी। और ऐसा ही हम
0: निकलना पड़ता है, गृहस्थ भी तो बोला चल अकेला।
1: हाँ वही तो, बहुत ही अच्छा गीत जो आपने चुना है या वो आपको पसंद है, बहुत ही
0: बहुत पसंद है ना
1: जी,
0: मन शांत हो जाता सुन के, पता लगता है जिंदगी क्या है।
1: हाँ कई ऐसे गीत होते हैं ना जब हम कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाते हैं तो वो गीत अगर हम सुन ले या किसी को सुना दें तो बहुत सारी हमारी भावनाएं जो है वो दूसरे तक पहुंच सकती हैं।
0: बिल्कुल मैडम
1: जी, चलिए बहुत अच्छा लगा हमें आपसे बात करके, आपने कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू मैडम
1: जी, अगली कॉल हम लेंगे इस ब्रेक के बाद।
2: अरे सागर बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है?
3: खुश तो होना ही है भाई, क्योंकि हिमाचल की हक की लड़ाई में एक और बड़ी सफलता जो मिली है।
2: अच्छा ऐसी कौन सी खुशखबरी है, हमें भी बताओ।
3: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रयासों से किशाऊ बांध परियोजना में हिमाचल ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है।
2: वो कैसे?
3: करीब 15,000 करोड़ रुपए की लागत और 422 मेगावाट क्षमता वाली किशाऊ परियोजना में बिजली उत्पादन के लिए होने वाले लगभग 2,000 करोड़ रुपए के हिमाचल के हिस्से के खर्च का बोझ अब प्रदेश पर नहीं पड़ेगा।
2: फिर ये खर्च कौन उठाएगा?
3: परियोजना के पानी से लाभान्वित होने वाले दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा राज्य ये खर्च वहन करेंगे।
2: वाह, इससे हिमाचल को क्या फायदा होगा?
3: फायदा ही फायदा, परियोजना से बिजली उत्पादन शुरू होने पर हिमाचल प्रदेश को हर वर्ष लगभग 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय सुनिश्चित होगी।
2: यानी प्रदेश के अधिकार भी सुरक्षित और भविष्य भी मजबूत।
3: बिल्कुल, ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रदेश हित के लिए लड़ी गई मजबूत पैरवी का परिणाम है।
4: हिमाचल के अधिकारों को दिलाया नया सम्मान, सुक्खू सरकार बना रही समृद्ध प्रदेश की पहचान। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: सीमा सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
6: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई।
5: ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है, फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
7: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
1: सजीव फोन इन कार्यक्रम गीतांजलि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। हेलो
0: नमस्ते मैम जी।
1: नमस्ते जी, बताइए अपना नाम
0: जी। मेरा नाम है जयकरण सरा से बोल रहा हूँ
1: जी। जयकरण जी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
0: देखो जी, फिल्में होती हैं या गाने होते हैं, इनको बनाने में बहुत मेहनत लगती है, हम तो 2 दिन सुन के रिजेक्ट कर देते हैं।
1: नहीं, हम वो गाना नहीं पूछ रहे हैं जो 2 दिन सुन के आप रिजेक्ट कर देंगे,
0: और
1: वो गाना बताइए ना जो आपके दिल के करीब है, जब भी आप चाहें वो गाना अपने आप मुँह से निकल जाए।
0: फिल्म जी आशा
1: जी,
0: इसके गाने बहुत ही अच्छे हैं और ये कुछ गाने ज्यादा चलन में है ना, इसके और कुछ ज्यादा चलन में नहीं है। उसी में से एक गाना है जी, ना जाने सड़क के लोगों से महलों वाले क्यों जलते हैं।
1: जी।
0: ये गाना मेरे को बहुत पसंद है जी, और जब जो इसके हीरो हीरोइन जो होते हैं ना वो जम्मू कश्मीर की वादियों से घूम कर आते हैं और रास्ते में एक ढाबा पड़ता है, उसी में एक बच्चे का नामकरण हुआ होता तो वहाँ वो ठहरते हैं, तो वहाँ वो गीत चलता है।
1: देखी है आपने फिल्म, बहुत बार देखी होगी।
0: बहुत ही बार जी, बहुत
1: जी
0: बार।
1: जी जी हाँ, बहुत ही, जितेंद्र उसमें हीरो का रोल उन्होंने निभाया है जी, रीना रॉय है और जरीना बहाब जो है वो भी थी इस फिल्म में
0: जी। जी ये सौतन का रोल भी निभाते हैं इसमें।
1: हाँ हाँ जी,
0: हाँ जी,
1: तो बहुत ही खूबसूरत
0: है। हाँ, तो ये गाना मेरे को
1: बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल,
0: बहुत ही टाइम हो गया इस गाने को सुने।
1: हाँ ये थोड़ा कम चलता है लेकिन बहुत ही खूबसूरत ये गीत है और
0: बहुत ही बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया गाना है
1: जी। अगली बार जब हम इस फिल्म को अपने इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे तो इस फिल्म का ये गीत आपको जरूर सुनवाएंगे।
0: थैंक यू मैडम
1: जी, और आपने कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद।

नमस्ते जी। बाकी के श्रोता भी अपने दिल की बात कौन से गीत के साथ आप बता सकते हैं। टेलीफोन नंबर है 01892224391।

हेलो हेलो जी, इनसे बात नहीं हो पाई है और सजीव फोन इन कार्यक्रम गीतांजलि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। और आज हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे गीतों की जिन्हें हम जब सुनते हैं तो ऐसा लगता है मानो वो हमारे लिए लिखा गया ही हो। तो ऐसे ही गीतों के बारे में आज आप अपने विचार हम संग साझा कर सकते हैं। हेलो हेलो जी, इनसे बात नहीं हो पाई है। अगला गीत हम सुनते हैं और अगले कॉलर का इंतज़ार भी हम साथ की साथ करते हैं। 01-892-224-391 ये है टेलीफोन नंबर, और इस फ़ोन नंबर को मिलाते रहिए और कीजिए हमसे बात।

0: हेलो हेलो,
1: हेलो। हाँ
0: हाँ जी, कौन साहब बात कर रहे हैं?
1: जी, मैं बोल रहा जी।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मैं जी गांव बजाज है, मेरा तहसील है पलाथा, जिला कपूरथला, पंजाब से बोल रहा हूँ जी। मैडम जी नमस्कार।
0: नमस्ते जी, नमस्ते। बहुत दूर से बात कर रहे हैं आप। और
1: हाँ जी, हाँ
0: कपूरथला
1: जी।
0: के मौसम का क्या हाल है?
1: मैडम जी, यहाँ तो बारिश बहुत हो रही है, सुबह से ही अंधेरा छाया हुआ है और हम लाइट भी गा के यहाँ पर रह रहे हैं। हाँ जी, अंधेरा हुआ, बादल काले छाए हुए हैं।
0: अच्छा, तो लाइट
1: हाँ जी,
0: चली गई है?
1: नहीं, लाइट है, हम लाइट अंधेरा है ना, घर में, दुकान
0: अच्छा,
1: में,
0: दिन
1: शॉप में
0: दिन
1: भी।
0: में भी
1: हाँ जी,
0: लाइट
1: चलो।
0: जलाई हुई है आपने, ये बात कर रहे हैं आप?
1: हाँ जी, हाँ जी, लाइट भी जला के अब
0: चलिए,
1: इधर
0: बहुत
1: उधर काम कर रहे हैं घर में।
0: देखिए,
1: हाँ जी,
0: बारिश हो रही है तो अच्छा ही है ना, लाइट जला लीजिए थोड़ी देर के लिए, पर बारिश
1: हाँ
0: का
1: जी, हाँ
0: होना
1: जी, हाँ जी।
0: ज़रूरी
1: तो अभी
0: है।
1: तो ये गांव में ना ये लाइट रहती है, कोई
0: जी
1: यहाँ कोई दमंजिले ज्यादा नहीं होते हैं ना गांव में, पता ही
0: जी
1: है आपको। हाँ
0: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल
1: जी,
0: जी।
1: तो
0: और गांव तो
1: बिना लाइट
0: बहुत ही
1: के
0: अच्छे
1: काम कर
0: लगते
1: देते
0: हैं
1: हैं।
0: जब बारिश होती है, हरियाली चारों ओर छा जाती है।
1: हाँ जी, हाँ जी मैडम जी।
0: जी, तो कौन सा गीत है जो आपको बहुत ही अच्छा लगता है, आपके दिल के बहुत ही करीब है?
1: देखिए मैडम जी, मैंने बहुत फिल्में देखी हैं, जब जवान था वहाँ नैनीताल में, खटीमा डिवीजन, हल्द्वानी, काठगोदाम और अल्मोड़ा, रानीखेत, किलो में, इधर बहुत फिल्में देखी है मैंने, जैसे कुल्ले फिल्म है, हेलो,
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: प्रतिज्ञा फिल्म है, शिवल्य फिल्म है, नदिया के पार है, और राम तेरी गंगा मैली हो गया, ऐसे बहुत सारी फिल्में मैंने वहां देखी है। जवान से देखते थे फिल्में, जाते थे,
0: जी,
1: और
0: बहुत
1: अजाक
0: अच्छी बात
1: से।
0: है। फिल्में तो आपने बहुत सारी देखी होंगी, पर गाना तो कोई एक ही होगा ना जो सबसे अच्छा लगता है आपको?
1: वो उम्र होने के नाते मेरे को जरा संग लग रही है गाने में, और गाने तो मेरे को आता है। मेरा जब महफिलें होती थी ना हमारे वहाँ जंगलात में, ड्यूटी पर थी कि कोई भी खुशी होती, तो फिर मेरे को गाने लगाते थे, कहते हम उससे गाना गाओ, कोई ना कोई तो गाता था मैं वहाँ। हाँ जी,
0: जी, बहुत अच्छी बात है। देखिए, खुशी
1: अभी
0: जो
1: सुनाया
0: आपके,
1: गाना एक आपको,
0: हाँ, बिल्कुल
1: अभी
0: बिल्कुल, सुनाइए सुनाइए जी।
1: ओ जट जंबला पगला दीवाना, और अब्बा किसी की बात ना जाना, जा के ओ मैनू प्यार कर दी है, हो छड़े उते हो मार दी है, ओ जट जंबला पगला दीवाना। हाँ जी,
0: बहुत ही अच्छा गीत आपने गाया। देखिए, जब
1: हाँ
0: मन
1: जी,
0: खुश होता है ना तो कैसी
1: हाँ
0: भी
1: जी, हाँ जी,
0: कैसा भी सुर
1: जैसे
0: निकले, बहुत ही
1: जैसे
0: अच्छा लगता है
1: राम
0: वो गाना।
1: तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों पे पाप धोते धोते। हाँ जी,
0: जी, आपने दो गाने
1: हेलो,
0: सुना दिए और दोनों ही गाने बहुत ही अच्छे हैं।
1: हाँ
0: आपने
1: जी,
0: इस प्रोग्राम में कॉल किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही खुश रहिए और
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: एफएम
1: शुक्रिया
0: धर्मशाला
1: मैडम,
0: के
1: मैं थोड़ा
0: साथ
1: आगे
0: जुड़े
1: बढ़ने का
0: रहिए।
1: साथ
0: जी
1: दिया जी भाई। हाँ जी,
0: जी
1: ठीक
0: बहुत बहुत
1: है,
0: धन्यवाद
1: अच्छा
0: जी।
1: था, ││

0: 01892224391 ये है टेलीफोन नंबर इस प्रोग्राम के साथ जुड़ने के लिए। सजीव फोन इन कार्यक्रम गीतांजलि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। 9:54 हो चुके हैं, बस कुछ मिनट यानी 6 मिनट अब बाकी हैं इस प्रोग्राम के लिए और कॉल लेते हैं। हेलो हेलो
1: हेलो, नमस्कार मैम।
0: नमस्ते जी, कौन बोल रही हैं?
1: जी सविता बोल रही हूँ मैम, रानीताल से।
0: जी सविता जी, बहुत बहुत स्वागत है। रानीताल का मौसम कैसा है?
1: जी मौसम तो पूछिए मत, बारिश हो रही है मैम।
0: जी तो ऐसे बारिश के मौसम में क्या कर रही हैं आप?
1: जी कुछ नहीं, घर पर बैठे हैं, काम कर रहे हैं घर का बस।
0: अच्छा,
1: यही है।
0: चाय पकोड़े वकोड़े नहीं बना रही हैं?
1: हाँ जी, अभी तो नहीं बना रही मैम।
0: अच्छा, शाम के समय में बनाएंगी?
1: हाँ जी, शायद देख लेंगे, वैसे कल बनाए थे, पिछले कल ना।
0: जी
1: हाँ जी, हाँ। रोज रोज भी नहीं ना खानी चाहिए तली चीजें। नहीं,
0: हाँ हाँ बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, पर आज समोसे बना लीजिए।
1: हाँ जी कोई बात नहीं।
0: जी
1: और आप कैसे हो?
0: बस जी बहुत बढ़िया। देखिए आपसे बात करके हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है, हंसी आ गई हमारे चेहरे पे भी आप कल के पकोड़े और आज के समोसों की बात सुन के।
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी
1: बरसात में अच्छी लगती हैं ये चीज़ें मैम।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल। और बताइए कौन सा गीत जो है वो आपको सबसे अच्छा लगता है?
1: जी गाने तो मुझे मैक्सिमम बहुत ही अच्छे लगते हैं सभी ना, पर मुझे ये गाना बहुत ही अच्छा लगता है, दलाल फिल्म का गीत है मैम। राम जी वो याद नहीं आ रहा है कुछ, राम जी के ऊपर मतलब है।
0: जी जी जी
1: इस संसार के हर प्राणी का कर दो तुम संहार मेरे राम जी।
0: जी
1: बहुत
0: मतलब
1: सुनवा दीजिए तो बहुत मेहरबानी होगी।
0: नहीं आज हम सुनवाएंगे नहीं, आज हम सिर्फ जानना चाह रहे हैं कि कौन से गीत आपको बहुत बहुत अच्छे लगते हैं और अगले जो कार्यक्रम होंगे वो उनमें हम जो भी फिल्में आप बता रहे हैं जो भी गीत आप बता रहे हैं हम कोशिश करेंगे उन्हें रखने की ताकि आप सुन सकें। और वैसे भी हमारे यहाँ से हर दिन ऐसे जो गीत आप सबने बताए हैं वो बजते ही रहते हैं।
1: हाँ जी हाँ जी,
0: जी
1: ये गाना मैम बहुत ही कम रेडियो पर सुनने को मिलता है ना, ये वाला जो गाना मैं बता रही हूँ ना आपको।
0: जी
1: हाँ जी, वैसे तो सभी अच्छे लगते हैं गाने, बहुत ही मुझे शौक है गाने सुनने का ना मैम।
0: जी तो रेडियो चला रहता है आपके पास?
1: हाँ जी मैम, वो तो चलता है, बचपन से जब 10 साल की थी ना तभी से रेडियो सुनने की शौकीन थी।
0: ओहो, बहुत मोहब्बत है लगता है आपको रेडियो से।
1: हाँ जी, ऑल इंडिया रेडियो सुनती थी मैम, फिर विविध भारती था, फिर उस वक्त धर्मशाला नहीं ना आता था, फिर धर्मशाला स्टार्ट हो गया तो फिर यहीं से सुनना शुरू कर दिया मैम।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया आपने, आप FM धर्मशाला को सुनती हैं ऐसे दिल से। चलिए कॉल किया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू मैम
0: जी।
1: थैंक यू।

इसी के साथ आज का गीतांजलि कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। बारिश के मौसम में अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और अब संगीता को अनुमति दीजिए। नमस्कार। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया अंकित धीमान ने और प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जतिंद्र पाल सिंह।

अभी आप सुन रहे थे सजीव फोन इन कार्यक्रम गीतांजलि। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम गीतों का कारवां।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं गीतों का कारवां आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लीजिए, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं क्रिमिनल फिल्म से।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं गीतों का कारवां आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं बेताब फिल्म से। शब्बीर कुमार की आवाजों में सुन रहे हैं आप इस गीत को।

श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम का अंतिम गीत। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं पहाड़ों के सुर हिमाचली गीत। निकेश कुमार की आवाज में सुन रहे हैं आप इस हिमाचली गीत को।

कार्यक्रम पहाड़ों के सुर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लीजिए कार्यक्रम का अगला हिमाचली गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं।

श्रोतो, इस समय आप सुन रहे हैं पहाड़ों के सुर आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लीजिए कार्यक्रम का अगला गीत, हिमाचली गीत हम आपको सुनवा रहे हैं।

श्रोताओ, पहाड़ों की सुरें आप एंजॉय कर रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। ज्वाला प्रसाद की आवाज में सुन रहे हैं आप इस हिमाचली गीत को।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम का अंतिम हिमाचली गीत। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 11 बजने को हैं। अब आकाशवाणी के शिमला केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।
1: उपलब्ध हैं नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नुसरत अंजुम से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला के बेंटनी कैसल में अत्याधुनिक डिजिटल संग्रहालय का कल शुभारंभ किया। ये संग्रहालय आधुनिक डिजिटल तकनीक के माध्यम से हिमाचल प्रदेश की समृद्ध संस्कृति, इतिहास और विरासत को संरक्षित करने और दुनिया तक पहुँचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेंटनी का शिमला के इतिहास में विशेष महत्व रहा है। यहाँ डिजिटल संग्रहालय की शुरुआत राज्य की विरासत के संरक्षण, सम्मान और वैश्विक स्तर पर प्रचार प्रसार की दिशा में एक नए अध्याय की शुरुआत है। उन्होंने कहा कि ये डिजिटल संग्रहालय अतीत और भविष्य के बीच एक मजबूत सेतु का कार्य करेगा। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि ये डिजिटल संग्रहालय भविष्य में हिमाचल प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान का प्रमुख केंद्र बनेगा।
2: हिमाचल प्रदेश का पहला डिजिटल म्यूजियम जो है वो शिमला के बैटरी कैसल में शुरू किया गया है और ये 8 करोड़ की लागत से बना, काफ़ी पुरानी पहला डिजिटल म्यूजियम बैटरी कैसल के में बनाया गया है और ये हिमाचल की संस्कृति को भी जनता को बताएगा और बाहर से जो पर्यटक आएंगे इसमें यहाँ का शिमला कैसे बना, कैसे रेलवे आया, पुराने उसको डिजिटल करके अपनाया गया।
1: इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शिमला के मेडिकल कॉलेज चमियाणा में 3 टेस्ला MRI मशीन का आज शुभारंभ करेंगे। इससे स्वास्थ्य के क्षेत्र में गंभीर बीमारियों की सटीक पहचान, बेहतर निदान और उपचार को नई गति मिलेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हाल के तनाव के बावजूद अमेरिका और ईरान वार्ता जारी रखने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान ने वार्ता जारी रखने का अनुरोध किया है और अमेरिका इस पर सहमत हो गया है। अमेरिका ने ईरान से हॉर्मुज

0: हॉस्पिटल डमरू मध्य में जहाजों पर हमले रोकने की मांग की है। इन हमलों के कारण तनाव बढ़ने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य बढ़ती आबादी की चुनौतियों, परिवार नियोजन, लैंगिक समानता, गरीबी और स्वास्थ्य जैसे गंभीर मुद्दों के प्रति वैश्विक स्तर पर लोगों को जागरूक करना है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की गवर्निंग काउंसिल ने 11 जुलाई 1989 में इसे औपचारिक रूप से मनाने की शुरुआत की। 2026 की थीम इस वर्ष के लिए युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं को साकार करना वर्तमान तथा भविष्य के लिए है। ये थीम युवाओं के विकल्पों, सशक्तिकरण और पारिवारिक जीवन में उनकी प्राथमिकताओं को समझने पर केंद्रित है। केंद्र सरकार ने 12% से ज्यादा अल्कोहल वाली दवा के बिना पर्ची के बिक्री पर रोक लगा दी है। ये नियम 30 मिलीलीटर से बड़ी बोतलों पर लागू होगा। केंद्र सरकार ने इन दवाइयों के गलत और नशे के लिए इस्तेमाल को रोकने के लिए इन्हें सख्त नियामक निगरानी के दायरे में ला दिया है। इसके लिए सरकार ने ड्रग्स रूल 1945 में बदलाव किया है। प्रदेश में मॉनसून सक्रिय बना हुआ है। बीते 48 घंटों के दौरान प्रदेश में भारी वर्षा से जनजीवन प्रभावित हुआ है। राज्य में वर्षा से बाधित विभिन्न संपर्क सड़क मार्ग, पेयजल योजनाओं को बहाल करने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। मौसम विभाग ने आज सिरमौर, शिमला, सोलन, किन्नौर, कुल्लू और मंडी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 22 जुलाई के बाद प्रदेश में मॉनसून कमजोर पड़ने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक शोभित कटियार ने बताया कि सिरमौर, शिमला, कुल्लू, मंडी और सोलन में अगले 5 से 7 दिन तक मध्यम से भारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है।
1: 11 जुलाई को प्रदेश के मध्यवर्ती इलाकों के लगभग सभी जिलों में बारिश की एक्टिविटी एक बार फिर से हमें बढ़ती हुई नजर आएगी। मुख्य रूप से जो हमारा सिरमौर जिला है, शिमला जिला है, उसी के साथ कुल्लू, मंडी और सोलन जैसे जिलों में बारिश की जो एक्टिविटी है वो मध्यम से लेकर के भारी स्तर तक की जो बारिश का दौर है वो 5 से 7 डेज तक लगातार चलता रहेगा। और वहीं पे जो हमारा पश्चिमी हिमाचल प्रदेश के कुछ एक जिले हैं जैसे कांगड़ा या चंबा की अगर मैं बात करूं तो वहां पे मध्यम से लेकर के भारी बारिश का दौर अगले 2 से 3 दिनों तक हमें देखने को रहेगा। जो हमारा सिरमौर जिला है, शिमला जिला है, सोलन, किन्नौर, कुल्लू और मंडी जैसे जिलों के लिए अभी फिलहाल 6 से 8 आवर्स के लिए हमने ऑरेंज अलर्ट और साथ में एडवाइजरी जारी की हुई है।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा का लाहौल स्पीति का आज प्रस्तावित दौरा रद्द हो गया है। प्रदेश में हो रही भारी वर्षा के कारण केंद्रीय मंत्री का ये दौरा रद्द करना पड़ा है। केंद्रीय मंत्री केलंग में ICMR के उच्च हिमालयी चिकित्सा व जन स्वास्थ्य अनुसंधान केंद्र का शिलान्यास करने वाले थे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 2:03 बजे। नमस्कार।
2: FM 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 11:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं पहाड़ों के सुर।

पहाड़ों के सुर, पहाड़ी गीतों को एंजॉय कर रहे हैं आप आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लीजिए अगला गीत रोशनी देवी की आवाज़ में हम आप तक पहुंचा रहे हैं।

श्रोता पहाड़ों के सुर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लीजिए कार्यक्रम का अंतिम हिमाचली गीत हम आपको सुनवा रहे हैं प्रवीण कौर की आवाज़ में।

श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम का अंतिम हिमाचली गीत। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 11:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं जय हिंद गीतमाला।

श्रोतो, अग्निपंख फिल्म का गीत अभी आपने सुना। इस गीत को गाया था कविता कृष्णमूर्ति ने। लीजिए अगला देशभक्ति गीत हम आपको सुनवा रहे हैं चक दे इंडिया फिल्म से।

जय हिंद गीतमाला, ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। दोपहर के 12 बजे हैं और संगीता फिर से हाजिर है सैनिकों के लिए प्रोग्राम लेकर।

सैनिक भाइयों, जय हिंद। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं जिगरी दोस्त फिल्म के गीत के साथ। है मोहम्मद रफी की आवाज़, है आनंद बख्शी के बोल, हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

के फूल है खिलते, हर मजहब के लोग हैं मिलते, इस बगिया में इस महफिल में हो, हे हम सारे हैं भारतवासी, सब हैं।

0: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
1: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
0: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
1: And now, it's yours at an effective price of just ₹6.70 lakh.
0: Yes, 6.70 lakh rupees. Valid till 31st July.
1: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
0: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
2: Nexa.
1: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
0: This monsoon season, make every drive feel smoother and every journey special.
1: Presenting the Bolt Baleno, the perfect combination of style, technology and safety.
0: Equipped with features like a 360-degree camera, heads-up display and a safety through 6 airbags.
1: And now, it's yours at an effective price of just ₹5.59 lakh. Yes, ₹5.59 lakh. Valid till 31st July only.
0: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home the Bolt Baleno today. TNC apply.
2: Nexa.
1: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
0: This monsoon season, make every drive feel smoother and every journey special.
1: Presenting the Bolt Baleno, the perfect combination of style, technology and safety.
0: Equipped with features like a 360-degree camera, heads-up display and a safety through 6 airbags.
1: And now, it's yours at an effective price of just ₹5.59 lakh. Yes, ₹5.59 lakh. Valid till 31st July only.
0: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home the Bolt Baleno today. TNC apply.
2: Nexa.
3: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
4: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में एचआईवी, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई। ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ मां और सुरक्षित शिशु की पहचान।
5: गर्भावस्था की पहली तिमाही में एचआईवी, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें ताकि और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
6: सैनिक भाइयों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आपको सुनवा रहे हैं सुमन कल्याणपुर का गाया हुआ सुनैना फिल्म का गीत।

0: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
1: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई।
0: ये तीनों जांच क्यों जरूरी है?
1: अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी।
0: बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
2: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
3: स्टेप इनटू द वर्ल्ड ऑफ नेक्सा, अपग्रेड विद एक्सक्लूसिव ऑफर्स अक्रॉस द नेक्सा रेंज।
4: मीट द मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स, द SUV दैट्स बिग ऑन स्टाइल एंड स्मार्ट ऑन वैल्यू।
3: विद इट्स स्पोर्टी डिजाइन एंड थ्रिलिंग परफॉर्मेंस, इट्स बिल्ट टू इंप्रेस एवरी सिंगल डे।
4: एंड नाउ इट्स योर्स एट एन इफेक्टिव प्राइस ऑफ जस्ट ₹6.70 lakh.
3: Yes, 6.70 lakh rupees. Valid till 31st July.
4: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
3: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
5: Nexa.

मौसम फिल्म का गीत अभी सैनिक भाई सुन रहे थे। मदन मोहन का संगीत था, आवाजें थी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की।

लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और साथियों के गाए आया सावन झूम के फिल्म के इसी गीत के साथ ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सैनिक भाइयों, जय हिंद।

हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:30 हुए हैं। अब महिलाएं सुनेंगी अपना कार्यक्रम सुनो सखी।

कार्यक्रम सुनो सखी लेकर हाजिर हुई है आपकी अपनी सखी सुमन। कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों को हमारी ओर से प्यार भरी नमस्ते और कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों का कार्यक्रम में स्वागत भी है। तो सखियों, आज है शनिवार और आज हम करेंगे माँ की पाठशाला की बातचीत। माँ की पाठशाला में सखियों हम बहुत कुछ सीखते हैं, हमने भी सीखा है और हम अपने बच्चों को भी सिखाते हैं। बचपन में स्कूल जाने से पहले माँ हमें घर पर ही पढ़ाना शुरू कर देती है। ABC के चार्ट, वर्णमाला के चार्ट, गिनती, फलों के नाम, रंगों की पहचान व नाम इत्यादि के चार्ट माँ घर पर लगाकर बच्चे को पढ़ाना शुरू कर देती है और दिन भर में पढ़ाती भी रहती है, जिससे बच्चा हर चीज़ आसानी से सीख जाता है। और आम बोलचाल में भी कुछ इस तरह के शब्दों का प्रयोग करती है जिससे कि बच्चा जो है पढ़ाई के बारे में सीखता जाता है। इसके अलावा सखियों, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो माँ अपने बच्चे को सिखाती है। बच्चा इसे जल्दी बोलना, लिखना, पढ़ना सीख जाता है और माँ बच्चे की पहली शिक्षक रहती है, ये हम सभी जानती हैं। और हाँ, बच्चे भी कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, जिस तरह से ढाला जाए उसी तरह से ढल जाते हैं। और हाँ, बच्चों की बेसिक शिक्षा की सखियों बात करें तो बच्चों की बेसिक शिक्षा घर से ही शुरू होती है। बच्चा जो घर पर देखता है, सुनता है, उसी तरह से वो करता है। आज हम सखियों एक इसी तरह के विषय पर बात कर रहे हैं जो हर घर, हर परिवार और पूरे समाज के भविष्य से जुड़ा है, और वो है बेटा बेटी को दे सम्मान, संस्कार। इसलिए ज़रूरी है कि हम बेटा बेटी दोनों को सम्मान, प्रेम, समान अवसर और सबसे बढ़कर सम्मान, संस्कार दे, जो कि दोनों के लिए बेहद ज़रूरी है। तो सखियों, बातें और जानकारियां आपके साथ हम और भी साझा करेंगे, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा कार्यक्रम में रुकते हैं और एक प्यारा सा गीत प्यारे से अपने बच्चों की नज़र करते हैं। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से गीत को।

सखियो, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आपने सुना एक फूल दो माली फिल्म का ये गीत। बड़ा प्यारा सा गीत था, माता पिता का प्यार जो है अपने बच्चों के प्रति इसमें झलक रहा था। तो इसी गीत के साथ हम फिर से कार्यक्रम में वापस आते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारी बातें, बहुत सारी जानकारियाँ आपके साथ साझा करनी हैं। सखियो, आज हम संस्कारों की बात कर रहे थे, तो संस्कारों में केवल नमस्ते करना या बड़ों का सम्मान करना ही नहीं है, संस्कारों में सत्य बोना, ईमानदारी से जीवन जीना, दूसरों की मदद करना, प्रकृति की रक्षा करना और अपनी जिम्मेदारियों को समझना भी शामिल है। आज समय काफ़ी बदल गया है और बदल भी रहा है। बेटियों की अगर हम बात करें तो हमारी बेटियां हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं। बेटे भी घर परिवार की जिम्मेदारियाँ निभाने में आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ी सी हम अभिभावकों की भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि दोनों बच्चों, बेटा हो या बेटी, दोनों को समान अवसर देने की, ये बताने की कि बेटा बेटी दोनों को घर के कामकाज भी करने चाहिए। पहले के समय की बात करें तो बेटियों से घर के काम लिए जाते थे और बेटों को बिल्कुल भी घर के काम करने नहीं दिए जाते थे। आजकल पढ़ाई के सिलसिले में बच्चों को बाहर जाना पड़ता है और अपने काम करने दोनों को ही आने चाहिए। अगर घर के काम करने

0: आते होंगे, तभी बच्चे बाहर जाकर काम कर पाएंगे और माता पिता की परेशानी थोड़ी कम हो जाएगी। नहीं तो हमेशा अभिभावकों को ये परेशानी सताती है, रहती है कि हमारे बच्चे किस तरह से काम करेंगे। तो इसलिए सखियो, ज़रूरी है कि बेटा हो या बेटी, दोनों को हमें घर के काम सिखाने हैं, ताकि आगे जाकर उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो और हम अभिभावक थोड़ा सा टेंशन फ्री होकर रह सकें। सखियो, बहुत सारी बातें हम माता पिता अपने बच्चों को सिखाते हैं, जैसे बेटियों को आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और अधिकारों के प्रति समझ देना, और इसके साथ साथ जो है बेटे को हर महिला का सम्मान करने, अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने की भी बातें हम अपने बच्चों को बताती हैं। जब हम दोनों बच्चों को सम्मान संस्कार देंगे, तब वह एक संवेदनशील और जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। तो सखी, मुझे लग रहा है कि हमारे बातें और जानकारियां कहीं ना कहीं ज़्यादा साझी हो रही हैं। फिलहाल अपनी जानकारियों को देते हैं यहीं पर विराम, और पहले लेते हैं एक अंतराल। अंतराल के ठीक बाद हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो आप जुड़ी रहें आकाशवाणी धर्मशाला के साथ।
1: Drive home your favorite Nexa car with exclusive benefits.
2: Experience Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just 9.52 lakh rupees.
1: Yes, rupees 9.52 lakhs. Offer valid till 31st July.
2: Own the style icon at an EMI of just rupees 899 per month.
1: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360 degree view camera, heads up display and 6 airbags as standard.
2: Hurry, limited stock available.
1: Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.
3: Nexa.
4: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
5: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई। ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
6: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
7: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
8: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
7: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
8: तो फिर सही नंबर
7: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
8: आपने तो बचा लिया दीदी।
7: काम से नहीं।
9: RBI कहता है,
10: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
1: Drive home your favorite Nexa car with exclusive benefits.
2: Experience Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just 9.52 lakh rupees.
1: Yes, rupees 9.52 lakhs. Offer valid till 31st July.
2: Own the style icon at an EMI of just rupees 899 per month.
1: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360 degree view camera, heads up display and 6 airbags as standard.
2: Hurry, limited stock available.
1: Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.
3: Nexa.

0: at an EMI of just ₹899 per month.
1: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display, and 6 airbags as standard.
0: Hurry, limited stock available.
1: Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply. Nexa.
2: सगे इस अंतराल के बाद कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कार्यक्रम आप सुन रही हैं सुनो सखी, और सुनो सखी कार्यक्रम में आज हम बेटा और बेटी के सम्मान अवसर देने के बारे में बातचीत कर रहे हैं। सखियों, बच्चे हमारी बातों से कम और हमारे व्यवहार से अधिक सीखते हैं। घर पर माता पिता एक दूसरे का सम्मान करेंगे, बराबरी का व्यवहार करेंगे, प्रेम से रहेंगे तो बच्चे भी वही सीखते हैं। हमें बेटा बेटी दोनों को सम्मान, शिक्षा और ऐसा इंसान बनाना है कि वे एक अच्छा इंसान बने। साथ ही साथ सखी ये भी कहते हैं कि संस्कारों को की सच्ची पहचान, बेटा बेटी एक समान, यही बने हर घर की शान, तभी बनेगा भारत महान। जी हाँ सखियो, बेटा बेटी दोनों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और उनके सपनों को पूरा करने में बराबरी के अवसर होने चाहिए। माँ की पाठशाला का महत्व हमारी जिंदगी में रहता है। स्कूल की पढ़ाई जितनी आवश्यक होती है, माँ के दिए संस्कार भी उतने ही आवश्यक हमारी जिंदगी में होते हैं। माँ द्वारा दिए गए संस्कार हमें अच्छा नागरिक बनाने की शुरुआत करवाते हैं। माँ की पाठशाला सबसे महान और अनमोल पाठशाला होती है। हमें माँ द्वारा दी गई सीख को अपनाना है, उनके बताए हुए अच्छे मार्ग पर चलना है, और यही जीवन की सफलता और अच्छे चरित्र की नींव है। इसी के साथ सखी थोड़ा सा हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बातें हमारी ज़्यादा हो रही है और खान पान की ध्यान अभी गया और भूख भी लगना शुरू हो गई, तो जल्दी से खान पान में चलते हैं और बनाते हैं गट्टे की सब्ज़ी। सब्जियां तो आपने बहुत सारी खाई होंगी, लेकिन आज ये गट्टे की स्वादिष्ट सी सब्जी बनाएंगे। गट्टे की सब्जी एक राजस्थानी व्यंजन है। ये मुख्य तौर से बेसन से बनाया जाता है। बेसन और मसालों के मिश्रण से गट्टे बनाकर पानी में उबाले जाते हैं और फिर मसालेदार दही की ग्रेवी में से पकाया जाता है। इसे दाल चावल रोटी के साथ परोसा जाता है। तो चलिए बनाते हैं इन्हें और खाते हैं। इसे बनाने के लिए एक बड़े बर्तन में बेसन डालें, उसमें थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, जीरा, गरम मसाला पाउडर डालें, एक टीस्पून तेल डालें और थोड़ा सा नमक डालें अपने स्वादानुसार। धीरे धीरे पानी डालकर सख्त आटा गूंथ लें। आप अपनी हथेलियों पे तेल लगाकर चिकना कर लें और फिर आटे के 7-8 भागों में बांट लें। प्रत्येक भाग 1 से 1.5 इंच मोटाई वाला और लगभग 4 से 5 इंच लंबा रोल बना ले। एक पतीले में थोड़ा सा पानी उबाले, उसमें रोल डाल दे। अब पानी की सतह पर तैरने लगेंगे ये रोल और गैस बंद कर दे। अब रोल निकालकर बाहर रख लें और उसका पानी फेंके ना, क्योंकि इसे सब्जी में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक कढ़ाई में तेल लें और गट्टे फ्राई करें, काट कर छोटे छोटे टुकड़े कर लें और इन्हें फ्राई करें। सुनहरी होने पर इन्हें बाहर निकाल दें। अब बचे हुए तेल में राई डालें, फिर जीरा चटका लें, थोड़ी सी हींग डालें, अदरक लहसुन का पेस्ट डालें, हरी मिर्च डालें, बारीक कटा हुआ प्याज डालें, इसे भी सुनहरी होने दें। फिर इसमें डालें मसाले, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, गरम मसाला और अच्छे से फेंट लें। अब इसमें फेंटा हुआ दही अच्छे से मिक्स करें ताकि जो है ये फटे ना। अब आपको खुद ब खुद भुनने पर पता चलेगा कि इसका तेल ऊपर आ गया है। अब पानी और नमक डालकर पकाएं। जब उबाल आ जाए तो इसमें फ्राई किए हुए गट्टे डाल दें। आंच को धीमी करके पकाएं और ग्रेवी आपको जैसी चाहिए है, गाढ़ी या पतली, अपने हिसाब से आप कर सकती हैं। और आप करें गट्टे को बनाने की तैयारी। और चलते चलते हम आपको फिर से सुनवा देते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा गीत। माँ और यूं कहे पिता, दोनों अभिभावक अपने बच्चों को बहुत सारे नामों से पुकारते हैं, तो ये थोड़ा सा प्यार फिर से मादा और पिता का झलक रहा है इस गीत से, तो सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। बचपन में बहुत सारे नाम माता पिता प्यार से अपने बच्चों के रखते हैं और उन्हें पुकारते हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनो सकी एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। दोपहर का 1 बजने को है। अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के प्रभारी सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने ऑकलैंड में बताया कि आगामी 4 वर्षों में साझा रूप से काम करने के लिए भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी 2030 तक की रूपरेखा को भी मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है।
2: दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय ये दर्शाता है कि हम अपने रिश्तों के सभी क्षेत्रों में संबंध मजबूत कर रहे हैं, विशेष रूप से रक्षा तथा सुरक्षा के क्षेत्र में और राजनीतिक स्तर पर।
1: इससे पहले दोनों नेताओं के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है।
3: लोकतांत्रिक मूल्यों में दृढ़ विश्वास हमें नेचुरल पार्टनर बनाता है, मेड फॉर ईच अदर जैसा है ये। और दूसरी प्रकार से दो मैरिटाइम देश के रूप में हमारा करीबी सहयोग इंडो पैसिफिक को एक नई ताकत देता है और शांति के हमारे जो लक्ष्य हैं उसको अचीव करने में हमारे संबंध एक नई ऊर्जा भर सकते हैं।
1: प्रधानमंत्री अब से कुछ देर बाद भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। इससे पहले गवर्नमेंट हाउस में भी श्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। उन्होंने उद्योग और खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से मुलाकात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। परियोजना 17A का ये युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। श्री सिंह ने कहा कि भारत पारंपरिक रक्षा क्षमताओं और उन्नत प्रौद्योगिकियों को मजबूत करके एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि INS महेंद्रगिरी में 75% से अधिक स्वदेशी घटकों का इस्तेमाल हुआ है। उन्होंने कहा कि ये युद्धपोत अत्याधुनिक स्वदेशी हथियारों से सुसज्जित है और इससे हिंद महासागर में भारत की समुद्री ताकत और बढ़ेगी।
4: गिरी में मल्टी फंक्शन राडार के साथ लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स का कॉम्बिनेशन है जो आकाश से आने वाले किसी भी खतरे को दूर से ही पहचान कर नष्ट कर सकते हैं। और इसमें इंडिजिनस रॉकेट लॉन्चर है, टॉरपीडो लॉन्चर्स है, एक इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन डिफेंस सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट है और क्लोज इन वेपन सिस्टम भी है। ये तमाम चीजें INS महेंद्रगिरी को महेंद्रगिरी पर्वत के समान ही अभेद और मजबूत बनाती हैं।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का शुभारंभ किया। श्री शाह ने युवाओं से पुस्तकालयों में जाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पुस्तकें व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। श्री शाह ने कहा कि महान क्रांतिकारी और विचारक जयप्रकाश नारायण ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सिक्किम एक बार फिर देश का सबसे समृद्ध राज्य बनकर उभरा है। प्रति व्यक्ति आय के नवीनतम विश्लेषण के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय 6,46,000 रुपए से अधिक रही। ये राष्ट्रीय औसत से लगभग 3 गुना है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ पहले महिला क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में 1 विकेट पर 21 रन से आगे खेलेगा। इससे पहले कल भारतीय टीम ने पहली पारी में 285 रन बनाए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अंतिम क्वार्टर फाइनल में कल सुबह 6:30 बजे वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इससे पहले स्पेन और फ्रांस सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं।

छलिया फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज, कमर जलालाबादी के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। श्रोताओं ने गीतकार संगीतकार का नाम बिल्कुल सही बताया। इसके पहले हमने आपसे पूछा था अनुपमा फिल्म के गाने में कौन है हीरोइन, सभी श्रोताओं ने इसका भी जवाब सही दिया, शर्मिला टैगोर, और गीतकार का नाम भी बिल्कुल सही फरमाया, कैफी आजमी। और अब अगला गीत क्या हो सकता है जरा बूझिए। तो हम आपको हिंट दे रहे हैं कि कौन सा ऐसा मौका आता है जब आप दीप जलाते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं, किस खुशी के मौके पर, ये बताइए और गाना बूझिए। तब तक हम आपकी टिप्पणी आप तक पहुंचा रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि जिस भी उम्र में जो चीज़ दिल को छूती है यादों में शामिल हो जाती है, कोई गहरी संवेदना एक रूप में ढलकर एक आहट बनकर बस अपनी बात कह रही हो, जैसे कि फिल्म अनुपमा का ये गीत कुछ दिल ने कहा कुछ भी नहीं, जुगनू तभी चमकता है जब तक उड़ता है, कमोवेश यही हाल दिल का भी है, जब इसकी धड़कन रुक जाए तो हम भी थम जाते हैं, दिल के मौसम का हाल ख्यालों और ख्वाबों की मखमली ज़मीन से जुड़ा है, इसलिए दिल को कभी मुरझाने मत देना, इसे अपने खूबसूरत विचारों से हमेशा सजाए रखना। क्या बात कही है, सचमुच अपने दिल की हिफाजत भी करनी चाहिए, क्योंकि दिल कई बार कमज़ोर भी हो जाता है, कई बार जज्बाती हो जाता है, कई बार बोझ सहन नहीं कर पाता है, इसलिए अपने जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के टेंशन्स हैं, तनाव हैं, उन्हें दूर भगा दीजिए और दिल को बिल्कुल खाली रखिए, बिल्कुल खाली बर्तन की तरह। और हाँ, अभी हमने बूझने के लिए कहा है कि कौन सा गाना होगा, ज़रा बूझते रहिए। आपकी टिप्पणी हम आप तक

चाहेंगे। फिलहाल ये टिप्पणी आप तक पहुंचा रहे हैं कि एक श्रोता ने लिखा है, कभी ये खुशियों की पालकी में बैठकर सपनों के आकाश में उड़ने लगता है तो कभी इंतजार के मोती चुनते चुनते यादों की नदी के किनारे जा बैठता है, कभी मुस्कान की रोशनी से चेहरा जगमगा उठता है तो कभी अनकही बातों का बोझ इसे खामोश कर देता है। मेरी इबारत को थोड़ा हेर फेर करके लिख दिया है इन्होंने। अब हम आगे देखते हैं कि हमारे अगले श्रोता ने क्या लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि इस दिल को मनाने की भी कला होना जरूरी है। हम सभी को प्रभु परमेश्वर ने दिमाग सर से भी नवाजा है, इसलिए अगर जिंदगी की सही पारी खेलनी है तो अपने दिल भाई साहब को कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो बताइए, आप कब अपने दिमाग की सुनते हैं, कब दिल को इग्नोर करते हैं, ये भी बताते चलिए। और सच बात तो ये है कि जब कोई निर्णय लेना पड़ता है तो दिल को हमें नज़रअंदाज करके दिमाग की सुननी पड़ती है। अब आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवा रहे हैं अब चित्तचोर फिल्म का गाना। और हमने आपसे पूछा था कि कब किन मौक़ों पर दीप जलाते हैं आप, ज़रा ये बताइए कि फिल्मी पर्दे पर कौन गा रहे हैं ये गाना, कौन कह रहे हैं एक दूसरे से ये बात। हीरो हीरोइन का नाम पूछना है, फिल्म चित्तचोर, ये सुदास और हेमलता की आवाजें हैं।

चित्चोर फिल्म का गाना था ये, सुदास और हेमलता की आवाजें थी। गीत और संगीत रविंद्र जैन का था और हमने आपसे पूछा था हीरो हीरोइन का नाम। बहुत त्वरित जवाब आया श्रोताओं की ओर से और सही जवाब आया अमोल पालेकर और जरीना वहा पर्दे पर होते हैं और एक भी श्रोता ने गलत जवाब नहीं दिया। बहुत बहुत शुक्रिया इस बात के लिए। एक श्रोता ने लिखा है कि वैसे तो दीप जलाने की परंपरा दिवाली के त्यौहार के दौरान होती है पर अपने घर के मंदिर में तो रोज़ ही दीपक जलाते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि नवरात्रि पर, नववर्ष पर, दीपावली पर और कुछ साल पहले तो शाम होते ही हमारा काम दिया जलाकर रखने का होता था, बिजली हर वक्त नहीं रहती थी। और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि दीप जलाने की परंपरा तो जब खुशी का मौका आता है तब भी हम दीप जलाते हैं। बिल्कुल खुशी में हम दिए जलाते हैं और खुशी का दीप जलाने की बात दिल से भी होती है कि दिल आपका जब आप खुश होते हैं तो अपने आप दिल में खुशी का दिया जलता है। एक श्रोता ने लिखा है कि दिल एक तरह से धड़कता हुआ स्पंज की तरह होता है, इसे सुचारू रूप से चलने के लिए ब्लड प्रेशर को संतुलित रखना पड़ता है। एक श्रोता ने लिखा है कि 2014 को हृदय की शल्य चिकित्सा हुई थी तब डॉक्टर साहब ने एक बहुत सही सलाह दी थी, आज के बाद किसी भी स्थिति में सुख में बहुत ज़्यादा खुश न हो, बस प्रसन्नता को खुशबू की तरह महसूस करते रहो और दुख का समय आए तो बहुत ज़्यादा दुख में न घिरते हुए अपने आप को संभाल कर रखो। एक श्रोता लिख रहे हैं कि जिंदगी के चौराहे पर अक्सर हम खुद को खड़ा पाते हैं जहाँ एक तरफ दिमाग की ठंडी दलीलें होती हैं और दूसरी तरफ दिल की बेबाक पुकार। दिमाग नफा नुकसान देखता है, गणित लगाता है लेकिन दिल सिर्फ सुकून ढूंढता है। और सच तो ये है कि दुनिया के सबसे खूबसूरत फैसले चाहे वो किसी से बे इंतहा मोहब्बत हो या किसी अजनबी की मदद के लिए हाथ बढ़ाना, हमेशा दिल से ही लिए जाते हैं फैसले। बिल्कुल सही फरमाया है आपने। और ज़रा आप ये भी बताइए कि कब आप खामोश हो जाते हैं दोस्तों के बीच, कौन सी वो घड़ी है जब आपको लगता है कि हाँ तो चुप रह जाना ही बेहतर है, या घर परिवार में कौन सा ऐसा लम्हा आता है जब आपको लगता है कि चलो जाने दो, खामोश रहो, छोड़ो हटाओ, ये बात आती है। और जब आप तन्हा होते हैं तो आप अपना दिल कैसे बहलाते हैं? कोई गीत सुनते हैं, कोई किताब पढ़ते हैं, कोई फिल्म देखते हैं या फिर कहीं घूमने निकल जाते हैं यूं ही बेसबब? तो अपनी बात आप बताते चलिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर www.facebook.com/vbsmumbai टाइप करेंगे तो पहुंच जाएंगे विविध भारती के फेसबुक पेज पर। अब बहुत सारे श्रोताओं ने इस गाने का जिक्र किया है फिल्म आकाशदीप, तो सुन लीजिए यही गाना दिल का दिया जलाकर। जरा गीतकार और संगीतकार का नाम बूझिए। यहाँ तन्हाई भी है, दिल भी है, क्या नोटिस किया आपने?

आकाशदीप फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज़ थी, रचना थी मजरूह सुल्तानपुरी के, संगीतकार चित्रगुप्त, और ये हमारा सवाल भी था, श्रोताओं ने सही जवाब लिख भेजा है। एक श्रोता ने लिखा है कि प्रस्तुत गद्य इबारत की इबादत से निकले शब्दों में, मतलब इबारत से निकले शब्दों में दिल बड़ा अजीब कभी खुद से रूठ जाता है, जमाने से सुबह शाम उदास तन्हाई जैसे अनेक संज्ञा सर्वनाम विशेषण वाले शब्द हैं, तो इन शब्दों की भरमार है, तो मेरे हिसाब से गीत कुछ इस प्रकार हो सकते हैं, और गीत के बोल इन्होंने लिखे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि इस दिल की दास्तान की क्या कहें, आशा निराशा के समुद्र में हिचकोले खाता है, कभी किसी बीती बातों को दुखद याद करके मायूस हो जाता है, आंखें झरझर बहने लगती हैं, फिर अपने आप को दिलासा देकर शांत होकर अगली भोर की आशाओं की किरण के साथ प्रफुल्लित होकर एक नई ऊर्जा से भर जाता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि जब कोई मित्र परिवार का सदस्य अपने दिल का हाल या दुख बांट रहा हो तो उन्हें ज्ञान सलाह या उपदेश की ज़रूरत नहीं होती, उस वक्त आपका एक शांत श्रोता बनकर उनकी बात को सुनना ही आपके लिए सबसे बड़ा सहारा होता है, मतलब ऐसे मौके पर आप शांत रह जाते हैं। तो अब क्या बात है, थोड़ी मुस्कुराने की बात की जाए तो अपने मुस्कुराने की बात आप बताइए कि कब आप मुस्कुरा पड़ते हैं, कभी कभी यूं ही बैठे बैठे लोग मुस्कुरा उठते हैं अपने आप, कुछ लोग मोबाइल में कुछ टेक्स्ट देखकर, कुछ मैसेज देखकर मुस्कुरा उठते हैं, आजकल तो रील देखकर मुस्कुराने का ज़माना बड़ा गज़ब का है। ज़रा अपने अनुभव भी साझा कीजिए, आप कब और कैसे मुस्कुराते हैं, बच्चों की नटखट शरारतों पर मुस्कुराना होता है तो बताइए। फिल्म का नाम आपको बूझना है, लता मंगेशकर की आवाज़, राजेंद्र

भई किसी की मुस्कुराहट से आपका दिल बहल जाए तो मुस्कुराना ठीक है, बहुत ज़रूरी हो जाता है किसी के लिए मुस्कुराना। और कभी कभी यूं ही खुद से गुफ्तगू करते हुए भी हम मुस्कुरा पड़ते हैं। बहरहाल बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि हम कब कैसे मुस्कुराते हैं। ज़रा ये बताइए कि एक गाना है रूठने मनाने का, इसमें तो रूठना शब्द भी है, आप शायद भूल गए, उसके लिए बहुत सारे बहुत कम श्रोताओं ने गाने लिखे हैं रूठने वाले। एक ऐसा गाना हम आज खोज कर ले आए हैं जिन्हें आप कभी कभार सुनते होंगे या ना के बराबर सुने हो, वो लेकिन विविध भारती के भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में वो गाना बजाया जाता है, प्रसारित किया जाता है। तो कोई ऐसा गाना रूठने वाला याद आ रहा है आपको तो ज़रा विविध भारती के फेसबुक पेज पर ज़रूर बताइए और हम उसे देख रहे हैं और आपकी टिप्पणी वहाँ पर सुरक्षित रहती है और सेव रहती है। एक श्रोता ने लिखा है कि आपने तो अकेले लोगों के दुखती रग पर हाथ रख दिया, पत्नी के गए एक साल से ऊपर हो गए, कैसे दिन गुजरते हैं, कैसे दिल को समझाकर रखा है हम ही जानते हैं, और बेड पर एक रेडियो है, रात 11 बजे तक विविध भारती सुनते रहते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि दिल तो है क्या कहना इसका, कभी बिना वजह मुस्कुरा देता है, कभी छोटी सी बात पर उदास हो जाता है, ये रिश्तों में अपनापन ढूंढता है, यादों में सुकून तलाशता है और उम्मीदों के सहारे हर दिन एक नई शुरुआत कर लेता है, टूट कर भी धड़कना नहीं छोड़ता, हार कर भी प्यार करना नहीं भूलता है। एक श्रोता ने लिखा है कि मानव शरीर का मुख्य अंग हृदय यानी दिल होता है, जिंदा रहने के लिए दिल यानी हृदय का धड़कना ज़रूरी है, उसी तरह आकाशवाणी रूपी शरीर का दिल देश की सुरीली धड़कन विविध भारती है, जिसे हर इंसान यानी श्रोताओं के मनोरंजन के लिए दिन रात धड़कना ज़रूरी होता है, तभी तो हमारे आपके रंग दिल की धड़कन भी लाती तो होगी, दोपहर 1 बजे सुरीला सफ़र में जुड़ने याद उनको भी आती तो होगी, हमने तो

खामोशी फिल्म का गाना था और हमने आपसे पूछा था हीरो हीरोइन का नाम, राजेश खन्ना और वहीदा रहमान। स्वर और संगीत भी पूछा था लेकिन बहुत कम श्रोताओं ने लिखा है, हेमंत कुमार और गुलजार के बोल थे। और हमने आपसे पूछा था रूठने पर एक ऐसा गाना है जो आपने कभी कभार ही सुना होगा। विविध भारती के भूले बिसरे गीत कार्यक्रम से हम प्रसारित करते हैं वो गाना, तो उस गाने का जिक्र अभी तक किसी ने नहीं किया, लेकिन जिसने गानों के जिक्र किए हैं जिन श्रोताओं ने, वो ये गाने हैं, रूठे सैया मनाऊं कैसे, रूठा है तो मना लूँगा। और एक श्रोता ने लिखा है तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं, ये गाना बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है, रूठा है तो मना लेंगे, रूठे रूठे पिया मनाऊं कैसे, ओ दिलवर जानिया रूठने मनाने में बीत न जाए जवानियां, और रूठो ना हमसे ओ बच्चों की नानी। और एक श्रोता ने लिखा है देखो रूठा न करो अजी रूठ कर अब कहाँ जाइएगा। भाई ये सारे गाने तो आप अक्सर सुनते रहते हैं, लेकिन ये वाला गाना पिछली बार कब सुना था, जरा याद हो तो बताइएगा। फिल्म का नाम अगर बता सके तो बताइए। गीतकार का नाम भी बताइए। फिल्म का नाम, गीतकार का नाम आपको बूझना है, पहेली जरा कठिन है।

दो फूल फिल्म का ये गाना था। लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाजें थी। हसरत जयपुरी के बोल थे, वसंत देसाई का संगीत था। इसकी जानकारी शायद किसी को नहीं थी, किसी ने इस बारे में बताया नहीं, ना फिल्म का नाम, तो ये भी नहीं बताया आपने कि पिछली बार आपने कब सुना था। अब कभी भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में सुनिएगा और याद कीजिएगा ये गाना। बहरहाल रूठने पर बहुत सारे गाने हमारे श्रोताओं ने लिख भेजे हैं। कब तक हुजूर रूठे रहोगे लेकिन गुस्से में प्यार बलम जी अब तो हंसो, रूठा है तो मना लेंगे ना रूठो ना रूठो मेरी जान, देखो रूठा ना करो रूठे सैया। और एक श्रोता ने लिखा है कि धन्यवाद इस गाने के लिए, और एक श्रोता ने लिखा है कि वो तो रूठा है मना लेंगे। एक श्रोता ने लिखा है, मोबाइल पर जब कोई रील देखता हूँ तो कभी कभी हंस हंस कर पेट में बल पड़ जाते हैं, फिर मासूम बच्चों की मासूम हरकतें देखकर हंसी आ जाती है। ये इस बात पर है कि कब किन लम्हों में आप मुस्कुराते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि रूठना मनाना अच्छा जी मैं हारी, ये वाला गाना लिखा है। और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है रूठने पर गाने, लेकिन ये भी बताइए कि जब कोई रूठ जाता है आपसे तो आप मनाते हैं या आप रूठने वाले को यूं ही छोड़ देते हैं, जाओ भाड़ में जाओ रूठे रहो हम तो नहीं मनाएंगे। आप मनाते हैं या आप मनुहार करवाते हैं, दोनों बातें लिखिए। एक श्रोता ने लिखा है कि जब मैं तनहा होता हूँ तो या तो मोबाइल ऐप पर विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रोग्राम सुन लेता हूँ, या फिर घंटे भर के लिए कहीं घूमने चला जाता हूँ, अखबार भी पढ़ लेता हूँ, या पुराने गाने सुनकर अपनी तन्हाई को दूर करता हूँ। और एक श्रोता ने लिखा है कि जब मैं गुस्से में होती हूँ तो चुप हो जाती हूँ, थोड़ी देर में अपने आप गुस्सा शांत हो जाता है। ये बहुत अच्छा नुस्खा है वैसे, कि अगर सामने वाला गुस्से में कुछ बोल रहा है, आपको भी गुस्सा आ रहा है, तो आप शांत हो जाएं तो सामने वाले का गुस्सा भी ख़त्म हो जाता है, आपका भी। एक श्रोता ने लिखा है कि दिल का विचित्र फंडा है, किसको अपनाएगा किसको छोड़ देगा इसकी जानकारी नहीं होती है। एक श्रोता ने लिखा है कि दिल का क्या कहें, सुबह शाम उठते बैठते कैसे इसकी धड़कन बढ़ गई, हाँफने पर डॉक्टर तक पहुँचे जिन्होंने कहा कि आपने कुछ ऐसा सोचा क्या, आप जिंदगी के निजी फैसलों में कभी दिल

को न लें, बस दिमाग ही लगाएं और उनकी टैबलेट आज तक छूटी नहीं। भाई अपने दिल का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। एक श्रोता ने लिखा है कि दिल है कि मानता ही नहीं और किसी पर भी आ जाता है, दिल एक तरह से धड़कता हुआ स्पंज है। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि दिल भी टूट के छलनी हुआ, विधि ने जो घात किया, खुशियां पल भर में लुट गई, यादों को भी नदी में ही विसर्जित कर दिया, बस एक सिर्फ एक निजी जागती उसकी निशानी अब कलेजे से लगा के संभालना है और उसे आंखों में संभाल के रखना है जब तक सांस चलती है। और अब चलिए सुनते हैं ये गाना, ज़रा बताइए कौन है हीरोइन, पर्दे पर कौन गा रही है ये गाना और गीतकार का नाम आपको बूझना है। फिल्म है भरोसा। इसमें इबारत के कौन कौन से शब्द हैं, ज़रा ये भी बूझिए आप।

भरोसा फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज़, राजेंद्र कृष्ण के बोल, रवि का संगीत। इस गाने में एक नाराज़गी भी है और दुख भी है और साथ भी है, भूलने की बात भी है, याद भी है, दिल भी है। तो आज की इबारत के बहुत सारे शब्द इस गाने में थे और हमारे श्रोताओं ने भी इस गाने का जिक्र किया था। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं जब रूठती हूँ तो न मनाती हूँ न मनुहार करवाती हूँ। क्या बात है भाई, ये तो अच्छा नुस्खा है कि ठीक है, ना मैं मनाऊँगी ना तुम, मतलब मैं ना मैं रूठूँ ना तुम रूठो, ये वाला हिसाब किताब है ना। और बहुत सारे श्रोताओं ने जवाब दिया है कि पर्दे पर आशा पारिख हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि मन की हर उदासी का सबब दिल का टूटना नहीं होता है, कई बार कुदरत का बदलता मिजाज और शरीर में विटामिन की कमी जैसी शारीरिक वजहें भी इंसान को अवसाद और डिप्रेशन में डाल देती हैं। और एक श्रोता ने

है कि सामने वाला हमारी कोई गलती के बिना ही रूठता है तो मनाने का सवाल नहीं है, पर अगर सोचने पर हमारी गलती महसूस होती है तो ज़रूर मनाने की कोशिश करनी चाहिए। एक श्रोता ने लिखा है कि दिल के बारे में क्या कहें, ये एक ऐसी चीज़ है जो अनवरत क्रियाशील रहती है। जहाँ इसने धड़कना छोड़ा, व्यक्ति इस संसार से विदा हो लेता है। दिल का धड़कना और सोचना उम्र के साथ बदलता रहता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि खुशियों में झूम उठता है दिल, गम में मौन हो जाता है। वैसे ये हमारी एक मानसिक स्थिति है जो हमारे मनोभावों को प्रस्तुत करती है, एहसास दिलाती है, चाहे वो प्यार हो, दोस्ती हो, परिवार के प्रति जिम्मेदारी। फिल्मों में दिल के संबंधित कई गाने हैं और दिल एक मंदिर है गानों की लंबी फहरिस्त दी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दिल शब्द के ही गाने हमने आपसे पूछे थे, हमने तो आज की इबारत से जुड़े हुए गाने पूछे थे। एक श्रोता ने बहुत सारे शब्द लिखे हैं, ज़माना, उदास, तन्हाई और इन्होंने तन्हाई और अकेलापन, सुबह शाम ये भी लिखा है। तो सुबह शाम बहुत कम श्रोताओं ने लिखा है, तो चलिए भाई ये गाना सुनते हैं और देखिए कि क्या आपने याद किया। और हाँ, आपको बता दें, दो फूल फिल्म का गाना जो हमने सुनवाया था, कुछ हमारे सुधी श्रोता हैं जिनकी जानकारी बड़ी समृद्ध है, उन्होंने लिख दिया था विविध भारती के फेसबुक पेज पर, हमें देर से दिखा, तो उनका भी हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ज़रा सुनिए ये गाना और बताइए गीतकार और संगीतकार का नाम। फिल्म फिर सुबह।

जब भी कभी मुश्किल वक्त आता है तो हम ये गीत ज़रूर गुनगुनाते हैं, और जब आपके घर में आपके आसपास ख़ास तौर से टीन एज बच्चे जब पढ़ाई के प्रेशर से परेशान हो, तन्हा उन्हें अकेलापन लग रहा हो, तो उन्हें ये गाना ज़रूर गा के सुना दीजिए कि यहाँ सुबह ज़रूर आएगी और तुम्हारे पेपर्स अच्छे होंगे, मार्क्स बढ़ेंगे। इस तरह के बहुत सारे गाने हैं समझाइश वाले, गानों के माध्यम से हमारे बड़े बुज़ुर्ग समझाया करते थे, तो आप भी समझा सकते हैं। गीतकार संगीतकार का नाम पूछा था साहिल लुधियानवी और खयाम। एक श्रोता ने लिखा है कि बेबस बेकाबू बेचैन दिलों के हसरतों उमंगों तरंगों को चित्रित करती इबारत है। अनुभूति तन्हाई बेबसी मान मनवल हंसाती रुलाती बेबसी दिलों के तजुर्मा को तरन्नुम में ढाल आज सुरीला सफ़र। बाकी खासम खास रहेगा और खासम खास हो रहा है, एक श्रोता ने लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि इस दिल की दास्तान की क्या कहें, आशा निराशा के समुद्र में हिचकोले खाता है, आशाओं के किरण के साथ प्रफुल्लित होकर नई ऊर्जा से भर जाता है, नए सपनों और उन्हें पूरा करने की ओर अग्रसर हो जाता है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि दिल और दिमाग का द्वंद हमेशा से रहा है, रिश्ते बनाए तो दिल से जाते हैं लेकिन निभाए दिमाग से। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि अगर सामने वाले पर गुस्सा आ रहा हो तो उस समय चुप रहना ही उचित रहता है, क्योंकि गुस्सा तो थोड़ी देर बाद शांत हो जाता है पर उस समय गुस्से में कही गई बातें सामने वाले को दूर कर देती हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि कभी खुद से रूठ जाता है दिल, कभी ज़माने से। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि ये दिल बड़ा अजीब है। और अब चलिए प्रोग्राम का आखिरी गाना सुनते हैं फिल्म आह से आपको पूछना है कौन है हीरो कौन है हीरोइन, और गीतकार संगीतकार का नाम भी ज़रा बताइएगा। फिल्म आह

आह फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज़ थी। हमने आपसे पूछा था गीतकार और संगीतकार का नाम। गीतकार थे शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन, और हीरो हीरोइन का नाम भी पूछा था। सभी श्रोताओं ने बहुत कम वक्त में बहुत जल्द त्वरित जवाब दिया, नरगिस और राज कपूर। एक श्रोता ने लिखा कि मेरा ऑल टाइम फेवरेट गीत है, मैंने अपनी डायरी में लिखा था ये गीत। और एक श्रोता ने लिखा है कि सबसे ज़्यादा वक्त मेरी नवासी को मनाने में लगता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि जब किसी को गुस्सा आए तो चुप रहना ज़्यादा बेहतर होता है। बहुत सारे श्रोताओं ने आज अपनी बातें और अपनी यादें साझा की। किसी ने रूठने की बातें की, किसी ने तनाई की बातें की, किसी ने दिल की बातें की। दिल की बातें श्रोताओं ने ज़्यादा की। बहरहाल कुछ श्रोताओं ने ये भी लिखा है कि आज का सुरीला सफ़र सुनते हुए हमारी दोपहर सुरीली हो गई। भाई, हमारी दोपहर भी सुरीली हो जाती है आपके साथ, जब आपकी टिप्पणियों के साथ हम होते हैं। बहरहाल आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया। सुरीला सफ़र कार्यक्रम का सफ़र आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

श्रोताओं नमस्कार। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो घर बनाकर रहता है। एक निश्चित उम्र में वो घर बसाता है और अपने परिवार को बढ़ाने की ओर अग्रसर होता है। कई तरह के पड़ाव किसी भी मनुष्य के जीवन में आते हैं, जिनमें किसी बच्चे के जन्म को सबसे खास माना जाता है। एक नन्हा सा जीव जब दुनिया में आँखें खोलता है तो सभी की आँखों का तारा बन जाता है। उसके परवरिश करते करते कई बार माता पिता को ये लगता है कि एक और संतान हो जो उनकी पहली संतान को भाई या बहन के रूप में साथ देने आ जाए।

व्यक्ति की चाह होती है कि उसका अंश इस दुनिया में आए। अमूमन सभी को एक संतान का होना आवश्यक लगता है, परंतु कई सामाजिक रीतियां ऐसी हैं जो ये जताती हैं कि किसी भी व्यक्ति के वंश को आगे बढ़ाने का काम उनके बेटे ही करते हैं। कई बार बेटों की चाह में भी लगातार संतान पैदा की जाती हैं और एक ही परिवार में कई बच्चे होते जाते हैं। इससे न सिर्फ जनसंख्या बढ़ती है बल्कि इतने बच्चों का पालन पोषण भी एक मुश्किल काम होता जाता है। ज्यादा बच्चों के होने से परिवार में सभी की उचित शिक्षा, उच्च जीवन और जरूरी आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो पाती हैं। रह जाते हैं आंखों में अनगिनत अधूरे ख्वाब।

किसी भी देश की जनसंख्या एक ओर उस देश की शक्ति का प्रतीक होती है, वहीं उस देश के विकास और प्रगति के लिए जनसंख्या का नियंत्रण भी अति आवश्यक होता है। यदि किसी देश की जनसंख्या लगातार बढ़ती जाए तो उस देश में संसाधनों की कमी, बेरोजगारी, गरीबी और अव्यवस्था बढ़ती जाएगी। लोगों के पास जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पाने के लिए भी जरूरी साधन नहीं होंगे। यही कारण है कि जनसंख्या को नियंत्रित रखने के लिए समय समय पर अलग अलग जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए लोगों को परिवार नियोजन की आवश्यकताएं बताई जाती हैं। कई अलग अलग स्लोगन्स के जरिए भी इस बात पर जोर दिया जाता है, जैसे हम दो हमारे दो।

तो देश और परिवार की उन्नति के लिए उचित निर्णय सभी से अपेक्षित है। इसी संदेश के साथ त्रिवेणी से दीजिए अपनी दोस्त नेहा शर्मा को इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत और न्यूजीलैंड ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित किया। कहा, न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच साझा सफर का एक अहम हिस्सा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी का जलावतरण किया। कहा, भारत एक मजबूत आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। परिवहन क्षेत्र में तकनीकी और नवाचार आधारित सहयोग मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 को अपनाया गया। बावी तूफान के कारण जापान और ताइवान में उड़ानें रद्द और स्कूल बंद। भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से और अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य है। ऑकलैंड में दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के प्रभारी सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि आगामी 4 वर्षों में साझा रूप से काम करने के लिए भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी 2030 तक की रूपरेखा को भी मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है।
1: दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय ये दर्शाता है कि हम अपने रिश्तों के सभी क्षेत्रों में संबंध मजबूत कर रहे हैं, विशेष रूप से रक्षा तथा सुरक्षा के क्षेत्र में और राजनीतिक स्तर पर।
0: इससे पहले दोनों नेताओं के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जो भविष्य के सहयोग को नई दिशा देगा।
2: आज हमने इंडो पैसिफिक में मैरिटाइम कोऑपरेशन के लिए एक फ्रेमवर्क पर

0: सहमति बनाई है बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज लॉजिस्टिक सपोर्ट और हाइड्रोग्राफी में सहयोग से हमारा आपसी तालमेल बढ़ेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करने के लिए भी सहमत हुए हैं।
0: वैश्विक मंच पर भी भारत और न्यूजीलैंड भरोसेमंद साझेदार और करीबी मित्र है। हमारा मानना है कि वर्तमान समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए यूएन सहित अन्य वैश्विक संस्थानों में रिफॉर्म आवश्यक है। आतंकवाद के विषय पर कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ाने के लिए आज हमने ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप का गठन किया है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष दोनों देश खेल संबंधों की 100वीं वर्षगांठ मना रहे हैं।
0: 100 साल पहले मेजर ध्यानचंद के नेतृत्व में हॉकी टीम ने यहां आकर जो इतिहास रचा था वह हमारी खेल साझेदारी को आज भी प्रेरित कर रहा है। इस उपलक्ष्य पर हम दोनों देशों में कई स्पोर्ट्स इवेंट्स आयोजित कर रहे हैं। क्रिकेट के साथ साथ अन्य खेलों में भी सहयोग बढ़ाने के लिए हमने स्पोर्ट्स ज्वाइंट एक्शन प्लान बनाया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच मजबूत होते संबंधों का महत्वपूर्ण आधार है। ऑकलैंड में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के संबंध साझा विरासत, स्थायी मित्रता, समान लोकतांत्रिक मूल्यों और उज्ज्वल भविष्य के साझा संकल्प पर आधारित हैं।
0: हमने न्यूजीलैंड से भी बहुत कुछ सीखा है और अब भी सीख रहे हैं। न्यूजीलैंड दुनिया का वो देश है जिसने सबसे पहले महिलाओं को वोटिंग का राइट दिया था। भारत भी आज विमेन लीड डेवलपमेंट के मंत्र के साथ महिलाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोल रहा है।
1: श्री मोदी ने कहा कि ऑकलैंड से वेलिंगटन और क्राइस्ट चर्च से क्वींसटाउन तक भारतीय समुदाय ने दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
0: न्यूजीलैंड वो जगह है जहां निखिल रविशंकर एयर न्यूजीलैंड के सीईओ बन सकते हैं, जहां आनंद सत्यानंद गवर्नर जनरल बन सकते हैं, जहां क्रिकेट टीम में रचिन रविंद्र, कहीं बॉम्बे हिल्स है, कहीं कोरोमंडल है, ऐसे कितने ही नाम है। यहां रहते रहते आप भी पूरे के पूरे कीवी हो गए हैं।
1: इस अवसर पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि मुक्त व्यापार समझौते से न्यूजीलैंड के निर्यातकों को भारत के विशाल बाजार तक पहुंच मिलेगी और न्यूजीलैंड में भारतीय कारोबार के लिए नए अवसर खुलेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। परियोजना 17 एकाई ये युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। श्री सिंह ने कहा कि भारत पारंपरिक रक्षा क्षमताओं और उन्नत प्रौद्योगिकियों को सुदृढ़ करके एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। श्री सिंह ने कहा कि INS महेंद्र गिरी में 75% से अधिक स्वदेशी घटकों का इस्तेमाल हुआ है। उन्होंने कहा कि ये युद्धपोत अत्याधुनिक स्वदेशी हथियारों से सुसज्जित है। इससे हिंद महासागर में भारत की समुद्री ताकत और बढ़ेगी।
2: INS महेंद्र गिरी में मल्टी फंक्शन राडार के साथ लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स का कॉम्बिनेशन है, जो आकाश से आने वाले किसी भी खतरे को दूर से ही पहचान कर नष्ट कर सकते हैं। और इसमें इंडिजिनस रॉकेट लॉन्चर है, टॉरपीडो लॉन्चर्स है, एक इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन डिफेंस सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट है और क्लोज इन वेपन सिस्टम भी है। ये तमाम चीजें INS महेंद्र गिरी को महेंद्र गिरी पर्वत के समान ही अभेद और मजबूत बनाती हैं।
1: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज महाराष्ट्र के नागपुर में ब्रिक्स देशों के

0: परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने बताया कि बैठक में वैकल्पिक जैव ईंधन तथा प्रदूषण मुक्त प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सड़क, रेल, विमानन और जल परिवहन को कार्बन न्यूट्रल बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि सहयोग को और मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 अपनाई गई है। बैठक में ब्राजील, चीन, मिश्र, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, इथियोपिया और संयुक्त अरब रात के परिवहन मंत्रियों ने अपने विचार साझा किए। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत दो दिन की ये बैठक आज से नागपुर में शुरू हुई। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में जय प्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का शुभारंभ किया। श्री शाह ने युवाओं से पुस्तकालयों में जाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पुस्तकें व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। श्री शाह ने कहा कि महान क्रांतिकारी और विचारक जय प्रकाश ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
1: किशोरों ने और युवाओं ने अपने रुचि के विषय छान लेने चाहिए और सुने सुनाए ज्ञान की बगैर हमारे रुचि के विषय में जिन्होंने पूरा जीवन खपा दिया है, जिन्होंने पूरा जीवन लगा दिया है, ऐसे लोगों ने जो अपने अनुभव, अपने विचार, अपना चिंतन और चिंतन की व्यवहारिता जो पुस्तकों में अंकित की है उसको पढ़ना चाहिए। ये बहुत बड़ा मौका है दिल्ली के युवाओं के लिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट 32,000 पुस्तक और 1 करोड़ ई बुक का एक्सेस है।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि हैदराबाद को प्रमुख हाई स्पीड रेल हब के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रस्तावित बुलेट ट्रेन कॉरिडोर हैदराबाद को पुणे, चेन्नई और बेंगलुरु से जोड़ेगा। हैदराबाद में श्री वैष्णव ने कहा कि हाई स्पीड रेल नेटवर्क से यात्रा में लगने वाले समय में कमी आएगी और दक्षिण भारत में रेल संपर्क मजबूत होगा। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वैच्छिक परिवार नियोजन, जागरूक निर्णय और स्वस्थ परिवार समावेशी तथा सतत विकास की मजबूत नींव है। विश्व जनसंख्या दिवस पर उन्होंने कहा कि इस वर्ष का विषय मां और बच्चे के कल्याण के लिए गर्भधारण के बीच स्वस्थ अंतराल और नियोजित पितृत्व है। उन्होंने कहा कि अभियान का नारा जब बच्चों में हो सही अंतराल, परिवार बने स्वस्थ और खुशहाल, गुणवत्तापूर्ण परिवार नियोजन सेवाओं तथा जागरूक प्रजनन संबंधी निर्णयों के महत्व को दर्शाता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। जापान के दक्षिणी द्वीपों में आज तूफान बावी के टकराने की खबर है। इस दौरान द्वीपों में तेज हवाएं चली और मूसलाधार बारिश हुई। लगभग 144 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं के साथ तूफान बावी के कल तड़के चीन के झेजियांग प्रांत में टकराने का अनुमान है। इस तूफान के कारण जापान के ओकिनावा प्रांत में 200 से अधिक उड़ानें रद्द की गई। ताइवान में स्कूल और सरकारी कार्यालय भी बंद रहे। इस बीच चीन ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश ने बताया कि अल नीनो के कारण देश में मॉनसून की बारिश सामान्य से कम हुई है।
2: आज के लिए हमारा असम मेघालय के लिए रेड अलर्ट भी है, वहाँ हम 20 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल अनुमान लगा रहे हैं। ईस्ट उत्तर प्रदेश, बिहार, सब हिमालय वेस्ट बंगाल, सिक्किम, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो रेनफॉल एक्टिविटी है आने वाले 4 से 5 दिन कंटिन्यू रहेगी और नॉर्थ पंजाब, नॉर्थ हरियाणा में आज हैवी रेनफॉल हो सकती है। अगर आप NCR दिल्ली की बात करें, बाई इवनिंग और लेट इवनिंग हल्का फुल्का रेनफॉल हो सकता है।
0: सिक्किम एक बार फिर देश का सबसे समृद्ध राज्य बनकर उभरा है। प्रति व्यक्ति आय के नवीनतम विश्लेषण के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय 6,46,000 रुपए से अधिक रही। ये राष्ट्रीय औसत से लगभग 3 गुना है। देश की कुल आबादी में सिक्किम की हिस्सेदारी केवल 0.05% है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: सिक्किम एक बार फिर भारत का सबसे समृद्ध राज्य प्रति व्यक्ति आय के आधार पर घोषित हुआ है। बिजनेस स्टैंडर्ड की कल प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार सिक्किम के एक औसत निवासी की आय बिहार के एक औसत निवासी की तुलना में लगभग 10 गुना ज्यादा है। पिछले 10 वर्षों से शीर्ष 4 स्थानों पर सिक्किम, गोवा, दिल्ली और चंडीगढ़, जबकि सबसे निचले स्थानों पर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मणिपुर लगातार बने हुए हैं।

0: मानस प्रतिम शर्मा के साथ मोइनाक चैटर्जी, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
1: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज शाम 7 बजे साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। श्रृंखला में इंग्लैंड ने 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ पहले महिला क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में 1 विकेट पर 21 रन से आगे खेलेगा। माइया बाउचियर 17 और हीथर नाइट 1 रन बनाकर क्रीज पर हैं। इससे पहले कल भारतीय टीम ने पहली पारी में 285 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 83, कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 58 और दीप्ति शर्मा ने 57 रन बनाए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अंतिम क्वार्टर फाइनल में कल सुबह 6:30 बजे वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इससे पहले स्पेन और फ्रांस सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और न्यूजीलैंड ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित किया। कहा, न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच साझा सफर का एक अहम हिस्सा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी का जलावतरण किया। कहा, भारत एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। परिवहन क्षेत्र में तकनीकी और नवाचार आधारित सहयोग मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा पत्र 2026 को अपनाया गया। और भारत तथा इंग्लैंड के बीच 5वां और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम साउथहैम्पटन में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूँ मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। चिराग फिल्म का गाना है लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें। शब्दकार मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार मदन मोहन।

0: राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, चित्रगुप्त का संगीत था, लता मंगेशकर की आवाज थी और फिल्म थी भाभी।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बद्दू।
2: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
3: और आ गया।
4: जल्दी बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
5: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
1: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर
6: सुनिए।

0: मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आप सुन रहे थे आरजू फिल्म का ये गाना। रचना थी हसरत जयपुरी की और संगीतकार थे शंकर जयकिशन।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: दिल ही तो है। इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में। रचना थी साहिल लुधियानवी की, संगीतकार थे रोशन। अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहाँ कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
3: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ, पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीज़ों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
2: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: लता मंगेशकर की आवाज में ये था साहिर लुधियानवी का लिखा गाना, संगीतकार थे रवि, फिल्म थी आंखें। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां,
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।

0: रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 3 बजने को है। अब आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार व सामयिक चर्चा रिले किए जाएंगे, कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नविता चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच मजबूत होते संबंधों का महत्वपूर्ण आधार है। ऑकलैंड में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के संबंध साझा विरासत, स्थायी मित्रता, समान लोकतांत्रिक मूल्यों और उज्ज्वल भविष्य के साझा संकल्प पर आधारित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने न्यूजीलैंड से बहुत कुछ सीखा है और अब भी सीख रहे हैं। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड दुनिया का वो देश है जिसने महिलाओं को वोटिंग का अधिकार दिया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में भी महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर कई कदम उठाए जा रहे हैं।
1: हमने न्यूजीलैंड से भी बहुत कुछ सीखा है और अब भी सीख रहे हैं। न्यूजीलैंड दुनिया का वो देश है जिसने सबसे पहले महिलाओं को वोटिंग का राइट दिया था। भारत भी आज विमेन लीड डेवलपमेंट के मंत्र के साथ महिलाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोल रहा है।
0: मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज शिमला के चमियाना स्थित अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान में 3 टेस्ला MRI मशीन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में चिकित्सा सुविधाओं को प्राथमिकता के आधार पर सुदृढ़ कर रही है ताकि लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के खाली पदों को भी भरा जा रहा है। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल

0: भी मौजूद रहे। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वैच्छिक परिवार नियोजन जागरूक निर्णय और स्वस्थ परिवार समावेशी व सतत विकास की मजबूत नींव है। विश्व जनसंख्या दिवस पर सोशल मीडिया संदेश में उन्होंने कहा कि इस वर्ष का विषय मां और बच्चे के कल्याण के लिए गर्भधारण के बीच स्वस्थ अंतराल और नियोजित पितृत्व है। उन्होंने कहा कि अभियान का नारा जब बच्चों में हो सही अंतराल, परिवार बने स्वस्थ और खुशहाल, गुणवत्तापूर्ण परिवार नियोजन सेवाओं व जागरूक प्रजनन संबंधी निर्णयों के महत्व को दर्शाता है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि प्रदेश सरकार उद्योगों को बढ़ावा देने, निवेश आकर्षित करने और संतुलित औद्योगिक विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत है। सिरमौर जिला के कालांब में चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के पदाधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये बात कही। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि कालांब औद्योगिक क्षेत्र में विद्युत समस्या के समाधान के लिए 60 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में भूजल विभाग द्वारा 20 करोड़ की लागत से चेक डैम लगाए जा रहे हैं, जिससे यहां की जल समस्या में सुधार होगा। उद्योग मंत्री ने उद्योगपतियों द्वारा उठाई गई समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया। बैठक में विधायक अजय सोलंकी भी मौजूद रहे। मॉनसून सीजन की शुरुआत के साथ ही उद्यान विभाग द्वारा फलदार पौधे लगाने के प्रति लोगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से नए बगीचों पर उपदान दिया जा रहा है। उद्यान विभाग कांगड़ा ने इस दौरान विभिन्न किस्मों के करीब 65,000 गुणवत्तापूर्ण फलदार पौधे तैयार किए हैं। ये पौधे जिले की सरकारी नर्सरियों और उद्यान विभाग के ब्लॉक कार्यालयों में रियायती दरों पर उपलब्ध हैं। विभाग के उपनिदेशक अलक्ष पठानिया ने बताया कि जुलाई और अगस्त माह फलदार पौधे लगाने के लिए सबसे उपयुक्त समय है और लोगों को विभाग द्वारा सस्ती दरों पर दिए जा रहे पौधे लगाने चाहिए।
1: बरसात का मौसम फलदार पौधों को लगाने का हमारे जो ब्लॉक ऑफिस हैं वहाँ पे जाकर के ले सकते हैं। 65,000 के आसपास जो है पौधे तैयार किए हैं। इसमें मुख्य रूप से जैसे हमारे जो मैंगो के पास जो प्लांट्स हैं वो 80 से 90 रुपए के बीच में है। गुआवा है हमारा 65 रुपए के आसपास आपको मिल जाएगा। जो हमारे लीची के पौधे हैं वो भी 80 से 90 रुपए के बीच में है। पूरे वर्ष का लक्ष्य रहता है 1,00,000 पौधे जो है इस बार हमारा रोपित करने का जो है लक्ष्य है।
0: प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने और बागवानी क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए राज्य में एचपी शिवा परियोजना को प्राथमिकता के आधार पर लागू कर रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार का लक्ष्य पारंपरिक खेती को आधुनिक लाभकारी बागवानी से जोड़ते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना है। उन्होंने कहा कि मंडी जिले के बहल उपमंडल का तमरोह क्लस्टर जापानी फल उत्पादन के केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है, जिससे किसानों के लिए समृद्धि व रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। इस क्लस्टर में अब तक कुल 76 बागवान जुड़े हैं और 12 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर जापानी फल के 7,000 से अधिक पौधे रोपित किए गए हैं। इसी के साथ समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।
2: प्रादेशिक समाचार अभी आप सुन रहे थे, ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। आइए सुनते हैं चंबा जिला की चिट्ठी। वाचक स्वर है नविता चौहान।
0: गत माह चंबा जिला में जिला परिषद के चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गए। चुनावों में कांग्रेस समर्थित अध्यक्ष व उपाध्यक्ष चुने गए हैं। चंबा जिला की 319 ग्राम पंचायत के नवनिर्वाचित पंचायत प्रधानों व उप प्रधानों के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन चंबा के ऐतिहासिक चौगान मैदान में किया गया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने प्रधानों व उप प्रधानों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। जिला चंबा के ग्राम पंचायत भलेई में चल रहे राजकीय महाविद्यालय को बंद कर सरकार ने चंबा महाविद्यालय में मर्ज कर दिया, जिसके विरोध में लोग लामबंद हुए और जल्द इस फैसले को वापस लेने की सरकार से मांग की है। उधर शहरी विकास विभाग के सौजन्य से दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन द्वारा चंबा जिला मुख्यालय के बचत भवन में पीएम स्वनिधि महोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर चंबा सदर के विधायक नीरज नैयर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। महोत्सव के दौरान चंबा शहर के रेहड़ी फड़ी धारकों ने शिरकत करने के बाद उपस्थित जनों को पीएम स्वनिधि योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। वहीं जिला मुख्यालय चंबा की वर्षों पुरानी पार्किंग समस्या के समाधान की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। शहर के पुराने बस अड्डे पर 7,75,00,000 रुपए की लागत से बनने वाली बहुमंजिला पार्किंग का भूमि पूजन स्थानीय विधायक ने किया। चंबा जिला के सुप्रसिद्ध

0: लक्ष्मी नारायण मंदिर का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। उपायुक्त चंबा मुकेश रेपसवाल ने ऐतिहासिक रंग महल, अखंड चंडी पैलेस व श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर परिसर का दौरा किया। उन्होंने ऐतिहासिक रंग महल में आवश्यक रखरखाव व सौंदर्यीकरण कार्यों का निरीक्षण करते हुए लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। मुकेश रेपसवाल ने ऐतिहासिक अखंड चंडी पैलेस में संचालित जिला पुस्तकालय में हुए रखरखाव कार्यों का निरीक्षण किया तथा वहां उपलब्ध सुविधाओं का भी अवलोकन किया। उपायुक्त ने विद्यार्थियों की मांग पर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित आवश्यक पुस्तकों की सूची उपमंडलाधिकारी नागरिक चंबा को उपलब्ध करवाने को कहा। राष्ट्रीय पल्स पोलियो प्रतिरक्षण अभियान के अंतर्गत कुल 48,486 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसमें से 45,349 बच्चों को ये खुराक पिलाई गई। लोकसभा सांसद डॉ. राजीव भारद्वाज ने कहा कि भारतीय ग्राम सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण 4 के तहत जिला चंबा में सड़कों का जाल बिछाया जाएगा और भारत सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना से कई लोगों का वर्षों पुराना सड़क निर्माण का सपना पूरा होगा। सांसद राजीव भारद्वाज ने चंबा जिला मुख्यालय में आयोजित जिला विकास समन्वय व निगरानी समिति की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जिला चंबा की 80% योजनाएं शामिल हैं, जबकि 20% योजनाएं कांगड़ा जिला की हैं। चंबा जिला से संबंध रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय धाविका सीमा ने एक बार फिर देश भर में चंबा सहित हिमाचल प्रदेश का नाम गर्व से ऊंचा किया है। 24 जून से 28 जून तक भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में चल रही 65वीं राष्ट्रीय स्तर की इंटरस्टेट सीनियर प्रतियोगिता में 5000 मीटर की दौड़ 16 मिनट 11 सेकंड 4 मिली सेकंड में पूरी कर सीमा ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। विश्व नशा निरोधक दिवस के अवसर पर जिला मुख्यालय चंबा के बचत भवन में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर सदर विधायक नीरज नैयर भी मौजूद थे। अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला क्रिकेट प्रतियोगिता का चंबा के ऐतिहासिक चौगान मैदान में आगाज हुआ। इस मौके पर उपायुक्त ने उपस्थित खिलाड़ियों को चिट्टे के विरुद्ध शपथ भी दिलाई। इस प्रतियोगिता में 50 से अधिक टीमें भाग ले रही हैं। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर चंबा के ऐतिहासिक चौगान मैदान में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयुष विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारियों, स्थानीय लोगों, स्कूली विद्यार्थियों तथा विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। चंबा जिला के सुप्रसिद्ध मां शिव शक्ति जातर मेला छतराड़ी को राज्य स्तरीय मेले का दर्जा दिया गया। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। जनगणना का कार्य जिला चंबा में भी जारी है। जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत जिला चंबा में भवन सूचीकरण व आवास गणना का कार्य 15 जून से प्रारंभ होकर 15 जुलाई 2026 तक संचालित किया जाएगा।
1: अभी आप सुन रहे थे
2: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 3:10 हुए हैं। अब आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।

जीने की राह फिल्म का गाना था, मोहम्मद रफी की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था और चिट्ठी मिली बरगी नगर जबलपुर से रविंद्र गद्रे, सुभाष गद्रे, दिगंबर, राजेश, शुभांगी, सृष्टि और इनके परिवार के अन्य लोगों की ओर से। दयालबंद बिलासपुर छत्तीसगढ़ से पद्माकर राउत, सविता राउत, अश्लीला और इनके अन्य साथी। और फरमाइश भेजी छत्तीसगढ़ सिमगा से रमेश कुमार यादव, माया यादव, सन्नी कोमल यादव और इनके परिवार के अन्य लोग। प्रयागराज से पिंकू और बबली की ओर से फरमाइश आई। चलिए अब सुनते हैं अगला गीत, ये फिल्म अनामिका, किशोर कुमार की आवाज, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, राहुल देवर्मन का संगीत।

अनामिका फिल्म का गाना किशोर कुमार की आवाज, शब्दकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार थे राहुल देव बर्मन, और इस गाने को पसंद किया था आप सभी श्रोताओं ने। रंगारेड्डी एकलव्य नगर से वेंकटेश, श्यामला, सायोना, साई प्रकाश, सुषमा, बाबू अकेला और इनका पूरा परिवार, गांव चलाला काठियावाड़ से सुलेमान भाई दल, खलील दल और इनके अन्य साथी, और इसी गाने की फरमाइश आई थी कटारिया कच्छ से मानविक राघाणी, डॉक्टर निषाद, कबीर, रमज़ान और इनके अन्य साथी, मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा से देवी राम इनवाती, दामिनी इनवाती। चलिए सुनते हैं अगला गीत।

लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे राजा मेहदी अली खां का लिखा ये गाना। संगीत मदन मोहन का था, फिल्म थी मेरा साया, और इसे पसंद किया था आप सभी श्रोताओं ने। उल्लासनगर से पुरुषोत्तम शामतकर, ज्योति शामतकर और चेतन शामतकर ने इसी गीत की फरमाइश की थी। एन आर श्रीवात्री ने सागर मध्य प्रदेश से, शाहू नगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला, विशाल, चेतन और इनके अन्य साथी, और नरोत्तम गौड़ और इनके साथियों ने फरमाइश भेजी थी लेक सिटी उदयपुर राजस्थान से। चलिए अब सुने ये गाना।

मेरे हम सफर फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। रचना थी आनंद बख्शी की, संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी, और इस गाने को पसंद किया था आप सभी श्रोताओं ने। गणेश पेठ पाथरडी से अंबादास शिंदे, संगीता शिंदे, अमोल अमृत, सुवर्णा शिंदे और इनके परिजन, जगाधारी हरियाणा से विजय मोहन, मीनाक्षी और इनके परिवार के अन्य लोग, लुहेड़ी महोबा उत्तर प्रदेश से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, अरविंद, राघवेंद्र, रिया, रेणु, दिव्यांशी, रोनिका और इनके परिवार के अन्य लोग। अब आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम समाप्त होता है। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ। अब दीजिए इजाज़त, नमस्कार।

नाट्य तरंग। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं हरिराम आचार्य का लिखा नाटक रहीम की ढाणी। इसका निर्देशन किया महेंद्र मोदी ने। तो आइए सुनते हैं नाटक रहीम की ढाणी।

0: वाव, जैसलमेर हमको हर एंगल से फैसिनेट करता है मिस्टर ओझा।
1: अच्छा,
0: और हम क्या, दुनिया का कोई भी टूरिस्ट इधर से मुग्ध हुए बिना नहीं जा सकता।
1: क्या क्या आपने क्या बोला मिस चारुमित्रा, मुग्ध?
0: यस मिस्टर ओझा, आई मीन इट।

0: रियली? मगर ऐसी क्या अनोखी बात है यहाँ जिसके कारण आप जैसे कला और इतिहास के प्रेमी हर वर्ष यहाँ खींचे चले आते हैं?
1: ओ मिस्टर ओझा, दिस डेजर्ट, जे मीलों तक फैला रेगिस्तान, जैसे सोने की बालुका का सागर लहराता हो, कोड़ी धूप में तप करते शमी के पेड़, लुका छिपी खेलते घोड़ावर पक्षी, गोर बन से सजे ऊंट। मिस्टर ओझा, इट इज नॉट लेस देन ए वंडरलैंड फॉर मी।
0: आप हरे भरे बंगाल से आती हैं, इसलिए ये सूखा रंगहीन लैंडस्केप आपके लिए नई बात हो सकती है।
1: नो मिस्टर ओझा, ये तो एक ब्रॉड पैनोरामा है। इस बैकग्राउंड पर कलरफुल परिधान, आर्ट, कल्चर और इतिहास के जो रंग उभरते हैं, लोक संगीत के जो स्वर गूंजते हैं, वो सब कहने का नहीं, फील करने का चीज है।
0: एक बात कहूं मिस मित्रा?
1: ओह यस।
0: आप एकदम पागल हैं।
1: रियली? इज इट अ कॉम्प्लीमेंट?
0: एक खूबसूरत चीज को एप्रिशिएट करने के लिए एक खूबसूरत नजर भी होनी चाहिए, और वो नजर आपके पास है मिस मित्रा।
1: थैंक यू मिस्टर ओझा, यू आर सो नाइस टू मी।
0: आपने यहाँ का खूबसूरत सोनार किला देखा, मूमल महेंद्र की प्रेम गाथा सुनी, मांड धरती का मीठा संगीत भी सुना, अब नया तो कुछ बचा नहीं यहाँ, किधर ले चलूं?
1: हमको क्या मालूम, गाइड तुम है मिस्टर ओझा। नया कुछ नहीं बचा तो तुम हमको जंगल में किधर ले जा रहा है? क्या खाली पेट्रोल जलाने में तुमको मजा आता है?
0: नहीं मिस मित्रा, इस बार मैं आपको जैसलमेर के इतिहास का एक अछूता पृष्ठ दिखाना चाहता हूँ। देखना चाहेंगी?
1: ओह दैट्स लाइक ए गुड गाइड। लेकिन इतिहास का अछूता पृष्ठ और इस डेजर्ट में?
0: हाँ, यह पृष्ठ स्वाधीनता संग्राम के दिनों में सन 1940 के आसपास यहाँ एक ढाणी में लिखा गया, वो भी स्याही से नहीं, शरीर के रक्त से।
1: वहाँ जरूर ले चलो मिस्टर ओझा। वो जगह क्या बोला, ढाणी?
0: ढाणी यहाँ कुएं या ताल तलैया के आसपास छोटी सी बस्ती को कहते हैं।
1: आई सी।
0: लो आ गई हमारी मंजिल।

0: ये है रहीम की ढाणी। बहुत कम लोगों को जानकारी है इसकी। आइए।
1: रहीम की ढाणी, हम भी पहली बार नाम सुना। ये रहीम कौन है?
0: है नहीं, था। ये सामने है उसका स्मारक, रहीम का मजार, एक गुमनाम शहीद की समाधि, जिसने आजादी की लड़ाई में फिरंगी हुकूमत से टक्कर ली और अपने ही तरीके से देशभक्ति की एक अनूठी मिसाल कायम की। रहीम का सिर्फ एक मिशन था, अंग्रेज सरकार का खजाना या अंग्रेज परस्तों की दौलत लूटना और उसे गरीबों में बांट देना। ब्रिटिश हुकूमत के रिकॉर्ड में रहीम खां महज एक डकैत था, चलती ट्रेन में डाके डालने वाला डाकू, जेल तोड़कर भागने वाला एक खतरनाक मुजरिम।

0: के कदमों में रहीम खां का सलाम।
1: खुदा खुश रखे। आ रहीमा, तुझे तो फिरंगियों ने कैद खाने में डाल रखा था ना।
0: हाँ पीर बाबा।
1: तो क्या तू जेल तोड़कर निकल आया?
0: बड़े कमजोर सींखचे लगा रखे हैं फिरंगी ने, हाथ लगाते ही टूट गए और मैं बाहर निकल आया।
1: पगले, तू जानता भी है कुछ? जवानी के जोश में तू किसे ललकार रहा है? उस फिरंगी सरकार को जिसका सूरज कहते हैं कभी डूबता नहीं।
0: झूठ है, अफवाह है पीर बाबा। ये सूरज मगरिब से उगा है, इसलिए इसका मशरिक में डूबना तय है।
1: कैसे?
0: क्योंकि ये उजाला देने वाला नहीं, अंधेरा फैलाने वाला सूरज है। जुल्म का अंधेरा, गुलामी का अंधेरा, नाइंसाफी का अंधेरा।
1: कुछ अपने गरेबान में भी झांक रही माँ, डकैती का धंधा करता है और इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलता है।
0: ऐसा मत कहिए पीर बाबा, मैं डकैत नहीं हूँ, अदना सा खादिम हूँ आपका। अच्छे बुरे की पहचान आपसे सीखी है। इन काले दिल वाले गोरों ने जोर जुल्म से हमारे मुल्क की जो दौलत अपनी अय्याशी के लिए बटोरी है, उसे छीन कर अपने भाइयों में वापस तकसीम करने का फर्ज जान पर खेल कर भी अदा करता हूँ।
1: बेटे रही माँ, इस काम में खून खराबा भी तो होता है, नेक काम के लिए भला बंदूक क्यों?
0: मैं तो एक हक परस्त सिपाही का मेहनत कश बेटा था पीर बाबा। बंदूक उठाने पर मुझे गोरे अफसर ने मजबूर कर दिया।
1: क्यों भला?
0: बाबा, आपने ये सवाल करके मेरा जख्म कुरेद दिया। मेरे वालिद ने एक सिपाही की हैसियत से सारी उम्र इस नामुराद सरकार की खिदमत की, मगर जब वो बूढ़ा और बीमार होकर खटिया पर दम तोड़ रहा था, तब उसी के बड़े फिरंगी साहब ने दवा के लिए चंद पैसों की मदद मांगने पर उसे गोली से उड़ा दिया।
1: अल्लाह, ऐसी जलील हरकत, तूने जान नहीं ले ली उसकी?
0: हाँ, होता तो उसे जिंदा नहीं छोड़ता पीर बाबा।
1: तो तू कहाँ था?
0: मैं वालिद की दवा के लिए एक साहूकार के पास बीवी के कड़े बेचने गया था। लौटा तब तक सब कुछ खत्म हो गया था, वालिद का कत्ल हो गया था और मेरी बीवी ने खुदकशी कर ली थी।
1: या मेरे खुदा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ?
0: उसी दिन मैंने वालिद की बंदूक उठाकर कसम खाई कि इन फिरंगी लुटेरों को अपने जीते जी चैन से नहीं बैठने दूंगा। बंदूक का पहला घोड़ा मैंने जलील अफसर के सीने पर दबाया और ये रास्ता पकड़ लिया।
1: मगर इस रास्ते में चैन कहाँ है बेटे? ये रास्ता तो जेल और फांसी के अलावा और कहीं नहीं ले जाता।
0: जेल से तो निकल ही आया हूं और अब तय कर लिया है कि जीते जी दुश्मन के हाथ नहीं आना है, चाहे वो मेरे सर पर कितने ही इनामों का ऐलान कर दे।
1: तो फिर अब करेगा क्या? हुकूमत के हाथ बड़े लंबे होते हैं बेटे, तू छुपेगा कहां?
0: अभी तो आपकी पनाह में हूं, जहां का हुक्म आप देंगे वहीं चला जाऊंगा।
1: और तेरे साथी?
0: वो भी मेरे साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे।
1: देख रही माँ, यहाँ इस ठिकाने पर तो हर किस्म का आदमी आता है।
0: हाँ बाबा।
1: तेरा यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। तुम लोग मांगणियारों का भेष बनाओ और मेरा पैगाम लेकर जैसलमेर महारावल के पास चले जाओ। उनकी पनाह पुख्ता होगी और तुम वहां एकदम महफूज रहोगे।
0: जो हुकुम पीर बाबा।
1: अल्लाह।
0: बाबा
1: बोल बेटे।
0: इतना करम किया है तो चलते चलते एक और करम का वादा दे दो।
1: हाँ हाँ बोल।
0: इस फकीर बंदे का जब भी दम टूटे, आपके कदमों में टूटे, बस यही मेरा अरमान है।
1: जिंदगी और मौत तो परवरदिगार के हाथ है रहीमा, जो उसे मंजूर होगा वही होगा। जा अब आराम कर, कल सुबह कूच कर।

0: घड़ी खमान दाता,
1: रियासत के क्या समाचार है दीवान जी?
0: सब अमन चैन है हुजूर, बस एक मामला आपकी सेवा में दरपेश करने की इजाजत चाहता हूँ।
1: पेश करो।
0: कल रात अमर सागर के रस्ते में 5 अनजान लोग मांगणियारों के भेष में पड़ाव डालकर गा बजा रहे थे।
1: कोई चोर डाकू तो नहीं है? कौन है उनका मुखिया?
0: वो अपना नाम रहीमा बताता है अंदाता, पीर पगारों की चिट्ठी लेकर आया है और हुजूर के चरणों में हाजिर होकर कोई पैगाम देना चाहता है।
1: कहाँ है वो लोग?
0: पुलिस की हिरासत में अंदाता।
1: और वो चिट्ठी?
0: ये है वो चिट्ठी अंदाता।
2: महारावल जैसलमेर, आप पर अल्लाह ताला की नजरे करम हो, पीर पगारों की दुआ कबूल फरमाएं। बाज़ाब्ता अर्ज की जाती है कि चिट्ठी लाने वाला शख्स हमारा वफादार खादिम है, इस नेक बंदे को अपनी पनाह में लेने का करम फरमाएं। ये आपकी जी जान से खिदमत करेगा, बाकी पैगाम इसके मुंह से रूबरू सुनकर खातिरी कर लें। बकलम पीर पगारो।
1: रहीमा को बाइज्जत बादल विलास में हमारे रूबरू पेश किया जाए।
0: जो हुकुम अंदाता।
3: महारावल का इकबाल बुलंद हो, नाचीज की जोहार कबूल फरमाए अंदाता।
1: आओ रहीमा, पीर पगारों की चिट्ठी हमें मिल गई है।
3: हुजूर की मेहरबानी है।
1: दीवान जी कुछ सवाल पूछेंगे तुमसे, ठीक से जवाब देना।
3: जो हुकुम अंदाता।
4: हमारे पास जो खबरें हैं उनके मुताबिक अमरकोट का बाशिंदा रहीम खां एक खतरनाक डकैत है जो ब्रिटिश हुकूमत के खजाने लूटता फिरता है।
3: खबर सही है।
4: वो रहीम खां कंपनी राज का एक सजा याफ्ता मुजरिम और फरार कैदी है।
3: एकदम सच है।
4: अंग्रेज सरकार ने उसके सिर के लिए 1,00,000 रुपए के इनाम की डोंडी पिटवा रखी है।
3: आप बजा फरमाते।
4: क्या तुम वही रहीम खां हो?
3: खुदा झूठ न बुलवाए, ये खादिम वही रहीमा है।
1: इतने गुनाहों का बोझ लेकर हमारी रियासत में किस लिए आए हो?
3: महारावल की छत्र छाया में पनाह लेने अंदाता।
1: हमारा काम क्या डकैत और मुजरिमों को शर्म देने का रह गया?
3: गुस्ताखी माफ हो अंदाता, रहीमा इंसानियत की वतन परस्ती की राह पर चलने वाला एक नाचीज बंदा है। डकैत और मुजरिम का नाम तो उसे फिरंगियों ने दिया है, जो 7 समंदर पार से यहाँ आकर हमारे मुल्क की दौलत और इज्जत पर खुलेआम डाका डाल रहे हैं। रहीमा तो सिर्फ उनसे अपने मुल्क की दौलत वापस चीन लाने का काम अंजाम देता है।
1: तुम्हारी ज़बान से बगावत की बू आती है।
3: वतन परस्ती अगर बगावत है अंदाता, तो मैं फख्र के साथ अपना बागी होना कबूल करता हूँ।
4: किसी रजवाड़े में एक बागी को शरण देने का मतलब है ब्रिटिश राज से सीधी टक्कर लेना।
3: दीवान जी, मैं अनपढ़ आदमी हूं, सियासत नहीं समझता, मुल्क की खिदमत करना चाहता हूं और इन गोरों को यहां से बाहर खदेड़ने वाली हर जंग में हिस्सा लेना चाहता हूं। इसलिए अपने पीर बाबा के हुक्म से और महारावल की अजमत के एतबार से यहां आया हूं।
4: पूरी रियासत इस वक्त जबरदस्त अकाल की चपेट में है, खजाना तंग है, इसलिए फिलहाल हम तुम्हें महावार।
3: हमें कुछ नहीं चाहिए अंदाता, आपने जो भरोसा रखकर हमें पनाह दी है उसके बदले में मेरी खाल की जूती भी बनाकर आपको पहना सकूं तो कम है। और दीवान जी, रहीमा के जिंदा रहते अगर रियासत का खजाना तंग रह गया तो फिर रहीमा के वजूद का कोई मतलब नहीं।
1: क्या फिर कोई टाका डालोगे?
3: आप फिक्र न करें अंदाता, रियासत के खजाने को मालामाल कर देना मेरा पहला फर्ज होगा। डाका सिर्फ फिरंगी तिजोरियों पर पड़ेगा, वो भी सरहद के पार, ये मेरा अहद है।
1: तो फिर ठीक है दीवान जी।
0: हुकुम।
1: रहीम खां को अपनी टोली के साथ खुफिया महकमे में खास ओहदों पर लगा दो।
0: जो हुकुम अंदाता।
1: आज से इसका खुफिया नाम होगा राम सिंह।
3: घनी घनी खम्मा अंदाता, इस मेहरबानी के बदले ये रहीमा आखिरी सांस तक आपकी खिदमत करेगा और वतन की मिट्टी पर अपने खून की आखिरी बूंद तक कुर्बान कर देगा।

0: बैंक पे भारी डकैती, ब्रिटिश बैंक की तिजोरी लूटी, रैन का 50 लाख की रकम लूट कर फरार, हर जगह कड़ी नाकाबंदी। पढ़िए आज की ताजा खबर, कराची एक्सप्रेस पे भारी डकैती।
1: साथियों, खुदा के फजल और आप लोगों की बहादुरी से हमें फिर एक बड़ी कामयाबी मिली। आज बड़े दिनों बाद अमल में स्वाद आएगा, क्यों करीमा?
2: रहीमा, ये वक्त राग रंग का नहीं है। छापा मार को वारदात के बाद वापस अपने गुप्त ठिकाने और गुप्त भैंस में लौट जाना चाहिए।
1: तो फिर बोलो, ब्रिटिश राज
3: मुर्दाबाद,
1: वतन के दुश्मन
3: मुर्दाबाद,
1: इनकलाब
3: जिंदाबाद,
1: हिंदुस्तान
3: जिंदाबाद।
1: अब चलो, ऊंटों के पिलान कस लो और कारतूस पेटी कमर में बांध कर बंदूकें संभाल लो, हम जैसलमेर चलेंगे।

0: ऑल इंडिया रेडियो है। सिंध प्रांत से समाचार मिला है कि अमरकोट का खतरनाक डकैत और फरार कैदी रहीम खां चलती ट्रेन में 50 लाख रुपयों की डकैती के बाद रात के अंधेरे में अपने साथियों के साथ फरार होने में कामयाब हो गया। सरकार को संदेह है कि वो सिंध की सरहद को पार करके जैसलमेर के रेगिस्तान की तरफ भागा है। उसकी तलाश और गिरफ्तारी के लिए सरकार ने सिंध प्रांत के आईजी पुलिस मिस्टर हटसन की अगुवाई में ऑपरेशन सर्च का ऐलान किया है।
1: Good afternoon, Your Majesty, His Highness of Jaisalmer.
2: आइए आइए, welcome, Mr. Harrison. फरमाइए क्या खिदमत की जाए?
1: As you know, Your Highness, हम इधर on duty आया। हमारा मिशन है Operation Search. इस ऑपरेशन में हम आपका मदद मांगता।
2: बड़े शौक से Mr. Harrison, आपकी मदद करके हमको खुशी होगी। आप इस ऑपरेशन की डिटेल्स बताएं तो बेहतर हो।
1: Oh yes, Your Highness. सिंध सूबे का रहीम खान एक ट्रेन रॉबरी के बाद फरार हो गया है। गवर्नमेंट को डाउट ही नहीं, पूरा यकीन है कि द ब्लडी एब्सकाउंडर वो भगोरा आपकी रियासत में कहीं छुपा है। इसलिए ये ऑपरेशन सर्च हम इधर से स्टार्ट करना मानता।
2: जरूर मिस्टर हर्सन, इस ऑपरेशन में हम आपकी पूरी मदद करेंगे।
3: राम सिंह
4: हुकुम अंदाता।
2: हर्सन साहब, ये राम सिंह हमारे खुफिया महकमे का बहुत काबिल अफसर है। रियासत की चप्पे चप्पे की बहुत अच्छी जानकारी है इसे। इसे अपने स्टाफ के साथ हम आपकी मदद के लिए बाकायदा तैनात करते हैं।
1: That's very good. Thank you, Your Highness.
4: रहीम खां का सलाम दीवान जी।
5: आओ रहीमा, कैसा रहा ऑपरेशन?
4: ऑपरेशन तो गोरी सरकार का था दीवान जी, पूरा करवा दिया। सच कहता हूँ दीवान जी, अंदाता का भी जवाब नहीं है। क्या मीठी और पुख्ता चाल खेली है, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। बस अब एक वारदात सक्कर सिंध में और करना चाहता हूँ दीवान जी।
5: कैसी वारदात?
4: वहाँ अंग्रेजों का एक पिट्ठू है, सोने चांदी में हीरे जवाहरात में लूटता है। गरीबों से लूट लूट कर अरबों की पूंजी कमाई है उसने। बस एक झपट्टा उस पर जरूर मारना है।
5: अब थोड़े दिन आराम ही कर ले रहीमा।
4: जब तक ये गोरे लुटेरे यहाँ हुकूमत कर रहे हैं तब तक हमारे लिए आराम हराम है।
5: सिंध में चौकसी बहुत कड़ी हो गई होगी, तू क्यों अपनी जान जोखिम में डालता है?
4: यहां मौत का डर किसको है? जोखिम से खेलना ही तो अपना शौक रहा है दीवान जी। आज रात हमारी टोली निकल जाएगी, आप तो परसों तक लूट का माल जाब्ते में दाखिल खजाना करने की तैयारी रखवाना।
5: जैसी तेरी मर्जी रहीमा।
4: अच्छा,

0: अलविदा।
1: अलविदा। ईश्वर तुझे सफलता दे।
2: ये ऑल इंडिया रेडियो है। सिंध सूबे से एक भारी डकैती के समाचार मिले हैं। रहीम खान ने कल रात सखर के एक नामी सेठ की कोठी पर संगीन डाका डाला। वारदात की खबर मिलते ही पुलिस ने कोठी को घेर लिया और गोलीबारी की, जिसमें कई सिपाही मारे गए। रहीम खान को भी गोलियां लगी, लेकिन वो घायल हालत में भी अपने साथियों की मदद से पुलिस को चकमा दे गया। लूट का ब्यौरा इकट्ठा किया जा रहा है और पूरे सिंध में रेड अलर्ट कर दिया गया है।

0: नहीं भाई, पानी। कैसी है तबीयत?
1: मैं ठीक हूँ करीमा। माल कहाँ है?
0: वो ठीक ठिकाने पहुंच चुका होगा। अब्दुल जुम्मन और पंडित अलग अलग रास्तों से माल लेकर जैसलमेर गए हैं।
1: अब कोई फिक्र नहीं। जरा ये पट्टा खोल दे।
0: तुम्हारी हालत ठीक नहीं है रही भाई, सारे कपड़े खून में तर हैं।
1: जिस मिट्टी से ये जिस्म बना है, ये खून उसी की अमानत है। बहनी दे से।
0: जिद मत करो रही भाई, तुम्हें अभी बहुत जीना है। वतन की खातिर, हमारी खातिर तुम्हें फौरन अस्पताल पहुंचाना बहुत जरूरी है।
1: कौन सा अस्पताल?
0: जैसलमेर लिए चलता हूँ।
1: अरे पगले, जिसने मुझे जीते जी पनाह दी, उहदा दिया, उस अंदाता को मरने के बाद मुसीबत में डाल दूं? नहीं, जो अब तक राज रहा है उसे राज ही रहने दे करीमा।
0: मेरी बात मानो रहीम भाई, चलो मेरे साथ।
1: नहीं, अब ये ढाणी छोड़कर कहीं नहीं जाना। मेरा जिस्म रेगिस्तान की इस मिट्टी में मिल जाने दे करीमा।
0: ऐसा मत बोलो रहीम भाई, ऐसा मत बोलो।
1: रो मत करीमा, इधर देख पगले, मैं कितना खुश हूं। जैसी बन सकी वतन की खिदमत की, ना कि ऐश के लिए नहीं, फर्ज के लिए डाले। जिसने पनाह दी उसका कुछ कर्ज उतारा, आगे ये काम तुम लोग करना। फिरंगी रात से टक्कर लेते रहना। पानी पानी
0: ये लो।
1: बस एक तमन्ना दिल में रह जाएगी।
0: कौन सी तमन्ना रही भाई, बोलो बोलो। तो
1: पीर बाबा का दीदार, उनकी कदम बोसी।
0: चलो रही भाई, मैं ले चलता हूँ वहाँ।
2: अल्लाह अल्लाह
0: या खुदा, तेरी खुदाई

0: बाबा आप यहाँ?
1: पीर बाबा आपने जहमत उठाई, यहाँ मेरे मौला इस गुनहगार पर इतना करम।
2: गुनहगार नहीं है रहीमान, तूने वतन परस्ती के हक में एक वफादार सिपाही की तरह अपना खून बहाया है। अब वो दिन दूर नहीं जब इस मुल्क से ये फिरंगी राज खत्म होगा, आजादी का नया सूरज उगेगा।
1: आमीन। अलविदा बाबा।

0: करेगा, रहीम मरा नहीं, ये उसकी कुर्बानी है, शहादत है उसकी। शहीद को आंसुओं से विदा नहीं करते बेटे, जिस सरजमीन पर उसका खून गिरा है उसे वहीं बाइज्जत दफन करो। उसका मजार उसकी वतन परस्ती की याद दिलाएगा। आज से ये ढाणी रहीम की ढाणी कहलाएगी, ये रेत के टीले उसकी कुर्बानी के सबूत बनेंगे और ये हवाएं उसकी शोहरत के नगमे दोहराएगी।
1: ये है जैसलमेर के इतिहास का वो गुमनाम पन्ना मिस मित्रा, रहीम की ढाणी, रहीम खां का ये मजार।
2: बड़ा पवित्र है ये स्मारक मिस्टर ओझा, श्रद्धा के भाव से हम इसको नमन करता है। इसका दर्शन कराने के लिए आपको धन्यवाद कैसे दिया जाए समझ में नहीं आता। आई रियली थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।
1: बस बस मिस मित्रा, एक गाइड के नाते ये मेरा फर्ज था। आइए चलें।

0: अभी आप सुन रहे थे हरिराम आचार्य का लिखा ये नाटक रहीम की ढानी। इसका निर्देशन किया महेंद्र मोदी ने और आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।
1: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। साई के 4 बजे हैं। इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम।
2: नमस्कार दोस्तों, बॉम्बे टॉकीज में आज आप सुनने वाले हैं जानी मानी राइटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर सीमा कपूर से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। आज प्रस्तुत है इस बातचीत का पहला भाग।
3: बॉम्बे टॉकीज में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है जानी मानी लेखिका, निर्माता और फिल्म निर्देशक सीमा कपूर को। सीमा जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
4: शुक्रिया, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि विविध भारती पे एक बार फिर से मैं आई हूँ और आप लोगों से रूबरू हूँ।
3: जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आपका जन्म रंगमंच और कला से जुड़े परिवार में हुआ है। आपके पिता रंगमंच से जुड़े हुए थे और माँ उर्दू कवित्री, शायरा और शास्त्रीय संगीत की गायिका हैं। तो आपका बचपन कहाँ और कैसे बीता?
4: देखिए, हमारा बचपन जो है बहुत ही रंग बिरंगा रहा है। अच्छा। हम सब बहन भाइयों का दरअसल

0: मेरे जो दादाजी थे वो आर्मी में कर्नल थे उस समय, तो पार्टीशन भी नहीं हुआ था, अंग्रेजों के जमाना था उस समय। और जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं ददीहाल की साइड के, सब बड़े बड़े ओहदों पे हैं आर्मी में या बड़े बड़े वकील
1: जी।
0: मेरे पिताजी लाहौर में पढ़े श्री मदन लाल कपूर, और मेयो कॉलेज जो बहुत ही उस समय और आज भी बहुत रेप्यूटेड कॉलेज है, वहाँ पढ़े वो। उन्हें पता नहीं क्या सूझा कि वो दिल्ली आ गए, और उन्होंने 1930 के करीब एक नाटक कंपनी, उस समय हिंदुस्तान में दो चार नाटक कंपनियां चला करती थी, पारसी थिएटर उन्हें बोला जाता था, वो उस समय सोहराब मोदी साहब का था, पृथ्वीराज जी का था और बाबूजी का, मेरे पिताजी का, तो उन्होंने वो रंगमंच ज्वाइन किया और उन्होंने एक नाटक कंपनी बनाई जिसमें 300 के करीब लोग थे, और प्रोपराइटर मालिक बाबूजी थे मेरे पिताजी। वो कंपनी चलाना अपने आप में एक रंगमंच की सेवा जो है, लेकिन उस समय क्या था कि समाज में खासतौर से नॉर्थ इंडिया में नाटक को अच्छा नहीं समझा जाता था, नाचना गाना
1: जी।
0: तो मेरा जो ननिहाल था वो चूंकि बंगाली परिवार था, मेरे नाना नानी बंगाली थे, संगीत उन लोगों का तो रचा बसा है और उनका तो गाना सीखना बहुत ज़रूरी है, तो माँ मेरी क्लासिकल किराना घराने से उन्होंने गाना सीखा था, और किसी तरह संयोग से बाबूजी और माता जी की शादी हो गई। माँ मेरी बहुत छोटी थी जब शादी, उस जमाने में 13-14 साल की उम्र में हो जाया करती थी, तो इस तरह से बाबूजी को उनके परिवार ने डिसोन कर दिया, निकाल दिया एक तरह से, क्योंकि उन्होंने ऐसा प्रोफेशन चुना था, और माँ ने लेकिन मेरे बाबूजी का साथ दिया, तो इस तरह से नाटक कंपनी में हमारी आँख खुली। और आप ये सोच लीजिए कि फिर वो हमारे रंगमंच जो है, नाटक कला हर विधा की, क्योंकि माताजी और पिताजी दोनों ही लिटरेचर पोएट्री इसमें दखल रखते थे। बाद में हमें मालूम पड़ा कि हमने बचपन में इंटरनेशनल साहित्य पढ़ा है, इंडियन साहित्य तो पढ़ा ही, भारतीय साहित्य तो सारा पढ़ा, चाहे वो शरद चंद हों, बंकिम चंद हों, रविन्द्रनाथ टैगोर हों, प्रेमचंद हों, जितने भी हैं, रेणु हों, और हमने बाहर का भी जो साहित्य है, टॉलस्टॉय, दोस्तोवस्की, और ये सारी चीज़ें, बाबूजी अंग्रेजी वाले थे, मम्मी उर्दू और हिंदी वाली थी, तो हमें विरासत में ये कला और संगीत, रंगमंच, वो हमारे खून में है। और सच पूछे तो अगर हमें कहा जाए कि आप कुछ ये नहीं करना है, जो कला क्षेत्र से आप हट जाए, तो शायद हम लोग भूखे मर जाएं, हमें कुछ नहीं आता
1: और। जी जी जी, उसी में रचे बसे हैं और उसी में पूरा जीवन हमने लगाया है
0: जी।
1: तो सीमा जी, हम आपसे और भी बात करेंगे आपकी जिंदगी के पहलुओं पर, कोई गीत आपकी पसंद का पहले सुन लें।
0: जी बिल्कुल, संगीत तो आप जानती हैं हमारे रक्त में मिला हुआ है। फिल्म है आरती
1: जी,
0: रोशन साहब का म्यूजिक है, और उसमें गाना था आपने याद दिलाया तो
1: मुझे याद आया। क्या बात है, क्या बात है। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये
0: जी।

0: सीमा जी, निर्देशक और नाटककार रंजीत कपूर की बात अगर हम करें, अनु कपूर साहब की बात करें और निखिल कपूर की आप बहन हैं और जाने माने अभिनेता ओमपुरी साहब से आपने विवाह किया, इन सब चीजों को, इन सब बातों को आप कैसे देखती हैं?
1: छोटा सा प्रश्न आपने पूछा है लेकिन वो पूरा जीवन उसमें समेटा हुआ है मेरा। मेरे भाई जो है तीनों अपनी अपनी विधा में लेकिन कला क्षेत्र में ही है। सबसे छोटा जो ब्रदर है वो बहुत अच्छा शायर है, उसने कई फिल्मों में गाने लिखे हैं। मेरी हर सीरियल का टाइटल सॉन्ग वो ही लिखता है और हर सीरियल और फिल्म का टाइटल वो ही रखता है। और अनु भाई एक्टर हैं, आप ही जानते ही हैं। रंजीत भाई जो हैं वो निर्देशक हैं, राइटर हैं। तो सब अपनी अपनी जगह बादशाह हैं अपने अपने फील्ड में
0: जी।
1: और जब आप ऐसे लोगों से घिरे होते हैं तो आप एनरिच होते चले जाते हैं। अच्छा, हम बहन भाइयों का करियर तकरीबन एक साथ ही शुरू हुआ, ऐसा नहीं था कि कोई आगे है कोई पीछे है, ऐसे सब साथ ही चल रहे थे, साथ ही संघर्ष कर रहे थे और अपने अपने क्षेत्र में, क्योंकि कोई भी क्षेत्र किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है लेकिन उसके बावजूद कला से जुड़ा हुआ है।
0: जी जी।
1: तो इसलिए हम लोग अपने अपने रास्तों पे, जो कंटकीर्ण रास्ते थे उन पे चलते हुए हम लोग यहाँ तक पहुँचे।
0: तो कभी भाई बहनों में कोई कंपटीशन रहता होगा?
1: कंपटीशन शब्द मैं नहीं इस्तेमाल करूँगी, एक अंग्रेजी में शब्द है जिसे हिंदी में प्रतिस्पर्धा बोलते हैं। ईर्ष्या के बिना आप एनवी करते हैं, आप किसी से ये कहते हैं कि आपको इतना ज़्यादा क्यों आता है, है ना, मन में ये सवाल होता है। और मुझे हमेशा मेरे जो जितने भी मैं अपने दुश्मन मानती हूँ ना वो बहुत ऊंचे, क्योंकि कहते हैं ना जिंदगी में दुश्मन भी बनाओ तो बहुत बड़ा बनाओ वरना आपको उसके बराबर होना पड़ता है। तो मेरा कंपटीशन हमेशा दुनिया के महान डायरेक्टर से है, दुनिया के महान राइटर से। कंपटीशन से मतलब प्रेरणा।
0: जी जी।
1: आपको वहां जाना है, इतनी ऊंचाई पे जाना है। तो भाइयों से भी वही रहा है कि इनको इतना ज़्यादा आ रहा है मुझे क्यों नहीं। तो उसके बाद ना आपको एक फोर्स मिलती है कि आप और ज्यादा पढ़ें।
0: बिल्कुल, एक हेल्दी कंपटीशन रहा हमेशा।
1: जी
0: जी। तो ओमपुरी साहब भी आपकी जिंदगी में आए, आपने उनसे विवाह किया, किन शब्दों में आप अपनी बात रखना चाहेंगी?
1: देखिए, 11 साल हमारा अफेयर चला। और तब मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ रही थी और तब पुरी साहब स्ट्रगल कर रहे थे। और उसके बाद जब 11 साल के बाद हमने डिसाइड किया शादी करना, तब उनको थोड़ा थोड़ा काम मिलना शुरू हुआ था। तो शादी हुई। पुरी साहब एक ऐसे कलाकार हैं जो, अगर मैं अपने लोगों की तारीफ अपने मुंह से करना थोड़ा अच्छा नहीं लगता,

0: लेकिन दुनिया के इन्हें गिने जो कलाकार होते हैं, मैं पुरी साहब को उनमें रखती हूँ। इसलिए नहीं कि मेरा उनसे प्रेम है,
1: जी
0: मेरी शादी हुई थी या जो भी, लेकिन ना बिल्कुल निष्पक्ष रूप से मैं देखती हूँ। क्योंकि देखिए, जिस कलाकार की नकल की जा सके वो स्टार हो सकता है, वो कलाकार नहीं हो सकता।
1: जी
0: पुरी साहब की आप डायलॉग डिलीवरी की, उनके आप किसी भी चीज़ की नकल नहीं कर सकते, है ना। तो वो हर कैरेक्टर में ढल जाते थे।
1: बिल्कुल
0: और मैंने उनका एक जो बहुत ही सशक्त पक्ष देखा है, वो ये देखा है कि एक छोटा सा, मैं एक सीरियल बना रही थी तो उन्होंने कहा, अरे ये रोल मैं करता हूँ, खुद कह के। मैंने कहा, पुरी साहब आप इतनी बड़ी बड़ी फिल्में करते हैं, इतने महान मतलब
1: जी
0: नाम है आपका इंटरनेशनल लेवल पे, ये आप क्यों? नहीं नहीं सीमा, छुट्टी है, मैं करूँगा। मैं वो बैठ नहीं सकते थे,
1: हाँ,
0: उनकी प्रॉब्लम थी कि उनको
1: फ्री
0: काम,
1: नहीं बैठे।
0: हाँ फ्री नहीं बैठ। तो मैं ऐसे काम करते हुए गई तो वो बैठे हुए नोट्स बना रहे थे। मैंने कहा, क्या कौन सी स्क्रिप्ट है, कौन से? बोले, नहीं तुम्हारा वो करना। मैंने कहा, इतनी छोटी सी सीरियल का एक छोटे से उसमें भी आप नोट्स बना रहे हैं, तो आप देखिए डेडिकेशन काम के
1: जी
0: प्रति,
1: जी जी
0: के इतना आपने जिंदगी हो गई है, आपके 40 साल हो गए हैं काम को करते हुए, जिसमें आपने इंटरनेशनल अवार्ड ले लिए हैं,
1: जी
0: नेशनल अवार्ड ले लिए हैं, इसके बावजूद छोटा सा काम है लेकिन उसके नोट्स बना रहे हैं, उसको अंडरलाइन कर रहे हैं और उस पर आप डिस्कस कर रहे हैं कि सीमा मैं ऐसे करूं, मैं ये पहन लूं या वो कर लूं, इसको, इस कैरेक्टर को ऐसे बना लूं। तो आपको ये सीखने को मिलता है, जैसे लता जी वगैरह को भी मैंने देखा है कि
1: जी
0: कोई भी काम जब वो करते हैं तो वो अपने आप को तिफले मकतब समझते हैं कि मैं अभी पहली क्लास में हूँ, और यही उनके जो विनम्रता है उनको महान बनाती है,
1: जी
0: और वही पूरे साहब में था।
1: जी

0: ओमपुरी साहब के अभिनय के बारे में तो हम आपसे क्या कहें, मतलब उनकी आवाज, उनकी अभिनय प्रतिभा, उनका चेहरा हर बात पर, मतलब संवाद बोलता था उनका चेहरा, उनकी आंखें, जो उनकी जज्बात, फीलिंग्स,
1: जी
0: वो पर्दे पर साकार हो जाती थी। आपको उनकी कौन सी फिल्में पसंद थी?
1: मुझे परफॉर्मेंस वाइज तो देखिए वो सब में बहुत न्याय करते थे अपने किरदार के साथ, लेकिन एक सौभाग्य मैं कहूँगी कि हरियाणा फिल्म फेस्टिवल था, यमुनानगर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मेरी फिल्म हार्ट द वीकली बाजार थी, रंजीत भाई की फिल्म चिंटू जी थी और पुरी साहब की फिल्मों का सिंहावलोकन था, रिट्रोस्पेक्टिव था। तो उसमें हम तीनों ही वहाँ थे। तो मैं पुरी साहब की एक फिल्म मैंने नहीं देखी थी, तो मैंने कहा कि चलिए मैं देखूंगी आज आपकी ये फिल्म। बाकी फिल्में देखी थी, वो थी माई सन द फेनेटिक, अंग्रेजी फिल्म थी। तो मैं जब वो फिल्म देखी, यकीन मानिए मैं एक तो ज़ारो कतार रो रही थी, और मैंने ना जैसे ही फिल्म ख़त्म हुई है ना, मैंने उनके पैर छू लिए। मैंने कहा क्या ऐसा लग नहीं रहा था कि ये पुरी साहब हैं, मैं वो किरदार को देख रही थी। मतलब मैं आपको शायद शब्दों में ना समझा पाऊँ
0: जी
1: कि वो परफॉर्मेंस जो थी ना उनकी, वो दुनिया से बाहर की परफॉर्मेंस थी।
0: जी जी जी
1: तो वो फिल्म मेरे लिए सबसे उनकी महत्वपूर्ण है।
0: इसके अलावा उनकी बहुत सारी फिल्में आपने देखी भी होंगी।
1: सारी फिल्में तकरीबन देखी हैं।
0: हाँ
1: तो अब देखिए ना उनके फ्लेवर देखिए आप, एक तरफ अर्धसत्य करते हैं, आक्रोश करते हैं, गूंगे का रोल है, आंखों से बोलते हैं वो, है ना, और एक तरफ चाची 420 करते
0: जी
1: हैं, है ना, मालामाल वीकली करते हैं, और सीरियसली आपको, सीरियस रह के आपको हंसाते हैं। उसमें कहीं बफूनरी की जरूरत ही नहीं है कि ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बिल्कुल सीरियसली। तो उनका रेंज आप, क्योंकि देखिए रुलाना बहुत आसान है,
0: बिल्कुल
1: हंसाना बहुत
0: बहुत
1: मुश्किल
0: मुश्किल।
1: है। तो वो कलाकार थे, मतलब अल्टीमेट कहूंगी
0: जी
1: इनको
0: जी
1: मैं।
0: और इंटरनेशनल
1: जी
0: लेवल के कलाकार, उनकी मतलब कोई फिल्म ऐसी नहीं है जिस पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ हम उनके अभिनय से
1: जी
0: प्रभावित नहीं हुए।
1: फिल्म कमज़ोर हो सकती है, फिल्म की स्क्रिप्ट कमज़ोर हो सकती है, फिल्म का डायरेक्शन कमज़ोर हो सकता है, लेकिन वो उनको जितना किरदार दिया गया वो कमज़ोर नहीं हो
0: बिल्कुल।
1: सकता।
0: आपको संगीत में भी बहुत रुचि रही है ना,
1: जी
0: और आपकी चूंकि माताजी स्वयं क्लासिकल सिंगर रही हैं
1: जी
0: तो आपके खून में भी सिंगिंग रही होगी,
1: जी
0: तो किस रूप में आप देखती हैं संगीत को?
1: अगर आप इंडियन संगीत की बात करते हैं, भारतीय क्लासिकल संगीत की बात करते हैं और वेस्टर्न क्लासिकल की बात करते हैं, तो मुझे दो चीज़ें हैं। वेस्टर्न क्लासिकल जब मैं सुनती हूँ तो मुझे ह्यूमन इमोशंस दिखाई देते हैं, इंसान के जो जितने भाव हैं उसके जितने भी भावनाएं वो दिखाई देती हैं। और जब आप इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सुनते हैं तो आपको कुछ नहीं दिखाई देता है, आपको दिव्य रोशनी दिखाई देती है। तो दो चीज़ों का ये मेरे लिए दिव्यता जो है वो म्यूजिक है।
0: महत्व। जी।
1: मैंने भी सीखा है नसीर अहमद खान साहब से दिल्ली में, तो मैं सीखती थी, लेकिन जैसे बोल रही हूँ ना कि म्यूजिक मेरे लिए डिवाइन है, दिव्य है, उसको मैं प्रोफेशन नहीं बना सकती, उससे कमाई नहीं कर सकती, इसलिए मैंने अभिनय और म्यूजिक को कभी प्रोफेशन नहीं बनाया। वो मेरे लिए आत्मा की चीज़ है, उसको
0: जी।
1: सुनती हूँ।
0: तो
1: जी
0: अगर हम आपसे कुछ गुनगुनाने को कहें तो आप कुछ पसंद करेंगी गुनगुनाना?
1: गुनगुनो ये तो आपने
0: क्योंकि यहाँ वो प्रोफेशन से नहीं जुड़ा है।
1: एक लाइन गुनगुनाती हूँ। मेरी माताजी गाया करती थी ये गाना, बचपन में सुना था, लता जी का है,

0: आपके जीवन में लेखन और थिएटर की शुरुआत कब से हुई, कैसे हुई और आपने लिखना कब शुरू किया?
1: मैं जब 15-16 साल की थी तो मैं छुप के कविताएं लिखती थी।
0: अच्छा, छुपकर क्यों?
1: छुपकर ये कि मुझे, देखिए ना, माँ इतनी बड़ी शायरा थी और वो मुशायरों में जाती थी, उन मुशायरों में साहिर लुधियानवी, कैफी आजमी, मजरू सुल्तानपुरी, फिराक गोरखपुरी जैसे बड़े बड़े शायरों के बीच और माँ जिस तरह की शायरी करती थी, उनके आगे हम कुछ नहीं। और मैंने तो फ्री वर्स में अतुकांत लिखना शुरू किया था, तो इसलिए मुझे लगता था कि तो बड़ी बेकार सी चीज़ें हैं, लेकिन मन में उद्गार आते थे तो उसको कागज़ पे उतार लेती थी। तब से शुरू किया मैंने।
0: जी जी, तो सबसे पहले क्या लिखा आपको याद है कि जब लेखन की शुरुआत हुई होगी तो सबसे पहला क्या लिखा गया होगा?
1: ऐसे एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकती हूँ कि पहला कौन सी रचना थी, लेकिन वही 15-16 साल की उम्र में मैंने अपने माता पिता पे एक 4 लाइनें लिखी थी। तुम अपने आंचल पर एक घनेरी छांव काढ़ दो, ताकि मई जून की तपती गर्मी में भूख और प्यास से बेहाल, जब मैं उस छांव का आश्रय पा सकूं, तो मुझे लगे भूले भटके प्यासे राही का पड़ाव यहीं तक, बस यहीं तक।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सीमा जी, बातचीत का ये सिलसिला तो चलता रहेगा, आपकी पसंद का ये गीत सुन लिया जाए?
1: जी बिल्कुल।

0: एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं कि 1988 से आपके टीवी धारावाहिक शुरू हुए और साथ ही आपने सरकारी मंत्रालयों के लिए भी डॉक्यूमेंट्रीज लिखी काफी, इन सभी पर थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं।
1: जी, कॉलेज से मैं निकलने के बाद पढ़ी रही थी, उन दिनों अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ती थी, और कहते हैं ना, जहाँ जहाँ पढ़े पग संतन के वहीं वहीं भंटा ढार। तो जैसे ही मैंने अलीगढ़ में एडमिशन लिया, उन दिनों राइट्स बहुत होने लगे, फसाद, तो हमें भागना पड़ता था वापस। तो वो 3 साल का 4 साल में हो गया बीए, तो उस बीच मुझे दिल्ली आना पड़ता था क्योंकि अलीगढ़ से दिल्ली पास था, तो मैं दिल्ली आ जाती थी। इसलिए मैंने 83 में सबसे पहले पपेट थिएटर ज्वाइन किया
0: जी
1: दिल्ली
0: हाँ,
1: में
0: जी।
1: तो वो इंटरनेशनल लेवल का था, जो हमारे ट्रेडिशनल पपेट्स होते वैसा नहीं था, मॉडर्न पपेट्री हम करते थे, और इंडिया को हमने कई कंट्रीज में रिप्रेजेंट किया है। जो इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल्स होते थे उसमें मैं जाती थी, हमारे डायरेक्टर थे तब दादी पदम जी, तो उनके संरक्षण में, उनकी देख रेख में मैंने मॉडर्न और ट्रेडिशनल पपेट थिएटर किया। उसके बाद चूंकि पपेट थिएटर में आप फाइनेंशियली सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि जिंदा रहने के लिए आपको कमाना भी बहुत ज़रूरी है, तो फिर मैंने एक सीरियल डाली दूरदर्शन में, और उस समय एक ही चैनल हुआ करता था दूरदर्शन, और दूरदर्शन में वो सीरियल हो गई किले का रहस्य
0: जी।
1: और चूंकि नौसिखिया थे इस फील्ड में आता नहीं था ज़्यादा, तो काफ़ी पैसे का भी लॉस हुआ, सब हुआ, लेकिन ठोकर खा खा के सीख लिया, तब से ये यात्रा है शुरू। जब दूसरे प्राइवेट चैनल्स आ गए तो उन पे भी लिखना और डायरेक्शन कर ही रहे थे, प्रोडक्शन भी कर रहे थे, तो वो सिलसिला चलता रहा।
0: और सरकारी मंत्रालयों से जुड़ने के लिए फिर
1: जी कई मैंने बनाई हैं डॉक्यूमेंट्रीज, जैसे अभी आपसे जिक्र कर रही थी महानदी के किनारे, तो छत्तीसगढ़ की लाइफ लाइन है महानदी, नदी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो महानदी जब मैं बना रही थी तो अच्छा बजट था उसका, तब तक लता जी ने संन्यास ले लिया था
0: जी
1: गाने से
0: जी,
1: तो तब मुझे अवसर मिला कि मैं उन तक जा पाऊँ। उससे पहले फिल्म नहीं बनाई थी मैंने कोई, तो मैं नहीं जा पाई थी, तो मैंने हृदयनाथ मंगेशकर जी, जो उनके छोटे भाई हैं, बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उनसे मैंने संपर्क किया, और नीरज जी, गोपाल दास नीरज, उनसे गीत लिखवाया महानदी पे, और हृदयनाथ जी से मैंने कहा कि मुझे लता जी से गवाना है गाना, और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि उन्होंने हाँ भी किया और मेरी डॉक्यूमेंट्री के लिए उन्होंने गाए। तो डॉक्यूमेंट्रीज तो मैंने बहुत बनाई हैं, और एड,
0: इन सब के लिए आपने बहुत ज़्यादा काम किया है मुझे लगता है, जिस पर अगर हम चर्चा करने चले तो शायद हमें कई अंकों में ही कार्यक्रम समेटना पड़ेगा। लेकिन आपको क्या लगता है सबसे अच्छी डॉक्यूमेंट्री आपकी नज़र में कौन सी ऐसी बन पाई जिसे आप याद करती हैं?
1: महानदी।
0: महानदी,
1: क्योंकि आप एक नदी की कहानी कह रहे हैं, उसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाए, और महानदी के किनारे जितनी सिविलाइजेशन हुई, बुद्ध आए उस दौरान वहाँ पर, और भगवान श्री राम, श्रृंगी ऋषि, और ये सब चीज़ों पे करते हुए आप एक्चुअली उस दौर में पहुँच जाते हैं। शूट जब कर रहे होते कि आप जिस धरती पे खड़े हैं वहाँ पे ये महान आत्माएं आके और चली गई हैं, तो आप अपने आप को ना कण समझते हैं कि मिट्टी का कण भी ज़्यादा बड़ा है आपसे, और आप भाग्यशाली समझते हैं।
2: बहुत सुंदर। तो

0: सीमा जी, जब आप ये लिखती हैं, जब कोई किरदार गढ़ती हैं, किसी विषय को उठाती हैं, लेखन करती हैं, तो आपकी कहानियों में आपकी किरदारों को लिखते समय पटकथा में किन बातों का आप ख्याल रखती हैं? जैसे अभी आपने महानदी का जिक्र किया, तो उस समय की पूरे इतिहास को समेटना कोई आसान काम नहीं होता है। किस तरह से पूरी चीज़ों को समेट कर इतने खूबसूरत तरीके से आप पेश करती हैं?
1: जी देखिए, क्या है, हर विषय का कालखंड और वो अलग होता है। तो ऐतिहासिक जो विषय होते, जैसे अभी अवंतिका बनाई, तो वो पूरा इतिहास को लेके बनाया। लेकिन वही जब आप फिल्म बना रहे होते मिस्टर कबाड़ी, तो वो आज की है। इसमें किरदारों को जो उठाने का आपने प्रश्न किया है, ये बहुत अच्छा और सार्थक प्रश्न है। हम लोग बहुत भाग्यशाली रहे हैं कि हम थिएटर कंपनियों में, छोटे छोटे गांवों में, हमारी थिएटर कंपनी दो दो मूविंग थिएटर कंपनी थी, दो दो महीने एक एक गांव में रहते थे। तो हम एक एक गांव में और शहरों में, कस्बों में हम लोग बहुत रहे हैं। अगर मैं आपको गिनाना चाहूं तो जितने साल मेरी उम्र है उसके कम से कम

0: एक ठेले वाला है ना, कोई एक अचार बेचने वाला, कोई एक है ना, वो किरदार आते चले जाते हैं, वो जीवंत हो जाते हैं लेखनी के जरिए और आपके सेलुलॉइड के जरिए।
1: तो आपकी रचनाओं में जो आपकी किरदार है वो बहुत जीवंत हैं। आप किसी भी सीरियल को उठाकर देख लीजिए, डॉक्यूमेंट्रीज फिल्म को देख लीजिए, तो ये सब क्या आपके स्वयं के जीवन से जुड़े हुए कोई पहलू हैं, या जैसा कि अभी आपने कहा कि इतनी सारी जगह में रही हूँ, आसपास की घटनाओं से, लोगों से प्रेरित ज़्यादा रहे?
0: बहुत ज़्यादा आपके कलाकार जो भी पात्र हैं वो आपके आसपास ही होते हैं, उनको फिर आप एक कैरेक्टर दे देते हैं, उस कहानी में ढाल लेते हैं। जैसे उदाहरण दूं मैं आपको, शोले फिल्म सबको समझ में आएगी कि शोले में आप जगदीप जी को देखते हैं कि वो टाल पे बैठे हैं। अब जब आप टाल पे बैठने वाले इंसान का कैरेक्टर आप गढ़ रहे हैं तो आपको भाषा भी उसकी वैसी ही लेनी
1: लेनी
0: पड़ेगी,
1: पड़ेगी,
0: ना
1: बिल्कुल।
0: कि वो जमींदार साहब की भाषा अलग होगी, उसकी भाषा अलग होगी, उसका नाम अलग होगा, है ना। गायत्री देवी आप नाम अगर है तो वो थोड़ी सी रॉयल फैमिली से ही होंगी,
1: जी
0: लाजवंती होंगी तो वो कुछ और होंगी, लीलाबाई होंगी तो वो, है ना।
1: होंगी
0: हाँ
1: बिल्कुल सही कहा। तो यानी कि हर किरदार को जब हम जीते हैं तो उसी के अनुरूप उसके बैकग्राउंड को भी महसूस करते
0: जी
1: हैं कि वो किस बैकग्राउंड से है।
0: जी
1: आपके जीवन में कौन सा ऐसा किरदार है जिसने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया अब तक?
0: मेरी फिल्म हार्ट द वीकली बाजार एक प्रथा पे है, मध्य प्रदेश मालवा और राजस्थान में एक प्रथा है, अभी भी थोड़ा बहुत चलन है, तो काफ़ी कम हो गई है, कि पति अपनी पत्नी को बेच सकता है, नाता बैठना बोलते हैं। तो वो किरदार कैसे गढ़ा, जब मैं पुरी साहब से बिछड़ गई थी बीच में, तो मैं झालावाड़ गई, झालावाड़ राजस्थान में, जहाँ माता जी पढ़ाती थी, उर्दू टीचर थी, वहाँ पर कहीं और जब ठिकाना नहीं होता है ना भावनाओं का, तो माँ ही
1: याद
0: याद
1: आती
0: आती
1: है
0: है, माँ की गोद ही ऐसी जगह है जहाँ आप भूल जाते हैं, क्योंकि
1: जी
0: आप 9 महीने उसके पेट में रहे हैं, उसी से सांस ली है, उसी से खाया है, उसी से पिया है, तो आप निश्चिंत थे, वो 9 महीने आप तो निश्चिंत थे,
1: बिल्कुल
0: ना चिंता थी आपको सांस कैसे लूं और खाना कैसे खाऊं। तो उस समय जब मैं जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रही थी, भावनात्मक रूप से, सोशली, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, तो मैं माँ के पास चली गई। जब मैं वहाँ गई तो हमारे यहाँ एक बाई काम करती थी, मैं उसका नाम नहीं लूंगी, शारदा नाम मैंने रखा है उसका। तो शारदा एक दिन मुझसे बोली, वो 300 रुपया महीना उसकी उस समय तनख्वाह थी झाड़ू पोछे की, तो मुझसे बोली कि भाई साहब मुझे 5,000 रुपये उधार दे सकती हैं क्या। तो मैंने कहा तुम्हारी 300 रुपये तनख्वाह में तुम घर चलाती हो, दो और घर होंगे ज़्यादा, 600-700 रुपये में घर चलाती थी वो, 5,000 रुपये, पहली बात तो ऐसा क्या संकट आ गया, दूसरा कैसे चुकाओगी 5,000, उस समय ऐसे है कि कोई भाई मुझसे 5 लाख रुपये आज मांग ले। तो कहने लगी नहीं, मुझे ना नाते की झगड़े की रकम भरनी है वरना मुझे बेच दिया जाएगा। मैं तो इस मामले में बिल्कुल ही वो थी, मैंने कहा बेच दिया जाएगा मतलब, मैं समझी नहीं। तो उसने मुझे बताया कि पंचायत से मेरे आदमी ने खा, पंचायत टाइप होती, मैं अब उसके साथ नहीं रहना चाहती, वो बेच रहा है मुझे, दूसरे के नाते बिठा रहा है, तो मैं नहीं जाना चाहती हूँ, तो मुझे 5,000 रुपये देने। मैंने वो तो 5,000 दे दिए, उसको तो भगवान ने बचाया, मैं तो एक बहाना थी,
1: माध्यम बनी।
0: माध्यम
1: हाँ
0: बनी।
1: जी
0: लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि हम इतने सक्षम नहीं है कि हजारों लाखों शारदाओं को बचा सके। तो फिर वो कैरेक्टर मेरी स्क्रिप्ट बन गया
1: जी
0: और इसलिए मैंने हार्ट फिल्म लिखी।
1: जी एक ज्वलंत विषय है ये, जिस
0: जी
1: पर आपने अपनी फिल्म में विषय उठाया उस पर भी हम बात करेंगे। पहले गीत सुन लेते हैं आपकी पसंद का।
0: शंकर जयकिशन की फिल्म है प्रोफेसर, आवाज देकर।
1: हमें तुम बुलाओ, क्या बात है, बहुत सुंदर गाना है ये, आइए सुनते हैं इस गीत
0: जी
1: को।

0: सीमा जी, बात चल रही है आपकी जिंदगी पर, आपके लेखन पर, आपके निर्देशन पर। हम आते हैं लेखन के साथ साथ आपके निर्देशन पर भी। लेखक जब लिखता है तो बहुत सारे किरदार उसके आसपास होते हैं। जब एक लेखक से आप निर्देशक की दुनिया में कदम रखते हैं तो फिर वो किरदार आपके सामने होते हैं जिन्हें आपको जीवंत करना होता है। तो निर्देशक बनने की जो यात्रा थी वो कैसे शुरू हुई और ये यात्रा कैसी रही?
1: देखिए, जब राइटर लिखता है तो उसकी लेखनी ना बहुत, जिसे बोलना चाहिए, हंसी में बता रही हूँ, छलांगे मारती है। ये भी लिख दो, वो भी लिख दे, ये लिख दे। लेकिन जैसे ही आप निर्देशन में लाते हैं उस स्क्रिप्ट को, तो आपकी लिमिटेशन हो जाती है। आपको किरदार सामने खड़े होते हैं, उनको कितनी दूरी पे जाना है, कैमरा कैसे करना है, वो सिमट जाता है ना। आपका जो कैनवास है वो सिमट के फिल्म का पर्दे जितना हो जाता है। राइटर का तो कैनवास आकाश है
0: जी।
1: लेकिन निर्देशन में एक चीज है कि सृजन का जो राइटर और निर्देशक का जो एक मजा है लिखने का और उसको बनाने का, क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अभी तो शब्द है कागज पे, अब इसको कलाकारों के साथ, पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं, निर्देशन में जाना चाहते हैं। और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीज़ों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह। तो ये यात्रा दुरू होती है, मुश्किल होती है, क्योंकि डायरेक्टर को बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। उसको म्यूज़िक का भी ज्ञान होना चाहिए, उसको भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए, उसको कैमरे एंगल का भी ज्ञान होना चाहिए, उसको लेंसेज का भी ज्ञान होना चाहिए, उसको एक्टिंग का भी ज्ञान होना चाहिए कि वो परफॉर्मेंस कैसे ले।
0: बिल्कुल,
1: तो मुश्किल काम होता है लेकिन मजा आता है।
0: जैसे आपने कहा कि उसे हर एंगल का ज्ञान होना चाहिए, इसके पीछे क्या पहले आपने कुछ कोर्स किए या आप किसी के अंडर में रही? इतना एक वाइड जिसे एंगल देखने के लिए क्या एक

0: निर्देशक की तैयारी होती है।
1: देखिए क्या हुआ कि पपेट थिएटर से निकलने के बाद सबसे बड़ा मसला था सर्वाइवल का, कि आप रोजी रोटी, दिल्ली में रहना है और मकान का किराया भी देना है, खाना भी खाना है, रहना भी है, और इतने सक्षम नहीं थे कि माता पिता भेज सकें, और आप 3 साल का 4 साल का FTII में जाके कोर्स कर सकें। तो जो भी सीखा जिंदगी से सीखा, ना तो किसी के अंडर में मैं असिस्टेंट रही, ठोकरे खा खा के सीखा, लेकिन सीखा खुद से ही सीखा, और अभी भी सीख ही रहे हैं।
0: हर पलम सीखते ही हैं।
1: जी
0: तो
1: जी
0: जीवन के संघर्ष को कैसे देखती हैं आप?
1: बहुत संघर्ष रहा है जीना, जो है ना वो अपने आप में ही एक संघर्ष है। तब से शुरू हो जाता है जब हम कंसीव होते हैं, जब हमारा है ना, तब से ही संघर्ष शुरू हो जाता है। और उसके बाद जैसे ही दुनिया में आते हैं तो आपका संघर्ष है, रोटी कमाने का संघर्ष है, अपने आप को स्थापित करने का, और अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे बिना समझौता किए, आपने एक प्रिंसिपल बना रखे हैं, उनसे समझौता किए बिना आपको अगर सक्सेसफुल होना है तो थोड़ा सा मुश्किल रास्ते हो जाते हैं। लेकिन खुशी इस बात की है कि उन रास्तों से होके हम गुजर गए।
0: मैं सही
1: समय
0: कहा?
1: लगता है, थोड़ा लंबा होता है।
0: तो आप जिस दुनिया में हैं, चाहे थिएटर की दुनिया से वो शुरुआत हुई और ग्लैमर वर्ल्ड तक आप पहुंची, आज भी आप वहां स्टैब्लिश हैं, आप बराबर काम कर रही हैं, तो थिएटर की दुनिया से लेकर ग्लैमर की दुनिया में जितनी भी महिलाएं हैं, या आप खुद एक महिला के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर काम कर रही हैं, क्या संघर्ष होते हैं वहां महिला को अपने आप को स्थापित करने के और बने रहने के?
1: महिला होना ही अपने आप में एक संघर्ष है। हम बहुत सारी गुलामियों को तोड़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारी गुलामियों को। एक ज़माने में, प्राचीन काल में, तो स्त्री बहुत स्वतंत्र थी।
0: जी
1: फिर धीरे धीरे धीरे धीरे जैसे ही आते गए आताताई आते गए तो स्त्रियों को सुरक्षा के लिए उसको पीछे कर दिया गया, और वो फिर हमारी मानसिकता बन गई। आज भी मैं देखती हूँ मेरा जो संघर्ष रहा है वो, शायद मैं बहुत फॉर्चुनेट, सौभाग्यशाली रही हूँ कि मुझे किसी ने उस तरह से एक्सप्लॉइट करने की कोशिश नहीं की, या फिर मेरा प्रोफेशन ऐसा था जिसमें कोई चांस नहीं था कि एक्सप्लॉइट, या मेरा अपना व्यक्तित्व ऐसा रहा होगा कि थोड़ा डरते भी थे लोग, क्योंकि मैं मुंह फट थी, थोड़ा सा इस मामले में बोल देती थी कि
0: आउटस्पोकन
1: आउटस्पोकन
0: जी
1: थी कि भाई ऐसा है कि अगर ऐसी बात है तो आप रखिए अपने पास, मुझे नहीं चाहिए काम। लेकिन और लोग इतनी सौभाग्यशाली नहीं होते हैं, मजबूर कर दिया जाता है उनको, या तो वो उस फील्ड को छोड़ देती हैं या फिर कहीं सरेंडर कर देती हैं। तो ये तो स्त्री के साथ चलता ही रहा है। और दूसरा, एक और मानसिकता है समाज में कि अगर कोई स्त्री सक्सेसफुल हो गई है तो ज़रूर किसी ना किसी तरह के समझौते करके ही ऊपर आई है।
0: जी
1: ये एक अजीब सी मानसिकता है। उसमें मुझे एक सवाल हमेशा लोगों से ये खड़ा होता है कि भाई तुम सिर्फ समझौते देखते हो, चाहे लता जी हो, आशा जी हो, हेमा मालिनी हो, मतलब किसी मधुबाला हो, मीना कुमारी हो, या आप लेखिकाएं हो,
0: जी
1: उन सबके ऊपर ये लांछन लगते आए हैं, आप उनका टैलेंट नहीं देख रहे,
0: उनकी मेहनत।
1: उनकी मेहनत और उनकी प्रतिभा। आप कोई दूसरी लता मंगेशकर बता दीजिए ना, तो क्या वो कॉम्प्रोमाइज से हो सकता है क्या? नहीं। जब तक आपके अंदर प्रतिभा नहीं होगी, जब तक आपके अंदर एक डेडिकेशन नहीं होगा अपने प्रोफेशन को लेके, तब तक आप सक्सेसफुल हो नहीं सकते। वरना तो ऐरा गैरा नत्थू खैरा कोई भी बन जाएगा, स्टार
0: जी
1: नहीं बनते हैं ना।
0: तो
1: जी
0: कितनी महिलाएं हैं जो आज लेखिकाएं हैं या निर्देशिकाएं हैं या किसी भी प्रोफेशन में हैं, किसी भी कंपनी में हैं, किसी भी महकमे में वो काम कर रही हैं, वो अपनी मेहनत और मशक्कत के बाद जब किसी पद या प्रतिष्ठा पर पहुंचती हैं और उनको ये इल्ज़ाम लगा दिए जाते हैं कि भाई होगा कहीं कुछ ना कुछ, वरना इतनी
1: तब
0: ऊंचाई पर पहुंचना एक महिला के लिए इतना आसान तो नहीं है, तो बड़ा दुख होता है आज भी जब ये बातें कही जाती हैं तो।
1: बहुत दुख होता है, और दुख नहीं, शर्म आती है उन लोगों की मानसिकता पे। और मुझे एक बात की और शर्मिंदगी है कि इसमें पुरुष तो हैं ही शामिल, स्त्रियां भी शामिल हैं ये लांछन लगाने में। तो वो बहुत गलत है। हमको हमारी मानसिकता, समाज की मानसिकता को बदलने की बहुत ज़रूरत है।

ये था सुप्रसिद्ध राइटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर सीमा कपूर से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग। तकनीकी सहायक किरण बंग, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। इस बातचीत का दूसरा भाग आप सुनेंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर
5: सुनिए।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहाँ कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट।
2: FM बैंड 103.4 MHz पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। शाम के 5 बजने को हैं। अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की अपनी 2 दिन की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। 4 दशकों से अधिक समय में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की ये पहली यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत की। दोनों नेताओं ने रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन और दुग्ध तथा पशुपालन सहित विभिन्न क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ऑकलैंड में दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के प्रभारी सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि आगामी 4 वर्षों में साझा रूप से काम करने के लिए भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी 2030 तक की रूपरेखा को भी मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है।
4: दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय ये दर्शाता है कि हम अपने रिश्तों के सभी क्षेत्रों में संबंध मजबूत कर रहे हैं, विशेष रूप से रक्षा तथा सुरक्षा के क्षेत्र में और राजनीतिक स्तर पर।
3: प्रधानमंत्री ने ऑकलैंड के स्पार्क एरिना में प्रवासी भारतीय समुदाय के 10,000 से अधिक सदस्यों के कार्यक्रम में भाग लिया। प्रधानमंत्री लक्सन ने सभा को संबोधित करते हुए भारत को एक विश्वसनीय मित्र बताया। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन को उनके गर्मजोशी भरे आतिथ्य के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि इस यात्रा ने भारत न्यूजीलैंड संबंधों में एक नया अध्याय खोल दिया है।
5: न्यूजीलैंड वो जगह है जहां निखिल रविशंकर एयर न्यूजीलैंड के CEO बन सकते हैं, जहां आनंद सत्यानंद गवर्नर जनरल बन सकते हैं, जहां क्रिकेट टीम में

0: रचिन रविंद्र, कहीं बॉम्बे हिल्स है, कहीं कोरोमंडल है, ऐसे कितने ही नाम है। यहाँ रहते रहते आप भी पूरे के पूरे कीवी हो गए हैं।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरि को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। परियोजना 17A का ये युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। श्री सिंह ने कहा कि ये युद्धपोत अत्याधुनिक स्वदेशी हथियारों से सुसज्जित है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज महाराष्ट्र के नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने बताया कि बैठक में वैकल्पिक जैव ईंधन तथा प्रदूषण मुक्त प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सड़क, रेल, विमानन और जल परिवहन को कार्बन न्यूट्रल बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का शुभारंभ किया। श्री शाह ने कहा कि पुस्तकें व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने कहा कि महान क्रांतिकारी और विचारक जयप्रकाश नारायण ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्षता करेंगी। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि लोकतंत्र में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन संविधान और जन कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता सर्वोपरि रहनी चाहिए। उन्होंने बिहार में गयाजी में राज्य के लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में 18वीं विधानसभा के सदस्यों के लिए आयोजित 2 दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए ये बात कही। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट आज वियतनाम के फूकोक द्वीप के पास पलट गई। स्थानीय खबरों के अनुसार 15 लोगों के मारे जाने की आशंका है, जबकि 21 लोगों को बचा लिया गया है। 32 भारतीय पर्यटकों और 4 चालक दल के सदस्यों को ले जा रही ये नाव होन में रुत नगोई द्वीप से लगभग 400 मीटर दूर पलट गई, जिसके बाद बचाव अभियान शुरू किया गया। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज शाम 7 बजे से साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। इंग्लैंड ने श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। एक दिवसीय श्रृंखला से पहले भारत की नज़र ये मैच जीतने पर रहेगी। फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। दूसरे मुकाबले में कल सुबह 6:30 बजे मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi has concluded his historic 2-day visit to New Zealand and departed for India. The visit, the first by an Indian Prime Minister to New Zealand in over 4 decades, gave a major boost to bilateral ties. During the visit, Prime Minister Modi held talks with his New Zealand counterpart Christopher Luxon. The two leaders witnessed the exchange of 5 memoranda of understanding in areas including defence, tourism, sports, disaster management and dairy and animal husbandry. Hailing the Free Trade Agreement, FTA, between the two countries, Mr. Modi appreciated New Zealand's efforts in concluding the FTA process in a short period and thanked Prime Minister Luxon and his government for their leadership.
0: हमने भारत न्यूजीलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत हम हर क्षेत्र में स्पष्ट लक्ष्यों और ठोस परिणामों के साथ आगे बढ़ेंगे। इस वर्ष हमने रिकॉर्ड समय में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। इस उपलब्धि से दोनों देशों के उद्योगों, किसानों और युवाओं के लिए नए द्वार खुलेंगे। हमें ट्रेड के साथ साथ ट्रस्ट, टेक्नोलॉजी और टैलेंट का ब्लूप्रिंट हम तैयार कर रहे हैं।
2: Prime Minister Narendra Modi has said the Indian community in New Zealand is a vital pillar of the growing partnership between the two countries. Addressing the Indian diaspora at a community event in Auckland, Mr. Modi said India-New Zealand relations are built on shared memories, enduring friendship, common values and a commitment to a brighter future.
0: 40 साल के बाद कोई भारतीय PM न्यूजीलैंड की धरती पर आया है। ये मेरा सौभाग्य है। मैं न्यूजीलैंड के

जानी मेरा नाम इस फिल्म से लिया गया ये भजन अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में। श्रोताओं आपको बता दें कि आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्मी भजन।

अभी आप सुन रहे थे फिल्मी भाषण। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युवा मंच।

युवा साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आज के युवा मंच कार्यक्रम में। और आप सब जानते हैं आज है शनिवार और शनिवार को हम बात करते हैं अपने जीनियस से। तो आप सभी युवा साथी हमें फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन करने के लिए नंबर रहेगा 01892224391। फ़ोन नंबर हम आपको एक बार फिर से बता दें 01892224391। तो फ़ोन ज़रूर करिए, सिग्नल में रह कर करिए और हम अपने जीनियस से पूछेंगे कुछ क्वेश्चन, कुछ सवाल। बहुत मुश्किल नहीं होंगे, आपके जीवन पर आधारित, जीवन से रिलेटेड होंगे, मतलब जो भी आपके शौक हैं, आप क्या कर

करते हैं सभी, आप अच्छे से जवाब दे सकते हैं, तो फोन जरूर करिए, हमें इंतजार रहेगा। और तब तक सुनते हैं एक गीत। हाँ, बता दूं, आज के इस सफर में मैं हूं आपके साथ नर्मदा शर्मा।

तो युवा साथियों, आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो जीनियस युवा मंच में, और आप इस कार्यक्रम में फोन कर सकते हैं 01892224391 पर और बात कर सकते हैं हमारे साथ। जब तक किसी हमारे श्रोता का, हमारे युवा साथी का फोन आता है, आपको एक सूचना दे देते हैं।

0: 103.4 मेगाहर्ट्ज पर सुन सकते हैं। रविवार दिनांक 12 जुलाई 2026, समय रहेगा सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे तक। और नंबर हमारा रहेगा, यानी प्रश्न पूछने के लिए फ़ोन नंबर रहेगा 01892224391। फ़ोन नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए, 01892224391। और समय रहेगा सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे, कल 12 जुलाई 2026। तो श्रोताओ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युवा मंच, और आज हम बात करेंगे अपने जीनियस से, युवा जीनियस जो हमारे हैं उनसे। तो आप फ़ोन कर सकते हैं, हमारे युवा साथी जो हैं इसी नंबर पर 01892224391 पर, और कर सकते हैं हमसे बात।
1: अरे सागर, बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है?
2: खुश तो होना ही है भाई, क्योंकि हिमाचल की हक की लड़ाई में एक और बड़ी सफलता जो मिली है।
1: अच्छा, ऐसी कौन सी खुशखबरी है, हमें भी बताओ।
2: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रयासों से किशाऊ बांध परियोजना में हिमाचल ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है।
1: वो कैसे?
2: करीब 15,000 करोड़ रुपए की लागत और 422 मेगावाट क्षमता वाली किशाऊ परियोजना में बिजली उत्पादन के लिए होने वाले लगभग 2,000 करोड़ रुपए के हिमाचल के हिस्से के खर्च का बोझ अब प्रदेश पर नहीं पड़ेगा।
1: फिर ये खर्च कौन उठाएगा?
2: परियोजना के पानी से लाभान्वित होने वाले दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा राज्य ये खर्च वहन करेंगे।
1: वाह, इससे हिमाचल को क्या फायदा होगा?
2: फायदा ही फायदा। परियोजना से बिजली उत्पादन शुरू होने पर हिमाचल प्रदेश को हर वर्ष लगभग 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय सुनिश्चित होगी।
1: यानी प्रदेश के अधिकार भी सुरक्षित और भविष्य भी मजबूत।
2: बिल्कुल, ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रदेश हित के लिए लड़ी गई मजबूत पैरवी का परिणाम है।
3: हिमाचल के अधिकारों को दिलाया नया सम्मान, सुक्खू सरकार बना रही समृद्ध प्रदेश की पहचान। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: हेलो जीनियस, हेलो।

हेलो हेलो, मुझे लगता है कोई मुश्किल है, हम तक आपकी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। आप थोड़ा सिग्नल में रह के बात करेंगे, हमें आवाज़ नहीं आ रही आपकी। चलिए श्रोताओं, जब तक हमारे अगले श्रोता जो हैं हमसे जुड़ते हैं, तब तक हम आपको सुनवा रहे हैं।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्कार। हेलो, अपना नाम बताएंगे?
1: हाँ जी, मेरा नाम रंजीत है। रंजीत
0: निकिता।
1: है। हाँ
0: रंजीत
1: जी जी
0: जी। रंजीत कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: मैं जलंधर से बोल रही हूँ, और
0: जालंधर से?
1: हाँ जी जलंधर से बात कर रही हूँ।
0: अच्छा, चलिए स्वागत है। बहुत दूर से बोल रही हैं आप।
1: हाँ जी, तो मेरे पापा को बहुत ज़्यादा जैसे वो सुनते हैं,
0: अच्छा
1: तो वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं।
0: अच्छा थैंक
1: तो
0: यू।
1: हाँ जी हाँ जी, वो इस टाइम आपका जो प्रोग्राम जो भी चलता है तो वो हमारे घर पे लगा रहता है, यानी
0: रेडियो लगा
1: कि मेरे
0: रहता है।
1: डैडी जी के घर पे। तो
0: अच्छा
1: बहुत अच्छा लगता है जब आप मतलब बातें करते हैं, चाहे कोई भी आप बातचीत का विषय रखते हैं
0: हाँ
1: या
0: हाँ
1: कुछ भी आप पूछते हैं, या अपना
0: जी,
1: कोई भी किसी का सुझाव लेते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है।
0: चलिए शुक्रिया। आपको
1: जी,
0: पसंद आता है, पर अपने बारे में बताइए ना, आप क्या करते हैं?
1: मैं हाउस वाइफ हूँ, तो मेरे
0: अच्छा
1: हस्बैंड इंग्लैंड में है।
0: अच्छा
1: जी, तो दो बच्चे हैं हमारे, तो वो
0: जी।
1: स्कूल में पढ़ते हैं।
0: अच्छा। चलिए आज हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, एक
1: जी
0: बात पूछते हैं कि पहले तो ये कि अगर आपको एक दिन के लिए अपने पसंदीदा सेलिब्रिटीज की ज़िंदगी जीने का मौका मिले तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? पहले तो ये बताइए कि है कौन आपका सबसे पसंदीदा सेलिब्रिटी?
1: मेरी जिंदगी का सबसे सेलिब्रिटी तो मेरी फैमिली है। फैमिली
0: आपकी फैमिली है? अच्छा,
1: है
0: तो उनके साथ तो
1: सबसे
0: आप
1: पहले।
0: रहते हैं, लेकिन अगर उनमें से किसी की, मतलब फैमिली में तो सारे लोग आ गए
1: हाँ
0: ना,
1: जी
0: पूरा
1: हाँ जी।
0: परिवार आ गया, लेकिन उनमें भी कोई एक फेवरेट होता है, वो कौन है सबसे ज़्यादा अच्छा, या फिर आपको लगता हो कि उनकी
1: वो
0: ज़िंदगी
1: मेरे
0: बहुत
1: बच्चे
0: अच्छी
1: हैं।
0: आपके?
1: मैं एक हम देखिए, मैं सभी को प्यार करती हूँ, फर्स्ट
0: हाँ
1: इम्पोर्टेंट
0: हाँ
1: है ना, अपने रब
0: जी
1: रो से जिन्हें हैं,
0: जी
1: सबसे बड़ा तो भगवान है जो कभी
0: बिल्कुल
1: साथ नहीं छोड़ता है
0: जी,
1: ना।
0: बिल्कुल
1: सेकंड नंबर पे माँ बाप आते हैं, तीसरे नंबर पे हस्बैंड, और चौथे नंबर पे मैंने बच्चों को रखा हुआ है।
0: अच्छा, बच्चों को
1: इसलिए
0: सबसे लास्ट क्यों?
1: रखा क्योंकि बच्चे, देखिए माँ बाप हमेशा हमारे साथ रहते हैं ना।
0: हाँ जी हाँ
1: अब
0: जी।
1: हमारी शादी होगी, हम शादी करके चलेंगे आगे, है ना, तो उसके बाद फिर हस्बैंड का नाम आता है हमारे साथ, उनका नाम जुड़ जाता है ना। जब भी कहीं जाते पूछते कि तुम किसकी वाइफ हो, पहले पूछते थे तुम किसकी बेटी हो,
0: बिल्कुल
1: ठीक है,
0: हाँ
1: तो अब
0: हाँ
1: पूछते हैं किसकी वाइफ हो, है ना, तो
0: हाँ
1: नाम उनका लगा है ना,
0: बिल्कुल हाँ
1: तो
0: हाँ
1: वो हर जरूरत मेरी पूरी करते हैं जो भी मैं मांगती हूँ, है
0: अच्छा
1: ना। तो उसके बाद आते हैं बच्चे। बच्चे इसलिए क्योंकि जब बड़े हो जाएंगे तो उनकी शादी हो जाएगी, तो उन्होंने अपना अपना घर संभाल लेना। बेटा विदेश में है मेरा, 9 साल का है, पापा के साथ रहता
0: अच्छा तो वहाँ
1: है।
0: पढ़ाई करता
1: हाँ
0: है बेटा? अरे आपने बेटे को भी
1: जी,
0: भेज दिया, इतने छोटे से बेटे को?
1: साथ में रहता है,
0: अच्छा
1: और दूरदर्शन केंद्र जलंधर, आपने सुना होगा, वहां पर मेरे मदर इन लॉ जॉब करते थे टीवी
0: अच्छा
1: सेंटर
0: अरे
1: में।
0: आप तो उसी पर हमारे परिवार से हैं फिर, रेडियो
1: जी
0: परिवार से है
1: जी
0: ना
1: सुखविंदर कौर उनका नाम था, तो
0: जी?
1: रमन कुमार जो साथ वाली खबरें देते थे ना,
0: हाँ जी
1: तो नीचे फिर वो भी वहां पे ही लगे थे। तो जब उनकी रिटायरमेंट हुई तो मेरी सासू मामा की भी साथ में हुई थी।
0: अच्छा,
1: जी,
0: ठीक
1: तो मेरी बहुत इच्छा थी, तो मेरे जो नानका परिवार है वो हिमाचल प्रदेश से है,
0: अच्छा
1: तो
0: कहाँ
1: बड़ा
0: से?
1: गहन हिमाचल प्रदेश, फतेहपुर सिकरी, फतेहपुर से पड़ता है, परोबड़ पड़ता है
0: अच्छा
1: जैसे। हाँ जी हाँ जी, जो जसूर दमेटा है ना,
0: हाँ हाँ हाँ समझ
1: इसी
0: गई,
1: लाइन
0: उधर
1: में पड़ता है,
0: जुजवाली की साइड में जो फतेहपुर है वहां से।
1: और कुल्लू मनाली से हमारा बड़ा अच्छा रिश्ता। जब भी मौका मिलता है तो मेरे हस्बैंड इंग्लैंड से आते हैं तो घूमने जाते हैं हम,
0: अच्छा तो
1: जैसे
0: आप
1: अभी अभी
0: भी
1: शिमला
0: गई,
1: होके।
0: आप इंग्लैंड होके आई क्या?
1: नहीं, मैं नहीं गई हूँ अभी, अभी
0: अच्छा
1: मेरे मदर जा रहे हैं, मेरी जो इनकी मम्मा,
0: हाँ
1: मेरी
0: हाँ
1: सिस्टर 14 साल से इंग्लैंड में ही रह रहे हैं, तो
0: अच्छा,
1: मम्मा उनके पास जा रहे हैं, तो
0: अच्छा
1: मैं डैडी के पास आ जाती हूँ ना अभी,
0: जी
1: फिर मैं जाऊंगी तो फिर
0: हाँ,
1: उसके बाद डैडी जाएंगे।
0: बारी बारी सभी जाएंगे। चलिए बहुत
1: पर
0: अच्छा लगा
1: पंजाब
0: आपसे
1: सबसे
0: बात
1: अच्छा
0: करके।
1: है, मैं यही बात कहती हूँ, यहाँ की हरियाली, यहाँ का जो वेदर है, यहाँ पे देखो सभी एक दूसरे के साथ है ना, मुसीबत के टाइम काम आते हैं ना,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: तो एक हमारा सबसे बड़ा रिश्ता ये है कि हिमाचल का, जो मेरे
0: हाँ।
1: दिल से, मैंने बचपन वहां पे गुजारा है।
0: अच्छा इसलिए आपको याद आती होगी। और अच्छा हाँ बिल्कुल, ये तो है ना अपना, कितने प्यार से रहते हैं सब, एक दूसरे की मदद के लिए आगे आ
1: बड़ी
0: जाते
1: बड़ी
0: हैं ना।
1: लॉन्ग सी स्टोरी है जो कभी हम शेयर करेंगे।

0: क्योंकि
1: जी
0: मेरे दो बहनें थे तो मम्मा बोल रहे थे कि हम केयर नहीं कर पाती थी दोनों की, तो
1: अच्छा
0: मेरे मासी मेरे मम्मा हिमाचल गए हैं,
1: आप
0: बॉर्न उनका
1: ट्विंस
0: वहां पे।
1: ट्विंस थी?
0: नहीं, एक
1: अच्छा
0: साल का फर्क था मैम।
1: अच्छा अच्छा
0: तो
1: हाँ
0: फिर मेरे
1: फिर
0: मौसी आए तो कहते कोई बात नहीं, एक हम ले जाते हैं, जब बड़ी होगी तो फिर हम।
1: दे
0: तो
1: देंगे
0: बड़ा गहरा
1: वापस।
0: रिश्ता है ना,
1: अच्छा
0: तो डैडी जी का तो चलो जुड़ा ही जुड़ा। उसके बाद मैं वहां पे पली, तो मेरे अंदर से वो जो भाषा है, जो एक माँ बोली जिन्हें बोलते हैं कि पंजाबी होती है ना, मेरी माँ बोली हिमाचली रही है।
1: अच्छा
0: तो मुझे बहुत अच्छा लगता है हिमाचल
1: चलिए,
0: घूमना।
1: आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा हमें भी,
0: जी
1: और है ना कि आप ऐसे ही अपने बुजुर्गों की सेवा करती रहें और परिवार के साथ प्रेम से रहें और खुश रहें हमेशा। अच्छा, आपके जीवन पर अगर कोई फिल्म बने तो आप क्या चाहते हैं कि उसका नाम क्या होना चाहिए?
0: मैं तो इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो गई हूँ कि मेरे
1: हाँ
0: मुझे ना फादर जी बोल रहे थे, एक महीना पहले मैं ना छुट्टियां काट के गई, तो फादर जी बोलते बेटा कॉल लगाओ, तो मैं सुनती रहती थी आपका प्रोग्राम,
1: अच्छा
0: बड़ी अच्छी। मैं क्योंकि उनको भी पता कि मेरा टीवी सेंटर के साथ बड़ा अच्छा गहरा रिश्ता रहा, सभी वहां पे जानते भी है ना, तो जब आपका प्रोग्राम लगता है तो एक मन में आ जाता है ना, एक सपना सा बंदा सोचता ही है,
1: हाँ हाँ
0: अरे
1: बिल्कुल,
0: हमारा
1: जिसके
0: भी
1: साथ
0: लगता फिल्म
1: कनेक्शन
0: बनाना।
1: रहा हो तो होता ही है ना।
0: मेरी अगर लाइफ पे कोई फिल्म बने तो
1: हाँ
0: मेरा ये मानना है कि जैसे बोलते ना कि दो परिवारों को मिलाने वाला कोई है ना, तो मैं कहूंगी कि दो शहरों को, क्या बोलते हैं कि सिटी को नहीं, पंजाब और हिमाचल की जो प्यार है
1: दो
0: वो
1: राज्यों
0: एक,
1: का।
0: हाँ वो जो कई देखिए मैम आजकल बड़ा हो जाता है ना कई बार कि हिमाचल के लोग ऐसे होते हैं, हिमाचली बोलते पंजाबी ऐसे होते हैं ना।
1: देखिए अपना अपना एक्सपीरियंस होता है ना,
0: होता
1: मतलब
0: है, लेकिन
1: हम
0: मेरी
1: पूरा पूरे मतलब पूरा एक किसी इंसान को पूरी तरह से हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि हर किसी का अपना। मेरी
0: अपना
1: आपसे
0: अपना
1: बात
0: है,
1: हो रही है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, तो हम आपके
0: लेकिन
1: लिए
0: आई लव
1: अच्छा
0: हिमाचल
1: बोलेंगे, है
0: भी और
1: ना।
0: पंजाब भी,
1: हाँ
0: मतलब
1: तो
0: मुझे बहुत बड़ा गहरा।
1: अलग अलग है, वो कहते हैं ना पांच उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, एक
0: नहीं
1: जैसी नहीं है ना।
0: होती
1: तो हर किसी का
0: जी,
1: अपना एक्सपीरियंस होता है, आपके सामने दूसरा कैसे पेश आया है, तो उसके साथ तो उसकी अपनी एक वो होगी कि वो आपकी इमेज कैसे बनाता है आपके अपने माइंड में, है ना। तो ऐसा रहता है, लेकिन आपकी बातों से लग रहा है कि आप बहुत खुश मिजाज हैं, आप खुश रहने वाली हैं और सबके साथ मतलब दोनों परिवारों को जोड़ के भी रखती हैं और अच्छे से
0: जब मौका
1: प्रेम
0: मिलता
1: से।
0: है तो मैं अपने पापा को लेके हिमाचल जाते हैं, जब
1: जी
0: मेरे हस्बैंड आते हैं उनको भी लेके जाती हूँ, क्योंकि 35 साल की अब मैं हो गई हूँ लेकिन दिल
1: अच्छा
0: से हिमाचल नहीं निकला।
1: जी, ये तो होता है ना, जहाँ पैदा हुए हैं, जहाँ पले बड़े हैं, तो वो तो लाइफ लॉन्ग रहता ही है ना। चलिए, बहुत अच्छा
0: थैंक
1: लगा आपसे बात करके, शुक्रिया बहुत बहुत फ़ोन करने के लिए।
0: यू जी, ओके।

हेलो जीनियस, हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। कौन बोल रहे हैं?

अभी श्रोताओं से, अपने युवा साथियों से अनुरोध है कि थोड़ा सिग्नल में रह के अगर आप कॉल करें तो बात हो पाएगी, क्योंकि फ़ोन कॉल्स तो बहुत आ रही हैं लेकिन आपकी आवाज़ हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है, तो इस बात का ध्यान रखें।

0: हेलो,
1: हेलो
0: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं?
1: नमस्कार जी, मैं पूजा बोल रही हूँ,
0: कहाँ से बोल रही हैं पूजा? हिमाचल?
1: हिमाचल। हाँ जी,
0: हिमाचल में कहाँ से?
1: हिमाचल। मैं बोल रही हूँ मंडी जिला।
0: मंडी से। और आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं?
1: मैं 10th में।
0: 10th में पढ़ती हैं। अच्छा,
1: जी,
0: तो आप क्या बनना चाहती हैं? आपका उद्देश्य क्या है, एम क्या है?
1: मेरी उम्र 14 साल है
0: नहीं,
1: और
0: उम्र
1: मैं
0: नहीं पूछ रही मैं, आप बनना क्या चाहती हैं? पढ़ाई करके कुछ करना चाहती हैं आगे
1: जी
0: क्या? कुछ बनने का होता है ना, कोई सोचता है मैं पुलिस में जाऊं, कोई कहता है मैं आर्मी में, या टीचर बनना है, या डॉक्टर बनना है, क्या बनना चाहती हैं? आपने कुछ सोचा है या अभी नहीं सोचा?
1: पुलिस करना चाहती हूँ
0: पुलिस में जाना चाहती हैं।
1: जी।
0: अच्छा, आप मोबाइल कितना चलाती हैं?
1: मैं तो कभी किसी का ले लेती हूँ, चाहे पापा का हो चाहे मम्मी का, पर देते नहीं है। कभी कभी देते हैं, कभी नहीं देते।
0: अच्छा, कभी देते हैं कभी नहीं देते हैं। 10th में पढ़ती हैं और आपके पास अपना मोबाइल नहीं है ना, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक चीज़ बताओ कि अगर आपका मोबाइल जो है 24 घंटे दिए जाएं, जो भी मोबाइल, मम्मी का हो पापा का हो, है ना, अगर वो बोलने लगे, ठीक है, और 24 घंटे के लिए ऐसा हो कि ये अब बोलेगा, तो वो सबसे पहले आपकी कौन सी राज जो है वो आपका वो खोलेगा? पोल खोलते हैं ना, पोल खोल सुना है?
1: जी,
0: तो अगर आपका मोबाइल बोलने लगे, क्योंकि मोबाइल को तो सब पता होता है ना, हमारी आदत का पता होता है कि हमें क्या पसंद है, ऐसा है, तो अगर आपका जो मोबाइल है वो बोलने लग जाए, तो वो कौन सी बात आपकी बताएगा सबसे पहले?
1: गेम खेलने की।
0: अच्छा, गेम खेलती है,
1: जी
0: ठीक, चलिए, बहुत अच्छा। तो चलिए, गेम मतलब थोड़ा थोड़ा खेलना भी चाहिए, लेकिन पढ़ाई की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, है ना, अच्छे से पढ़ाई भी करना। और अच्छा, गेम खेलने के कोई नुकसान बताओ आप? गेम खेलने के कोई नुकसान है क्या, या फायदा, कुछ भी बताओ, लाभ बता दो, फायदा बता दो, या नुकसान बता दो।
1: नुकसान है वैसे तो, पर
0: नुकसान? क्या नुकसान है? नहीं पता। देखो, सबसे पहले हमारी आंखें खराब होती हैं मोबाइल देखने से, क्योंकि गेम जब खेलने लगते हैं ना, तो समय का पता ही नहीं चलता, कितना टाइम हो गया है ना, कैसे निकलता है टाइम पता ही नहीं चलता, एक बात। दूसरा, आंखें वैसे ही पूरी हेल्थ हमारी, क्योंकि सिटिंग ज़्यादा हो जाती है। दूसरा नुकसान ये, टाइम हमारा वेस्ट होता है, उतना टाइम हम अगर पढ़ाई में लगाएं तो उसका फ़ायदा है ना, हम कितना कुछ सीखेंगे, अगर कोई किताब पढ़ते हैं तो कितना सीखेंगे। और क्योंकि बैठने से, बैठे रहने के बजाय अगर आप 1 घंटा गेम खेल रही हैं, तो वो टाइम जो था, एक तो उसकी, उस टाइम को आप पढ़ाई में लगाएंगी तो भी आपके लिए लाभदायक रहेगा, और दूसरा उस समय को अगर आप किसी काम करने में, या फिर आप सुबह सैर करने में, मतलब जो भी टाइम है उसको किसी फिजिकल एक्सरसाइज के लिए अगर आप लगाती हैं, या घर का काम करती हैं,

0: आपका फायदा होगा ना उससे, और नुकसान कितने सारे होते हैं ना। और सबसे बड़ी छोटे बच्चों की आंखें खराब होना, और फिर पढ़ाई में मन नहीं लगता है, फिर बार बार ये होता है कि हम बस खेलते रहें, गेम खेलते रहें, है ना। चलिए, तो घबराना नहीं, हम ऐसे ही बात कर रहे हैं आपसे, तो रेडियो सुनते रहना और पढ़ाई में मन लगाना, ठीक है, मोबाइल कम चलाना। और बहुत अच्छा लगा आपने फ़ोन किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फ़ोन करने के लिए।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: हेलो जीनियस।
2: हेलो।
1: हाँ जी, कैसे हैं? कौन बोल रहे हैं? अपना नाम बताएंगे? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है हमें जी। नाम बताइए, फिर से बोलना नाम। मुझे नाम ही समझ नहीं आया। आर्यन, आर्यन है नाम आपका। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? कौन सा देरी? और क्लास? फर्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। अच्छा, आपने फोन मिलाया है।
2: मैं फुटबॉल ले लिया है।
1: क्या ले लिया है?
2: फुटबॉल।
1: फुटबॉल ले लिया है, बहुत अच्छी बात है। तो खेलते हैं, कितनी देर खेलते हैं फुटबॉल? अकेले ही? अच्छा, तो अकेले मजा आता है? आपके कोई दोस्त नहीं जो आपके साथ खेले? बताओ बताओ जल्दी। आपके दोस्त हैं? कौन है आपका सबसे अच्छा दोस्त? कौन है आपका? अच्छा, तो वो आपके घर के आसपास रहते हैं या स्कूल में ही मिलते हो आप? हाँ जी, कौन होते हैं? पुलिस वाले। अच्छा, तो आप डरते हैं पुलिस वालों से। चलिए, शुक्रिया आपने फोन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो युवा साथियों, इसके साथ ही हमारा आज का युवा मंच कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युवा मंच, आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

अग्निहोत्री ने कहा कि अगले शैक्षणिक सत्र से महाविद्यालय में एमएससी और लॉ की कक्षाएं शुरू की जाएंगी। उन्होंने महाविद्यालय में विद्यार्थियों के लिए नियमित एक्सपोजर विजिट और वार्षिक समारोह में

0: अभिभावकों की सहभागिता सुनिश्चित करने पर बल दिया। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार खेल अधोसंरचना को सुदृढ़ बनाने व खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। वे आज शिमला जिला के जुब्बल क्षेत्र की कठासू पंचायत के बटाड़ गांव में नवयुवक मंडल द्वारा आयोजित वॉलीबॉल टूर्नामेंट के उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता कर रहे थे। शिक्षा मंत्री ने युवाओं को खेल गतिविधियों में हिस्सा लेकर नशे जैसी सामाजिक बुराई से दूर रहने का आह्वान किया। राज्य बिजली बोर्ड पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की एक बैठक आज नाहन में हुई, जिसमें पेंशन से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की गई। एसोसिएशन के महासचिव कमलेश पुंडीर ने बताया कि बैठक में पेंशनरों ने सरकार और विद्युत बोर्ड प्रबंधन से लंबित महंगाई भत्ते की किश्त जल्द जारी करने की मांग की। उन्होंने लंबित एरियर का 40% जारी किए जाने के फैसले का स्वागत करते हुए सरकार का आभार भी जताया। पेंशनरों ने उम्मीद जताई कि शेष बकाया राशि का भी सरकार जल्द भुगतान करेगी।
1: विशेष तौर पर बोर्ड मैनेजमेंट से हमारा आग्रह रहेगा, जैसे गवर्नमेंट ने 65 वर्ष के जो आयु पूरी कर चुके हैं उनको 40% एरियर रिलीज कर दिया, तो उसके लिए भी हम जो है सरकार का धन्यवाद करते हैं। और जो हमारे 15% डीए है, ड्यू है, वो उसको भी हम आग्रह करेंगे, उसका जो है कुछ न कुछ भाग जो है हमें 2-4-8% जो भी है वो दें।
0: प्रदेश में मॉनसून सक्रिय बना हुआ है और राजधानी शिमला सहित राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में बाद दोपहर से जोरदार वर्षा का क्रम जारी है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान राज्य के ज्यादातर हिस्सों में हल्की से मध्यम जबकि कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई है। विभाग ने आज सिरमौर, शिमला, सोलन, किन्नौर, कुल्लू और मंडी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक शोभित कटियार ने बताया कि सिरमौर, शिमला, कुल्लू, मंडी और सोलन जिलों में अगले 5 से 7 दिन तक मध्यम से भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है। प्रशासन ने भूस्खलन और बाढ़ प्रभावित इलाकों में खतरे को देखते हुए लोगों से नदी नालों के किनारे न जाने की सलाह दी है।
2: 11 जुलाई को प्रदेश के मुख्य रूप से जो हमारा सिरमौर जिला है, शिमला जिला है, उसी के साथ कुल्लू, मंडी और सोलन जैसे जिलों में बारिश की जो एक्टिविटी है वो मध्यम से लेकर के भारी स्तर तक की जो बारिश का दौर है वो 5 to 7 days तक लगातार चलता रहेगा। और वहीं पे के कुछ एक जिले हैं जैसे कांगड़ा या चंबा की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे मध्यम से लेकर के भारी बारिश का दौर अगले 2 से 3 दिनों तक हमें देखने को मिलता रहेगा।
0: इसी के साथ समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 7:45 पर। नमस्कार।
3: FM 103.4 MHz पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। 6:05 हुए हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरमई सांझ।

किशोर कुमार की आवाज़ में ये गीत आपने सुना मेरी आवाज़ सुनो फिल्म से। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है और फिल्म है आज और कल।

फुर्सत के पल शाम सा सुकून, फुर्सत से के पल शाम सा सुकून, कुछ तुम्हारी बातें कुछ मेरी बातों में तुम।

0: into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
1: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
0: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
1: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.70 lakh.
0: Yes, 6.70 lakh rupees. Valid till 31st July.
1: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
0: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
2: Nexa.
1: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
0: This monsoon season, make every drive feel smoother and every journey special.
1: Presenting the Bolt Baleno, the perfect combination of style, technology and safety.
0: Equipped with features like a 360 degree camera, heads-up display and a safety through 6 airbags.
1: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 5.59 lakh. Yes, Rs. 5.59 lakh. Valid till 31st July only.
0: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home the Bolt Baleno today. TNC apply.
2: Nexa.
3: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
4: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई। ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
5: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
6: सुरमई सांझ में आज हम आपको सुनवा रहे हैं सदाबहार गीत, मोहम्मद रफी की आवाज और फिल्म है।

चलिए श्रोताओं, इस तरह भी रूठना नहीं चाहिए कि किसी की जान ही निकल जाए, और मिलजुल कर रहना चाहिए। कहते हैं ना कि दिल की खिड़कियां खुली हों तो हवा के साथ उम्मीद भी आती है। जी हाँ बिल्कुल, और जब हम किसी से बातचीत करते हैं, मिलते जुलते हैं, तो अपने दुख दर्द भी कम होते हैं। और जब हम दूसरों के साथ ये बातें शेयर करते हैं, यानी एक अपने दूसरों की तकलीफ़ साझा करते हैं, उनको सुनते हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं सुकून मिलता है।

तो श्रोताओ, इस गीत के साथ ही आज की सुरमई सांझ का ये गीतों का सफर यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। 6:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम मौज जागरा इंडिया।

0: मौजा ग्राइदियां कार्यक्रम सुना कर दे सारे ही किसान बागबान भाई बहना जो बड़का चाचू की तरफा दे राम राम। किसान साथी हो ट्याल पेरे मंज सोगी केसरो ता केसरो जी राम राम।
1: बड़का चाचू जी तुझे भी राम राम। कने सोगी ही कार्यक्रम मौजा ग्राइदियां सुनने वाले सारे ही किसान भाई बहना जो भी केसरो दी दो अचूड़ी के राम राम
0: जी। कने किसान साथी दोनों हाँ ट्याले पर आई पुजे न और ढेरों सारी जी जानकारियां कहने भी हाँ अपने किसान भाई सोगी साझा करनी न और जानकारी करने कने प्यारे प्यारे कने मीठे मीठे लोग गीत भी उन्होंने तक रहा पहुँचाने।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल। कने बड़का चाचू जालू वहाँ ट्याले पर आई आते हैं ना तो जानकारियां का पिटारा जोड़ा इसे सोगी लेकर ही आते हैं। कने अज जी जानकारियां हाँ अपने किसान भाई बहन कने साझी करनी इसे है राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार अभियान के बारे च।
0: जी जी।
1: कने दिखा इसका उद्देश्य जोड़ा है ग्रामीण क्षेत्रों च रहने वाले लोगों जो विशेष करके जी महिला साड़िया है न किसान बहन या फिर युवा तिना जो आर्थिक रूप ने कमजोर परिवार जो स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना कने उन्हें जो आत्मनिर्भर बनाना है।
0: जी जी।
1: कने सोगी किसान साथियों इस अभियान के तहत लोकां जो स्वयं सहायता समूह कने जोड़ा जाता है। कने कौशल विकास का प्रशिक्षण देने वास्ते छोटे उद्योग स्थापित करने कने बैंक ऋण कने सोगी ही सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने पर विशेष ध्यान जोड़ा सह दिता जाए।

0: इस दा मकसद केवल रोजगार उपलब्ध करवाना ही नहीं है बल्कि ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाना कने उना दे जीवन स्तर च सुधार लियाना है
1: जी जी
0: कने जेड़े ग्राम होंदे तिना च डेयरी या फिर मशरूम उत्पादन इस दे कने मधुमक्खी पालन होई या बकरी पालन होई या सिलाई कढ़ाई इस दे अलावा होर भी कई हस्तशिल्प जियां अनेक जेड़े काम हैं स्वरोजगार दे अच्छे साधन जेड़े से बनी सकते हैं कने सही प्रशिक्षण और सरकारी सहयोग मिलने पर छोटे छोटे व्यवसाय जेड़े से बड़ी सफलता का आधार बनी सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल देखा कि अहां दा अगर जियां जेड़ा बेरोजगार युवा साथी है या फिर अपना नया व्यवसाय करना चाहता है तो असं व्यवसाय अगर प्रशिक्षण लेके करता है सिखलाई लेकर करता है तो असं व्यवसाय के भी साढ़े वास्ते एक आसान बनी जाता है और जालू जालू अहां बोले ना कुछ भी काम च अनुभवी बनी जाते ना तो सो अपने आप पता लगता जाता कि कुथू सो ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है और कुथू कमी पेशियाँ कहीं भी रह गई ही हाँ।
0: बिल्कुल जी,
1: और इस देखा कि मतलब बोलते ना कि कुछ भी काम जो करने ताई एक लगन होना के भी बड़ा बड़ी जरूरी है। अगर असा पर लगन है तो अहां कोई भी काम कहन भी कर सकते हैं। और जी कि अहां तुम बोला करते कि असा दा जेड़ा युवा बेरोजगार साथी जी कि मधुमक्खी पालन का काम भी कर सकता है, है ना, मशरूम की खेती भी कर सकता है, जी मुर्गी पालन का भी काम कर सकता है, इस तरह के कई जो व्यवसायिक हैं भी अपनी खेतीबाड़ी के कन्ने कन्ने उन्हें जो अपनाई करी एक अतिरिक्त जी आमदनी कहने भी कमाई सकते हैं। तो अगर असा दे काम जो करते हैं तो इसते क्या होना कि सो एक आय का जोड़ा साधन के भी बनना है और उपर दे असा भी मतलब जोड़े आर्थिक रूप कने भी सशक्त होने न और आत्मनिर्भर कने भी बनने न।
0: बिल्कुल, और दिखा सरकार जी है भी साढ़े किसान भाई बहना जो जोड़ा है इन्हों कम जो सीखने वास्ते जोड़ा है सह प्रशिक्षण जोड़ा है समय समय पर दी है तो प्रशिक्षण जरूर लेना चाहिए है। और कोई भी काम करने से पहले तिसा अगर तुह सीखी लेंदे सीखी के कर दे तो तिसका नुकसान जोड़ा है घट होने की संभावना होंगी है और सो जरूर तिसका फायदा मिलता है।
1: बिल्कुल, तो किसान साथी गल्ला बातें सदियाँ अगे भी जा रहे हैं, पर हाँ शामिल करना एक प्यारा दिया लोक गीत तो सुनते ने लोक गीत
0: जी।

0: अरे सागर, बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है?
1: खुश तो होना ही है भाई, क्योंकि हिमाचल की हक की लड़ाई में एक और बड़ी सफलता जो मिली है।
0: अच्छा, ऐसी कौन सी खुशखबरी है, हमें भी बताओ।
1: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रयासों से किशाऊ बांध परियोजना में हिमाचल ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है।
0: वो कैसे?
1: करीब 15,000 करोड़ रुपए की लागत और 422 मेगावाट क्षमता वाली किशाऊ परियोजना में बिजली उत्पादन के लिए होने वाले लगभग 2,000 करोड़ रुपए के हिमाचल के हिस्से के खर्च का बोझ अब प्रदेश पर नहीं पड़ेगा।
0: फिर ये खर्च कौन उठाएगा?
1: परियोजना के पानी से लाभान्वित होने वाले दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा राज्य ये खर्च वहन करेंगे।
0: वाह, इससे हिमाचल को क्या फायदा होगा?
1: फायदा ही फायदा। परियोजना से बिजली उत्पादन शुरू होने पर हिमाचल प्रदेश को हर वर्ष लगभग 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय सुनिश्चित होगी।
0: यानी प्रदेश के अधिकार भी सुरक्षित और भविष्य भी मजबूत।
1: बिल्कुल, ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रदेश हित के लिए लड़ी गई मजबूत पैरवी का परिणाम है।
2: हिमाचल के अधिकारों को दिलाया नया सम्मान। सुक्खू सरकार बना रही समृद्ध प्रदेश की पहचान। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: अरे सागर, बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है?
1: खुश तो होना ही है भाई, क्योंकि हिमाचल की हक की लड़ाई में एक और बड़ी सफलता जो मिली है।
0: अच्छा, ऐसी कौन सी खुशखबरी है, हमें भी बताओ।
1: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रयासों से किशाऊ बांध परियोजना में हिमाचल ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है।
0: वो कैसे?
1: करीब 15,000 करोड़ रुपए की लागत और 422 मेगावाट क्षमता वाली किशाऊ परियोजना में बिजली उत्पादन के लिए होने वाले लगभग 2,000 करोड़ रुपए के हिमाचल के हिस्से के खर्च का बोझ अब प्रदेश पर नहीं पड़ेगा।
0: फिर ये खर्च कौन उठाएगा?

0: ना के पानी से लाभान्वित होने वाले दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा राज्य ये खर्च वहन करेंगे।
1: वाह, इससे हिमाचल को क्या फायदा होगा?
0: फायदा ही फायदा। परियोजना से बिजली उत्पादन शुरू होने पर हिमाचल प्रदेश को हर वर्ष लगभग 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय सुनिश्चित होगी।
1: यानी प्रदेश के अधिकार भी सुरक्षित और भविष्य भी मजबूत।
0: बिल्कुल, ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रदेश हित के लिए लड़ी गई मजबूत पैरवी का परिणाम है।
2: हिमाचल के अधिकारों को दिलाया नया सम्मान। सुक्खू सरकार बना रही समृद्ध प्रदेश की पहचान। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
4: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
3: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
4: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.70 lakh.
3: Yes, 6.70 lakh rupees. Valid till 31st July.
4: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
3: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
5: Nexa.
6: किसान साथी लोकगीत और अहां संदेश सुनन।
7: बिल्कुल।
6: और इस दे बाद असां थोड़ी दी गलबात करने की दिखा कि ये जड़ा बरसात दा मौसम है ना, और इस बरसात दे मौसम संजो मती सारी जड़ी सावधानी कन भी बरतना चाहिदियां ने।
7: बिल्कुल जी बिल्कुल, क्योंकि दिखा घा जड़ा ऐसा भी आजकल अंगने द्वारे च साड़े हुंदा है ना।
6: बिल्कुल बिल्कुल।
7: कने आ कई बारी निक्के आने भी जी, कई बारी खेल दे खुल दे ते नंगे पैर भी चली जांदे है ना।
6: जी जी जी जी।
7: आ भी घा कई बारी चल दे, हुन खेतीबाड़ी दे काम करने तक गाय ते जाना पोंदा, पर तालु संजो थोड़ा देर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कीड़े कंडू जड़े इनसे आजकल बरसात दी रीति च बड़े भरी हुंदे।
6: बिल्कुल, कने दिखा कि जालु भी तुसा अपने माला बच्चे जो घा पट्ठा लेना जांदे ने खेतरा च है ना, ता जिया जेड़ा घा हुंदा हां जी सा जगह घा मतलब कटना है, तो तू समझो पहले डंडे कने जेड़ा घा के भी टटोली लेना चाहिए, ताकि तू कोई कीट वगैरह ऐसा कुछ मतलब भी जेड़ा समझो नुकसान पहुंचा सके से ऐसा कुछ ना हो मतलब ना।
7: बिल्कुल जी, बिल्कुल।
6: और दिखा कि जिया कि अहां अगर अपने घर दरबार की गल करते हैं तो साड़ा जेड़ा आंगन वगैरह या मतलब साफ सुथरा होना चाहिए, और खास तौर पर साढ़े जेड़े खेत खलिहान ने जी कि यहाँ अगर गल करते हैं जितू ज़्यादा बरखा होंगी है तो पानी का जोड़ा निकासी का प्रबंधन के भी सजो करी लेना चाहिए। कई बार क्या होंगे कि ज़्यादा पानी आने के होंगे कि मतलब खेत वगैरह भी साढ़े डेह जाते हैं या फिर फसल वगैरह भी खराब हो जाती है, तो यह छोटी छोटी गलत लेकिन सजो इन पूरी जी सावधानी कहने हाँ ये अपने काम काज के भी करने।
7: बिल्कुल।
6: फिर अहाँ शामिल करना एक प्यारा दिया लोक गीत, तो सुनते ने लोक गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जांगरा इंडिया, आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7 बजने को हैं, अब आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की अपनी 2 दिन की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न कर स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। 4 दशकों से अधिक समय में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की ये पहली यात्रा थी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत की। दोनों नेताओं ने रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन और दुग्ध तथा पशुपालन सहित विभिन्न क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इस यात्रा का प्रमुख आकर्षण ऑकलैंड के स्पार्क एरिना में आयोजित सामुदायिक कार्यक्रम था, जिसमें भारतीय प्रवासी समुदाय के 10,000 से अधिक सदस्यों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री लक्सन ने सभा को संबोधित करते हुए भारत को विश्वसनीय मित्र बताया, न्यूजीलैंड की प्रगति में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा की। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन को उनके गर्मजोशी भरे आतिथ्य के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि इस यात्रा ने भारत न्यूजीलैंड संबंधों में एक नया अध्याय खोल दिया है।
2: न्यूजीलैंड वो जगह है जहां निखिल रविशंकर एयर न्यूजीलैंड के सीईओ बन सकते हैं, जहां आनंद सत्यानंद गवर्नर जनरल बन सकते हैं, जहां क्रिकेट टीम में रचिन रविंद्र, कहीं बॉम्बे हिल्स है, कहीं कोरोमंडल है, ऐसे कितने ही नाम हैं। यहाँ रहते रहते आप भी पूरे के पूरे कीवी हो गए हैं।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने व्यक्तित्व निर्माण में पुस्तकालयों की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए युवा पीढ़ी से पुस्तकालयों से जुड़ने की अपील की है। नई दिल्ली में आज जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि लोक नायक जयप्रकाश नारायण महान स्वतंत्रता सेनानी, विचारक और राष्ट्रवादी नेता थे, जिन्होंने देश के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना ने देश भर में 2,00,000 से ज्यादा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को ऋण मंजूर करने का अहम पड़ाव पार कर लिया है। योजना के अंतर्गत 20,300 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ है और लगभग 11,00,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा हुए। नई दिल्ली में आज विशेष कार्यक्रम में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि ये योजना भारत की खाद्य प्रसंस्करण विकास यात्रा के अगले चरण के लिए मजबूत आधार है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि लोकतंत्र में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन संविधान और जन कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता सर्वोपरि रहनी चाहिए। उन्होंने बिहार में गयाजी में राज्य के लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में 18वीं विधानसभा के सदस्यों के लिए आयोजित 2 दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए ये बात कही।

0: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट आज वियतनाम के फूकवोक द्वीप के पास पलट गई। स्थानीय खबरों के अनुसार 15 लोगों के मारे जाने की आशंका है, जबकि 21 लोगों को बचा लिया गया है। हनोई स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि खोज और बचाव अभियान जारी है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया। भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नम, प्रथिका प्रदीप और चिकित्सा तनिपार्थी की तिकड़ी ने आज तीरंदाजी विश्व कप के चौथे चरण में रजत पदक अपने नाम किया। टीम को महिला कंपाउंड टीम स्पर्धा के फाइनल में कोलंबिया से 228-232 से हार का सामना करना पड़ा। वहीं प्रथिका प्रदीप ने व्यक्तिगत महिला कंपाउंड में कांस्य पदक अपने नाम किया। फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। दूसरे मुकाबले में कल सुबह 6:30 बजे मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय तन्वी खुराना। Prime Minister Narendra Modi has concluded his historic two-day visit to New Zealand and departed for India. The visit, the first by an Indian Prime Minister to New Zealand in over 4 decades, gave a major boost to bilateral ties. During the visit, Prime Minister Modi held talks with his New Zealand counterpart, Christopher Luxon. They witnessed the exchange of 5 memoranda of understanding in areas including defence, tourism, sports, disaster management and dairy and animal husbandry. A major highlight of the visit was the community event at Auckland's Spark Arena, attended by over 10,000 members of the Indian diaspora. Addressing the gathering, Prime Minister Luxon described India as a trusted friend, praised the contribution of the Indian community to New Zealand's progress, and appreciated Prime Minister Modi's leadership. Prime Minister Modi thanked Prime Minister Luxon for his warm hospitality and said the visit had opened a new chapter in India-New Zealand relations. Referring to the 40-year gap since the last visit by an Indian Prime Minister, he said the next visit would not take so long.
2: 40 साल के बाद कोई भारतीय पीएम न्यूजीलैंड की धरती पर आया है। ये मेरा सौभाग्य है। मैं न्यूजीलैंड के सभी निवासियों के लिए, आप सभी लोगों के लिए 140 करोड़ भारतीयों की शुभकामनाएं लेकर आया हूँ। साथियों, प्रधानमंत्री के रूप में भले ही मेरा पहला न्यूजीलैंड दौरा है, लेकिन 25-30 साल पहले जब मैं किसी सरकार में भी हिस्सा नहीं था, सार्वजनिक जीवन में मुझे कोई जानता नहीं था, तब भी मुझे यहाँ न्यूजीलैंड आने का अवसर मिला था।
1: The Pradhan Mantri formalization of micro food processing enterprises scheme has crossed the milestone of sanctioning loans to more than 2 lakh micro food processing enterprises across the country. The scheme has leveraged project investments of over 20,300 crore rupees and generated nearly 11 lakh direct and indirect employment opportunities. Addressing a special event in New Delhi today, Union Minister for Food Processing Industries, Chirag Paswan, said that the achievement is not merely a milestone to celebrate, but a strong foundation for the next phase of India's food processing growth story. Mr. Paswan also underlined the participation of women entrepreneurs at nearly 44% of all beneficiaries reflects the true spirit of women-led development, a cornerstone of Viksit Bharat. A speedboat carrying Indian tourists capsized near Vietnam's Phu Quoc Island today. According to local media reports, 15 people are feared dead, while 21 people rescued.

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। 7:10 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम किसान वाणी।

0: कार्यक्रम किसान बाणी सुना कर दे सारे ही किसान बागबान भाई बहना जो बड़का चाचू की तरफा दे राम राम। किसान साथियों आज टाले पर मंजसु की केसरो था केसरो जी राम राम।
1: बड़का चाचू ता अंजु भी राम राम। कने किसान वाणी कार्यक्रम कने जुड़े जितने भी किसान भाई बहन तिना जो भी केसरो जी दो आज जोड़ी करी राम राम।
0: बिल्कुल कने किसान साथी यहाँ दोनों टियाड़े पर आई पुजन और ढेरों सारी जड़ी जानकारियां कहने भी यहाँ अपने किसान भाई सो की साझा करनी है ना
1: जी।
0: ता दिखा केसरों की भी बरसात के भी जोरा शोरा पर उतरी आई है और असा तो जेडे किसान साथी कहने भी अपने खेत खलियाना च पूरी तरह कने कहने भी व्यस्त है ना।
1: व्यस्त है जी बिल्कुल। कने दिखा बरसात जेडी ऐसे भी उतरी आई है कने दिखा इस टाइम जेड़ा ऐसे किसान भाई अपने खेतां च काम भी करा करदा है कने बरखा दा भी पूरा पूरा ध्यान रखा करदा है ना जी।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और खास तौर पर असा दी जेड़ी धाना दी खेती है मतलब उस जो लगाने च असा दा जेड़ा किसान साथी के भी इस वेले पूरी तरह व्यस्त है और अहां आशा करते हैं कि असा दा जेड़ा किसान साथी दे जेड़े काम काज कैन भी इस वेले से पूरी तरह सही और बांके कैन भी होई आन। और दिखा कि असा दा किसान अपने जी अनाज वाली फसला भी लगांदा है सब्जियां दी खेती बाड़ी भी करदा इस दे करने करने और भी कई तरह दे जेड़े व्यवसाय उन्हां जो करदा है।
1: बिल्कुल
0: है ना। तो अगर अहां गल करदे जी हां कि मशरूम दी तो असा दा जेड़ा किसान साथी भी मशरूम की खेती बाड़ी जो भी करता है।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल।
0: और मते सारे जेड़े किसान कहन भी जी साढ़े ट्याले पर आंदे तो उन्होंने अहां अनुभव जो सुनते हैं और पता लगता कि किए किए से अपनी खेती बाड़ी जो करा करते हैं और खास तौर पर साढ़े जेड़े युवा बेरोजगार साथी अगर मशरूम की खेती बाड़ी जो अपनांदे हैं तो सार दे पहले क्या है केसरो जी की सिखलाई लेना बड़ी भरी जरूरी है।
1: बिल्कुल बड़का चाचू तू हाँ बिल्कुल ठीक गल गलाई है कि मशरूम दे बारे चाहे जहाँ गल करा दे और मशरूम जो उगाने की इच्छा होना ही काफी नहीं होंदा उस वास्ते सही तकनीक का पता होना चाहिए सांझो बीज का चुनाव अहां किए करना है इसके बारे जानकारी होना चाहिए है क्या तापमान और कितनी की नमी जड़ी ऐसे होना चाहिए है साफ सफाई खाद तैयार करना ऐसे बड़े सारे काम हैं जिन्हों के बारे सांझो पहले की लेना चाहिए है यानी कि मशरूम उत्पादन प्रशिक्षण जो है करके सांझो इस काम जो आगे बढ़ाना चाहिए है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और साढ़े जेड़े विशेषज्ञ होंगे ना उन्होंने सोच सो संपर्क च रहना चाहिए टाइमे टाइमे पर हाँ उन्हें कहने भी सलाह मशवरा कहन भी करी सकते हैं और अगर सिखलाई लेकर यहाँ मशरूम की गल नहीं करते ना अगर हाँ कुछ भी काम जो करते हैं और सिखलाई लेकर करते हैं तो काम के भी साढ़े तक एक आसान के भी बनी आंदा है।
1: बिल्कुल बड़का चाचू।

0: किसान साथी हो, असा आशा करते हैं कि ये प्यारा दे लोक गीत तुसा जो जरूर पसंद आया होना। और इस लोक गीत के बाद उन्हें चलना अगली जानकारी की तरफ, तो सुनते ने जानकारी।
1: किसान साथियों, जिया कि तुहां जानते हैं कि कार्यक्रम किसान वाणी च अहां दा प्रयास रहंदा कि हर दिन एक नित नई जानकारी अहां तुहां तक पहुंचाइए, चाहे वह कृषि विज्ञानिकां द्वारा दी गई जानकारी होवे या फिर अहां दे उन्नत किसानों कन्ने की गई गलबात होवे। तहसील जुआली दे ब्लॉक नगोटा सूरियां च कन्ने ग्राइंड जड़ा नां से तलियाल, इत्थों मेरे कन्ने एक उन्नत किसान जिहड़े से जुड़ा करदे हन, उह करदे ने इहनां कन्ने गलबात। राम राम जी।
2: राम राम जी।
1: जी अपना नाम दसा।
2: मेरा नाम है राकेश कुमार राणा।
1: जी राकेश जी, तां राकेश जी खेती बाड़ी करदे तो? हाँ
2: हाँ जी हाँ जी।
1: अच्छा, कितना के अरसा हुई है खेती करदे?
2: असा 2016 च शुरू किया था नेचुरल फार्मिंग दे कॉन्सेप्ट पर काम करना।
1: अच्छा,
2: तो असा शुरुआत की थी हल्दी कन्ने एलोवेरा कन्ने।
1: हाँ जी।
2: साड़ा मुख्य उद्देश्य था कि छोटे किसान कन्ने मंझली जोत आले किसान जेड़े है ना,
1: हाँ जी,
2: सक ऐसियां क्या चीजां उगाइए ताकि किसान मार्केट कन्ने जुड़ी सके।
1: जी जी हाँ जी।
2: क्या उत्पाद होना चाहिए साड़ियां जमीना च, हां क्या चीजां उगाइए,
1: हाँ जी,
2: ताकि तिन्हां दी हां प्रोसेसिंग कन्ने पैकेजिंग भी करिए कन्ने हां सीधे मार्केट च तिन्हां चीजें पहुंचाइए ताकि किसान मार्केट कन्ने जोड़न कन्ने किसानां ने फायदा हो।
1: अच्छा,
2: तो असां 2016 च शुरू किया था हल्दी कन्ने।
1: अच्छा,
2: तो हाँ हल्दी दियां अलग अलग किस्म लगाइया, तो इस फिर प्रोसेसिंग भी स्टार्ट की।

0: पैकेजिंग भी स्टार्ट की।
1: हाँ जी
0: फिर यहाँ 5-6 प्रोडक्ट लेके मार्केट च आए।
1: अच्छा
0: तो मार्केट च समझो साड़ी जड़ी क्वालिटी थी से हाँ जमीना दे ले के पैकेजिंग तक मेंटेन रखी,
1: हाँ जी
0: तो इस करके समझो अच्छे रिजल्ट मिले। कन्ने हाँ हौला हौला इस कम में बता देना। कन्ने हाँ उसके बाद एलोवेरा भी स्टार्ट किया जमीना च लगाना।
1: राकेश जी, जी तुम दसिया ना कि हल्दी पर तुम काम शुरू किया
0: हाँ
1: हा,
0: जी
1: ये हल्दी कौन ये कोई किस्म है कोई हल्दी दी?
0: हाँ जी असा 5 किस्म ही हल्दी पर काम करा दे।
1: अच्छा
0: तिस एक साड़ा प्राचीन बीज था जेड़ा साड़े दादा दादी दे टाइमे दा बीज हुंदा था,
1: हाँ जी
0: जिस हाइब्रिडाइजेशन नहीं थी,
1: अच्छा
0: बिल्कुल प्योर देसी बीज था।
1: हाँ जी
0: दूजा बीज अहां एक ट्रायल लिया था प्रगति किस्म दी हल्दी पर।
1: अच्छा
0: तीजा हाँ ब्लैक टर्मरिक पर भी ट्रायल लाया दे।
1: हाँ जी
0: कहना एक बीज था सह भी बड़ा रेयर मिलता है, सह बीज था कस्तूरी मंजर हल्दी।
1: अच्छा
0: तो कुछ बीज जड़े हैं ना सह असा पाउडर बनाई के पैकेजिंग करी के बेचा दे,
1: हाँ जी
0: बाकी जड़े बीज है ना हल्दी दे तिना दी जड़ी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है ना औषधीय गुण जड़े है ना
1: हाँ जी
0: सह दुईया नॉर्मल टर्मरिक ते ज्यादा है ना, तो तिना दे हाँ प्रोडक्ट बनाई के फिर यहाँ मार्केट च सेल करा दे। कहना कहना कहना हाँ एलोवेरा की खेती भी बढ़ा दे।
1: अच्छा
0: हल्दी का हाँ पाउडर, टर्मरिक फेस ऑयल,
1: हाँ जी
0: टर्मरिक फेस पैक,
1: हाँ जी
0: टर्मरिक स्किन केयर ऑयल
1: अच्छा
0: ये बना दे। कहना एलोवेरा का हाँ एलोवेरा पाउडर बना दे।
1: अच्छा ये सारी चीजें घर ही बनाते तू?
0: ये सारी चीजें घर ही बनाई हैं। कहना फिर वहां पैकेजिंग करके इसे बेचा दे।
1: अच्छा तो जी तो दसिया कि हल्दी भी लगाते हैं तो कने सोगी एलोवेरा भी लगा करते हैं तो कुल कितनी की जमीन है तुहां वाल?
0: 8 कनाली जमीन है सर।
1: अच्छा
0: हल्दी हाँ ज्यादा लगा दे,
1: हाँ
0: हल्दी
1: जी
0: लाइना च लगा दे, तो कई बार हाँ बीच वाली रहन जी एलोवेरा की भी लगाई।
1: अच्छा राकेश जी जी तुम दस्या ना कि तुम नेचुरल जरा सा सारा ये काम करा करते हैं
0: हाँ जी
1: प्राकृतिक दे पा तुम्हारा रुझान कि हो कुछ ते तो जो सर प्रेरणा मिली कि प्राकृतिक तरीके करना कितने जाए?
0: एक्चुअली क्या हो रहा था साढ़े पास जरा केमिकल कने पेस्टिसाइड का जरा यूज हो रहा था
1: हाँ
0: सर
1: जी
0: सही तरीके ने नहीं हो रहा था, बहुत ज्यादा मात्रा जहाँ केमिकल कने पेस्टिसाइड यूज करा देते थे।
1: हाँ जी
0: सर जरा केमिकल पेस्टिसाइड हाँ जमीना दे पा दे थे सर अनाज दे थ्रू साढ़े शरीर भी पुजाता था,
1: बिल्कुल
0: तो तिस कने सारिया बीमारियां भी बता दी थी।
1: हाँ जी
0: साड़ा इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हुआ था क्योंकि सो पौष्टिक अनाज नहीं मिला था, पौष्टिक सब्जियां नहीं मिल रही हैं या पौष्टिक हल्दी भी नहीं मिल रही।
1: हाँ जी
0: तो उस वजह ने मेरा विचार आया था 2016 की कुछ खेत जहाँ ऐसा काम करिए बिना केमिकल पेस्टिसाइड से, ताकि जड़ी भी खेते जो चीज तैयार हुआ है सह बिल्कुल शुद्ध तरीके ने प्राकृतिक तरीके ने तैयार हुआ।
1: जी दिखा बड़ी खुशी की गल है जलू अहां कन्ने प्राकृतिक तरीके कन्ने खेती करने वाले किसान जलू अहां कन्ने जुड़ते हैं। अच्छा तो प्राकृतिक तरीके कन्ने जलू तुहां करते हैं ता अहां दे सुनने वाले तुहां ए दसा कि कौन कौन घटक जड़े से तुहां बनांदे हैं अपनी जलू हल्दी कन्ने इहदी जलू खेती तुहां करनी है जी खाद कौन कौन पाउंदे इस विच फिर बनाई के?
0: इस बीच खाद हाँ पाई सकते देसी गाय दे गोबर कन्ने असा घन जीव अमृत बनाई सकते,
1: हाँ जी
0: लिक्विड फॉर्म च भी बनाई सकते
1: हाँ
0: असा।
1: जी जीव अमृत तो ही
0: हाँ
1: या
0: जी घन जीव अमृत तो ही
1: हाँ जी
0: लिक्विड फॉर्म च भी बनाई सकते हाँ, कन्ने इसी सॉलिड फॉर्म च भी बनाई सकते, गोठू हाँ जी पहले गोठू बनाते उस फॉर्म च भी बनाई सकते,
1: हाँ
0: इसको
1: जी
0: सह कर सकते हाँ। डायरेक्ट हाँ देसी खाद भी यूज कर सकते डायरेक्ट असा, मैक्सिमम जी गोट मैन्यूअर जिसे बोलते मिंगन वाली खाद भी हाँ मैक्सिमम मिंगन वाली खाद भी यूज कर लेंगे बिच।
1: अच्छा तो हाँ जो कदे इधे जड़े सा रिजल्ट कदे लगते हैं कि प्राकृतिक तरीके का ना बढ़िया बांका काम हो करता?
0: बड़ा बढ़िया काम हुआ था जल असा अपने प्रोडक्ट लेके मार्केट च स्टार्टिंग च गए रहे संजो, इतना अच्छा रिस्पांस मिला कि सारा लगभग लगभग 90% कस्टमर जो सर रिपीट कस्टमर है।
1: अच्छा हाँ जी देखा कर अजकल का जड़ी साहब देसी कोई भी अगर हाँ उत्पाद है देसी तरीके कने तैयार किते हैं तीन दिखा बाजार विच जड़ी साहब दिनों दिन जड़ी साहब मांग बिल्कुल बढ़ा
0: हाँ
1: करती
0: बदल
1: है ना। तो तुम दसिया कि 2016 च तुम प्राकृतिक खेती कने जुड़े प्रशिक्षण को तो लिया तुम ये?
0: इसका प्रशिक्षण तो असा बड़ी बाद लिया हाँ, काम बड़ा पहले ही शुरू करी था हाँ,
1: अच्छा
0: 2020 च आत्मा दे थ्रू फिर इसका प्रशिक्षण लिया था
1: अच्छा कुतु की है तो
0: ये
1: हाँ
0: नगरोटा सोरिया।
1: नगुट्टा सूरी ब्लॉक ची ट्रेनिंग हुई ही?
0: हाँ एक खब्बल ट्रेनिंग हुई थी, 2 दिन का कैंप था इतो
1: अच्छा
0: तो उतो ट्रेनिंग हुई थी
1: हाँ जी
0: तो तिसते बाद असा से चीजा सारिया सीखिया।
1: अच्छा तो जी प्राकृतिक का तो हाँ जिक्र किया है इस तरह घर देसी गाय भी रखी हैं?
0: देसी गाय एक गाय रखी है
1: अच्छा दुध भी दिंदी होनी?
0: दुध भी दिंदी है।
1: अच्छा अच्छा राकेश जी जी तुम दसिया कि चलो तुम ये खुद उत्पाद तुम बनाते हैं पैकिंग वगैरह भी तुम सारी आपू करते हैं
0: हाँ जी
1: इससे बाद ये बेचना कुछ फिर नी के?
0: असा व्हाट्सएप के थ्रू ही साढ़े कस्टमर की चेन है साड़ी, असा जयपुर भी भेजते कुछ हल्दी पाउडर, कुछ
1: अच्छा
0: पठानकोट भी भेजते,
1: अच्छा
0: कुछ हरिद्वार कने

0: दिल्ली भी कस्टमर है ना साढ़े,
1: हाँ जी
0: तो जल्द असा साढ़े परमानेंट कस्टमर है ना, जल्द असा पैकेजिंग करते साले की अद्धी पैकेजिंग एक बारी होंगी,
1: हाँ जी
0: तो जितनी भी क्वांटिटी साढ़े अल अवेलेबल होंगी है
1: हाँ जी
0: टर्मरिक पाउडर, तो असा जरा अस पैक करके जो साढ़े परमानेंट कस्टमर है उन्होंने पूरे साल का कोटा तेने भेजी देते बाई कोरियर।
1: अच्छा अच्छा जो तुम दसिया है पाउडर इसी बनाने की विधि दसा कि बनाना है शुरुआत चढ़ सा कि करना हल्दी के बाद हाँ कौन दिया काम करना कि जिससे हाँ की पाउडर बनाना है क्या क्या करना पौधा
0: हल्दी हाँ चल खेतर से निकालनी है।
1: हाँ जी
0: इसके बाद हाँ तसाइया पहले जड़ा कटनी है।
1: अच्छा साफ करनी है।
0: हाँ जी जड़ा कटी के असा तुम फिर पानी साफ करना।
1: हाँ जी
0: साफ करके तुम हाँ स्लाइसिंग कर देनी हल्दी की जड़ा की स्लाइसिंग करके।
1: अच्छा
0: इसके बाद असा फिर तीसरी सुखाते सोलर ड्रायर।
1: अच्छा
0: सोलर ड्रायर च जो सुखाने का फायदा है कि जो हल्दी है डायरेक्ट सनलाइट के कॉन्टैक्ट च नहीं आती।
1: अच्छा
0: तो इस जो वॉलेटाइल कंटेंट है मतलब जिस ऑयल की जी मात्रा है सर बिल्कुल सेफ रही तो साड़ी क्वालिटी जी इंप्रूव हो जाती है। इसके बाद असा इसे ग्राइंडिंग करवा लेंगे।
1: अच्छा बाकी फिर बाद पाउडर बनी हुई है।
0: हाँ जी फिर पाउडर बनी है फिर हाँ अद्धा किलो ही पैकिंग करके स्टिकर वगैरह लगाई के।
1: अच्छा
0: तो जेड़े जेड़े साड़े परमानेंट कस्टमर है ना
1: हाँ जी
0: पूरे हाँ साल दा कोटा बाई कोरियर भेजी दे।
1: अच्छा इस चीज़ ने कि और कुछ मिक्स नहीं करना ना
0: इस चीज़ और कुछ मिक्स करने जरूरत नहीं पौंदी।
1: अच्छा तो जी अद्धा अद्धा किलो दी पैकिंग है इहदा क्या भार है अंदा जदों बेचना तो हाँ जी थोक भाव च बेचना या फिर कुछ हिसाबे कन्ने बेच दे।
0: असा इस रिटेल च बेच दे।
1: अच्छा ऐसा देखा ऐसा मन्ने जांदा ना कि प्राकृतिक तरीके कन्ने जेड़े उत्पाद तैयार करते हैं ना उन्हां दा जेड़ा सा थोड़ा मोल भाव जेड़ा थोड़ा ज्यादा हुंदा है तो हाँ जो क्या उस तरीके के भा मिली आ दे।
0: हाँ नॉर्मल दी 350-350 रुपए किलो रेट है मार्केट से 450 किलो है 450 रुपए पर किलो।
1: अच्छा अच्छा एलोवेरा का जिक्र तो हाँ किता हा।
0: हाँ जी
1: तो क्या क्या प्रोडक्ट बनाते तो हाँ
0: एलोवेरा दे तो काफी सारे प्रोडक्ट बनी जाते पर हाँ सिर्फ हल्ले पाउडर पर ही ट्रायल लिया एलोवेरा दे पत्ते कट्टी के बारीक स्लाइसिंग करी के हाँ तुसी भी सोलर ड्रायर च सुखांदे।
1: अच्छा
0: जब उसे सोलर ड्रायर च पूरी तरह सुकी जांदा
1: हाँ जी
0: तुसी हाँ मैनुअली ग्राइंड कर लेंदे।
1: अच्छा
0: जिहड़ी साडियां पुरानियां चक्कियां थीं
1: हाँ जी
0: हाँ तिन्हां ने भी ग्राइंड कर लेंदे कन्नै छोटी जिहड़ी मसाले वाली मशीनां होंदियां
1: हाँ जी
0: तिन्हां कन्नै ग्राइंड करके हाँ बारीक पाउडर बनाई के तुसी हाँ फेस पैक च यूज करदे।
1: अच्छा
0: साडा इक प्रोडक्ट है टर्मरिक फेस पैक।
1: हाँ जी
0: तां हाँ टर्मरिक फेस पैक च कुछ क्वांटिटी जिहड़ी है हाँ एलोवेरा पाउडर दी भी यूज कर लेंदे।
1: हाँ जी जी तुम दसिया कि ब्लॉक नगरोटा सोरिया कने आत्मा प्रयोजन से जुड़ी रहते हैं।
0: हाँ जी
1: तो ये अलावा जो प्राकृतिक की तो ट्रेनिंग जी की हुई है प्रशिक्षण लिया।
0: हाँ जी
1: इहदे अलावा जी और कई तरह के ऐसे प्रशिक्षण जो शिविर लगते हैं कोई होर भी तुम ऐसी कोई ट्रेनिंग वगैरह की कोई।
0: हाँ जी साल मई च सुभाष पालेकर जेड़े हैं महाराष्ट्र के जिन्हें प्रकृति खेती पर पद्म
1: हाँ
0: श्री पुरस्कार
1: मिले। हाँ जी हाँ
0: हाँ जी हाँ जी तो तिना की वर्कशॉप थी मई महीने।
1: अच्छा
0: तो गवर्नमेंट ने पूरे हिमाचल के किसान भेजे थे इतो नहीं गया था।
1: अच्छा कुछ जगह ही है
0: 7 दिन की वर्कशॉप थी नासिक।
1: अच्छा नासिक
0: हाँ जी नासिक थी महाराष्ट्र टर्मरिक हल्दी जड़ी है से एक बड़ा जबरदस्त औषधीय पौधा है।
1: हाँ जी
0: असा टर्मरिक कन्ने एक स्किन केयर ना दा एक प्रोडक्ट बनाया।
1: अच्छा
0: इस स्किन केयर प्रोडक्ट कन्ने लगभग लगभग सारिया स्किन दिया जितनिया भी बीमारियां है ना स्किन
1: हाँ
0: डिजीज जितनिया भी है ना
1: हाँ जी
0: से सारिया सारिया ठीक हो रही सह प्रोडक्ट जेड़ा साड़ा बाकी सारे प्रोडक्टा दे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है।
1: अच्छा अच्छा राकेश जी एक गल हाँ और करते हैं जे जेड़े तुहां अपनी जेड़ी जितनी भी तुहां खेती करते हैं तुहां दा जेड़ा ए इलाका है तो सिंचाई का क्या साधन है पानी कोई क्या कियां करदे तुहां अपने खेतों च पूरा।
0: साढ़े पास सिंचाई की कोई भी व्यवस्था ही नहीं हाँ पूरी तरह से बिल्कुल बारिश के पानी पर ही डिपेंड है ना।
1: अच्छा
0: तो असा जेड़े भी साड़े एरिया चंगर एरिया है
1: हाँ जी
0: तो इस संजो बरसात की बारिश ही यूज करते हाँ पानी तो उसी हिसाब ने ही असा अपनी फसलों का चयन कर सकते।
1: हाँ जी अच्छा बरखबर है पूरा ये इलाका है।
0: हाँ जी हाँ जी बरखबरी पूरा इलाका डिपेंड
1: दिखा जी विभाग द्वारा या कुछ पंचायत स्तर पर जी पानी के कोई खड्डे या कोई टैंक वगैरह बनते नहीं बनाए तो हाँ कुछ भी
0: नहीं टैंक सड़ा नहीं बने कोई
1: बरसाती पानी रोकने वास्ते जी।
0: हाँ जी हाँ जी सैर टैंक नहीं बने कोई भी अल्ले साड़ा।
1: अच्छा यानी कि बरखा जलू मौसम भर है उसी कन्ने ही तो हाँ जड़ा सह अपना खेती करते हैं देखा प्राकृतिक खेती का यह जड़ा सिद्धांत भी है कि इस जड़ा सह हाँ घट पानी कन्ने जड़ा सह एक बाकी खेती जड़ी सह कर सकते हैं।
0: हाँ जी हाँ जी
1: तो राकेश जी देखा अहां दे जड़े बेरोजगार युवा साथी है सह देखा नौकरियां पिछे तह तू घूमा करते हैं भले ही तेना जड़ी सह अपनी खुली जमीन है तिन्हें तो हाँ क्या संदेश देना चाहेंगे।
0: मैं एक संदेश देना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि साढ़े चंगर एरिए कुछ नहीं हो सकता।
1: हाँ जी
0: जदों असा ये काम स्टार्ट किया था तो मेरे

0: विचार च जिहड़ा विचारिक उद्देश्य था यही था कि एक ऐसा मॉडल स्थापित करना चंगरे एरिए च कि असा अपनी जमीन दे उपज यो कि मार्केट कने जोड़ी सकीए।
1: हाँ जी,
0: तो अगर मार्केट दिखी के अगर कि कुछ मार्केट च कुछ चीज दी डिमांड है,
1: हाँ जी,
0: अगर वही तैयार की जाए और उसे डायरेक्ट मंडी च ना ले जाए के अगर प्रोसेसिंग कने पैकेजिंग खुद की जाए और खुद किसान मार्केट च जाए तो फायदा किसान उठा सकता।
1: जी राकेश जी, तुहा अपने खेतीबाड़ी दे अनुभव अहां कन्ने सांझा किते, अपना कीमती समय तुहा अहां जो दिता, तुहा दा बहुत बहुत धन्यवाद।
2: किसान साथियों, आसा आशा करते हैं कि ये जड़ी जानकारी आसा सारे सुनी है, इस दे आसा फायदा लेना है और अगली जड़ी जानकारी से कांगड़ा सब्जी मंडी दे थोक भाव।
3: बिल्कुल जी, ता किसान साथियों दिखा आज जड़ा है मंडी है आलू रहे है 12-14 रुपए प्रति किलोग्राम, प्याज रहे 30-33 रुपए प्रति किलोग्राम, टमाटर रहे 26-40 रुपए, लहसुन रहा 150-160 रुपए प्रति किलोग्राम, अदरक रहा 190-200 रुपए, शिमला मिर्च रही 48-50 रुपए, अरबी रही है 28-30 रुपए, खीरा जड़ा है आज 25-28 रुपए प्रति किलोग्राम। कने मटर की गल की जाए तो मटर अज जड़े रहे 85 रुपए तो लेके 90 रुपए किलो रहे हैं। कने फुल गोभी जड़ी है 50-52 रुपए, बंद गोभी 15-20 रुपए, बैंगन 19-20, कद्दू रहा 15-16, टिंडा रहा 45-50 रुपए, पालक रहा 32-35 रुपए, हरा धनिया 140-180 रुपए रहा, हरी मिर्च जड़ी है 28-30 रुपए रही।
2: जी जी,
3: कने इस कने भिंडी जड़ी है 28-30 रुपए रहे, घिया रहा 30-45 रुपए, कटहल रहा 25-30 रुपए, फ्रास बीन रही 55-60 रुपए, कने मशरूम रहे 160-170 रुपए। और सोगी ही फलां दी गल कीती जाए तो अज सेब रहा 90-240 रुपए प्रति किलोग्राम, केला जड़ा है सह रहा 50-60 रुपए प्रति दर्जन, अनार रहे 120-140, अनानास रहे 40-45, अमरूद रहा 80-90, मौसमी रही 60-70, पपीता अज रहा 40-50 रुपए, अंब जड़ा है अज रहा 100-110, कने अंब तोता जड़ा है सह रहा 50-60 रुपए, दशहरी अंब रहा 40-60 रुपए, नींबू रहे 65-70 रुपए, नाशपाती जड़ी है 100-150 रुपए प्रति किलोग्राम रहे। कने इस कने ही कीवी जड़ा है सह पर पीस जड़ा है 40-50 रुपए रहा।
2: जी किसान साथियों, फिर यहाँ शामिल करना एक प्यारा दे लोकगीत, ता सुन देने
3: लोकगीत।

0: किसान साथियों, इसी लोकगीत कन्नै कार्यक्रम किसान बाणी हेतु संपन्न हो करदा। कार्यक्रम च तकनीकी सहयोग रहा सुरेंद्र कपूर, प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह। हुण अपने टियार दस्तस्य बड़का चाचू
1: कने केसरो जो दिया अनुमति।
0: अच्छा जी, जय हिंद।

0: संतान कर्तव्य से मुख न मोड़े, माँ बाप से प्यारा नाता जोड़े।
1: हिमाचल ने बनाई मिसाल नई, भरण पोषण अधिनियम लागू सही।
0: यदि संतान कर्तव्य ना निभाए, कानून वृद्धों को न्याय दिलाए।
1: उपमंडलाधिकारी के पास आवेदन, 5,000 रुपए तक भरण पोषण संरक्षण।
0: जानकारी लें, अधिकार जाने।
1: तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क ठाने।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नविता चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने एम्स चमियाना में अत्याधुनिक 3 टेस्ला MIR मशीन का किया शुभारंभ। कहा, सभी मेडिकल कॉलेजों में ऑटोमेशन टेस्टिंग लैब होगी स्थापित। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का आरोप, HRTC की बदहाली व जुगाड़ तंत्र का सहारा लेकर लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही सुक्खू सरकार। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा, सरकार उद्योगों को बढ़ावा देने व संतुलित औद्योगिक विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत। और मॉनसून की सक्रियता से राजधानी शिमला सहित कई इलाकों में रुक रुक कर वर्षा का क्रम जारी। आगामी 24 घंटों में राज्य के कई स्थानों पर भारी वर्षा का येलो अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज शिमला के चमियाना स्थित अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान में 3 टेस्ला MRI मशीन का शुभारंभ किया। इस सुविधा के शुरू होने से प्रदेश के मरीजों को अब गंभीर बीमारियों की स्टीक जांच के लिए निजी प्रयोगशालाओं या राज्य से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि पिछले 40 वर्ष से चल रही पुरानी व्यवस्था को बदलते हुए अत्याधुनिक सेवाओं को शुरू किया जा रहा है।
1: जो IGMC में 19 साल पुरानी MRI मशीन थी और जो CT स्कैन थे वो भी पुराने थे। चमियाना में MRI मशीन थी ही नहीं। हमने चमियाना, IGMC, टांडा और मंडी और हमीरपुर में MRI मशीन 3 टेस्ला जो दिल्ली एम्स में अभी लगी है उसको यहाँ लगाया है। अब जल्दी हम नेरचौक की MRI मशीन का शुभारंभ करेंगे।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले 3 महीनों में 125 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में विश्व स्तरीय ऑटोमेशन टेस्टिंग लैब स्थापित की जाएगी।
1: अगले 3 महीने में वर्ल्ड क्लास जो पूरी दुनिया में है उस ऑटोमेशन लैब को हम चमियाना में लगा रहे हैं, हम IGMC में लगा रहे हैं, सभी मेडिकल कॉलेज में लगा रहे हैं और तकरीबन ऑटोमेशन लैब

0: 125 करोड़ रुपया खर्च करने जा रहे हैं, जिसमें ह्यूमन टच बहुत कम होगा। ऑटोमेटिकली ही वो सारे टेस्ट एक ही उससे हो जाएंगे और एग्जैक्ट टेस्ट होंगे।
1: इस दौरान मुख्यमंत्री ने संस्थान के चिकित्सकों के साथ बैठक कर यहां की कार्यप्रणाली की समीक्षा भी की। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि संस्थान तक बेहतर आवागमन सुनिश्चित करने के लिए ई बस सेवाएं भी शुरू की जाएंगी। उन्होंने एम्स मोबाइल एप्लीकेशन का भी शुभारंभ किया। इस बीच मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में भारी बारिश के कारण हुए नुकसान की जमीनी स्तर की समीक्षा करने और राहत कार्यों में तेजी लाने के उद्देश्य से अगले सप्ताह राज्य आपदा प्रबंधन की बैठक बुलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में मुख्य सचिव को सभी उपायुक्तों से लगातार संपर्क सुनिश्चित करने को कहा गया है।
0: भारी बरसात से किन्नौर में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और जगह बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड्स हुए हैं। मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को बोला है कि आप सारे डिप्टी कमिश्नर से इन टच रहे और अगले हफ्ते हमारी इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट पर एक बड़ी बैठक होने वाली है।
1: उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार विद्यार्थियों को अपने ही क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण व रोजगारोन्मुखी व उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए आधारभूत ढांचे का विस्तार कर रही है। वे आज हरोली में प्रोफेसर सिमी अग्निहोत्री राजकीय महाविद्यालय के नवनिर्मित शैक्षणिक भवन का लोकार्पण करने के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि अगले शैक्षणिक सत्र से महाविद्यालय में एमएससी और लॉ की कक्षाएं शुरू की जाएंगी। उन्होंने महाविद्यालय में विद्यार्थियों के लिए नियमित एक्सपोजर विजिट और वार्षिक समारोह में अभिभावकों की सहभागिता सुनिश्चित करने पर बल दिया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया है कि एचआरटीसी की बदहाली व जुगाड़ तंत्र का सहारा लेकर सरकार लोगों की जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने बसों के खस्ताहाल संचालन और कर्मचारियों व पेंशनरों की अनदेखी पर चिंता जताते हुए कहा कि एचआरटीसी सेवा का पूरा ढांचा चरमरा गया है और ग्रामीण इलाकों में खटारा बसों को चलाया जा रहा है। जयराम ठाकुर ने निगम को लगातार हो रहे भारी घाटे के लिए कांग्रेस सरकार की गलत जनविरोधी नीतियों को ठहराया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि वातानुकूलित बंद कमरों में बैठकर केवल कागजी नीतियां बनाने और खोखले दावे करने से धरातल पर कभी कोई सुधार नहीं होता है। नेता प्रतिपक्ष ने सुक्खू सरकार से तुरंत बजट जारी कर टायरों और स्पेयर पार्ट्स की कमी को दूर करने, बंद पड़े बस रूटों को बहाल करने और कर्मचारियों व पेंशनरों की सभी लंबित मांगों को पूरा करने की मांग की है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि प्रदेश सरकार उद्योगों को बढ़ावा देने, निवेश आकर्षित करने और संतुलित औद्योगिक विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत है। सिरमौर जिला के कालांब में चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के पदाधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये बात कही। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि कालांब औद्योगिक क्षेत्र में विद्युत समस्या के समाधान के लिए 60 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में भूजल विभाग द्वारा 20 करोड़ की लागत से चेक डैम लगाए जा रहे हैं, जिससे यहां की जल समस्या में सुधार होगा। उद्योग मंत्री ने उद्योगपतियों द्वारा उठाई गई समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया। बैठक में विधायक अजय सोलंकी भी मौजूद रहे। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार खेल अधोसंरचना को सुदृढ़ बनाने व खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। वे आज शिमला जिला के जुब्बल क्षेत्र की कठासू पंचायत के बटाड़ गांव में नवयुवक मंडल द्वारा आयोजित वॉलीबॉल टूर्नामेंट के उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता कर रहे थे। शिक्षा मंत्री ने युवाओं को खेल गतिविधियों में हिस्सा लेकर नशे जैसी सामाजिक बुराई से दूर रहने का आह्वान किया। राज्य बिजली बोर्ड पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की एक बैठक आज नाहन में हुई, जिसमें पेंशन से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की गई। एसोसिएशन के महासचिव कमलेश पुंडीर ने बताया कि बैठक में पेंशनरों ने सरकार और विद्युत बोर्ड प्रबंधन से लंबित महंगाई भत्ते की किश्त जल्द जारी करने की मांग की। उन्होंने लंबित एरियर का 40% जारी किए जाने के फैसले का स्वागत करते हुए सरकार का आभार भी जताया। पेंशनरों ने उम्मीद जताई कि शेष बकाया राशि का भी सरकार जल्द भुगतान करेगी।
2: विशेष तौर पर बोर्ड मैनेजमेंट से हमारा आग्रह रहेगा, जैसे गवर्नमेंट ने 65 वर्ष के जो आयु पूरी कर चुके हैं उनको 40% एरियर रिलीज कर दिया, तो उसके लिए भी हम जो है सरकार का धन्यवाद करते हैं। और जो हमारे 15% DA है ड्यू है, उसका भी हम आग्रह करेंगे, उसका जो है कुछ न कुछ भाग जो है हमें 2-4

0: परसेंट जो भी है वो दें।
1: चंबा जिला की प्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा के सफल संचालन के लिए प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस यात्रा का आयोजन हर वर्ष श्री कृष्ण जन्माष्टमी से राधाष्टमी तक किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में देश भर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने बताया कि पिछले साल यात्रा के दौरान भारी बरसात से क्षतिग्रस्त हुए मणिमहेश ट्रैक को दुरुस्त करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस बार बाया कुगती मार्ग से श्रद्धालुओं की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, हालांकि यहां से प्राचीन परंपरा से आने वाले छड़ी यात्रा को ही अनुमति रहेगी।
2: पिछले वर्ष मुख्य रूप से हडसर से लेके तोश की घोट और धंचो का क्षेत्र है, वहां पे जो ट्रैक रूट था वो ऑलमोस्ट पूर्ण रूप से डैमेज हो चुका था, तो उसके लिए अब एक ऑल्टरनेट रूट पीडब्ल्यूडी के द्वारा बना लिया गया है। ऑलमोस्ट 90% वो वर्क कंप्लीट है। इसके बाद में मणिमहेश खड्ड जो आती है रास्ते भर में, उसके ऊपर ब्रिजेस की कंस्ट्रक्शन, उसके अंदर 4 ब्रिज बनने हैं जिसपे अभी जस्ट अभी काम चालू किया गया है। इसके साथ साथ जो होली से आपका ऑल्टरनेट रूट है कला रूट, उसके ऊपर भी रिपेयर वर्क्स फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ जो है वो स्टार्ट किए जा रहे हैं, उसको भी यात्रा शुरू होने से पहले ठीक कर दिया जाएगा।
1: प्रदेश में मॉनसून सक्रिय बना हुआ है और राजधानी शिमला सहित राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में आज वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी है। हालांकि विभिन्न स्थानों पर भूस्खलन से प्रभावित बिजली व पेयजल योजनाओं से सहित अवरुद्ध सड़कों को बहाल करने का कार्य जारी है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान 9 जिलों के कुछ स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक शोभित कटियार ने बताया कि सिरमौर, शिमला, कुल्लू, मंडी और सोलन जिलों में अगले 5 से 7 दिन तक मध्यम से भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने एम्स चमियाना में अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI मशीन का किया शुभारंभ। कहा, सभी मेडिकल कॉलेजों में ऑटोमेशन टेस्टिंग लैब होंगी स्थापित। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का आरोप, HRTC की बदहाली व जुगाड़ तंत्र का सहारा लेकर लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही सुक्खू सरकार। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा, सरकार उद्योगों को बढ़ावा देने व संतुलित औद्योगिक विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत। और मॉनसून की सक्रियता से राजधानी शिमला सहित कई इलाकों में रुक रुक कर वर्षा का क्रम जारी। आगामी 24 घंटों में राज्य के कई स्थानों पर भारी वर्षा का येलो अलर्ट। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।

0: अनुभव जिनके पास अपार, वृद्ध हैं समाज की असली धार।
1: सीखें युवा दे सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान।
2: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद,
1: अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

प्रादेशिक समाचार अभी आप आकाशवाणी के शिमला, हमीरपुर, धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ आकाशवाणी एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़, डीटीएच तथा मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। अब रोजगार समाचार सुनिए। कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी सोलन, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश से प्राप्त सूचना के अनुसार बाल विकास परियोजना सोलन, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश के केंद्रों में अथवा आंगनबाड़ी सह स्थापित क्रैच केंद्रों में क्रैच कार्यकर्ताओं तथा क्रैच सहायिकाओं के पदों को भरने हेतु इच्छुक पात्र स्थानीय महिलाओं से सादे कागज पर आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। क्रैच कार्यकर्ताओं और क्रैच सहायिकाओं को प्रतिमाह सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित दर पर मानदेय देय होगा। वर्तमान में मानदेय की यह दर क्रैच कार्यकर्ताओं के लिए 5,500 रुपये प्रतिमाह

0: वह क्रैच सहायिकाओं के लिए 3,000 रुपये प्रति माह है। इन पदों के लिए आवश्यक शर्तें इस प्रकार से हैं। इन पदों हेतु केवल महिला उम्मीदवार ही पात्र हैं। आवेदक की आयु, पद विज्ञापित करने की तिथि अर्थात 24 जून 2026 के दिन, 18 वर्ष से कम और 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थी संबंधित पालना या क्रैच केंद्र अथवा आंगनवाड़ी सह क्रैच केंद्र के संग्रहण क्षेत्र अर्थात फीडिंग एरिया की निवासी हो, वह उसका परिवार संबंधित पालना या क्रैच केंद्र अथवा आंगनवाड़ी सह क्रैच केंद्र के परिवार सर्वेक्षण रजिस्टर में दर्ज परिवारों की सूची में शामिल हो तथा परिवार में उसका नाम भी दर्ज हो। आवेदक के परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 50,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा आय प्रमाण पत्र तहसीलदार या नायब तहसीलदार अथवा कार्यकारी दंडाधिकारी द्वारा जारी किया गया होना चाहिए। क्रैच कार्यकर्ताओं के पद हेतु आवेदक का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा संस्थान से न्यूनतम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। क्रैच सहायिका के पद हेतु आवेदक ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा संस्थान से न्यूनतम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो। इन पदों को भरने हेतु प्रक्रिया सूचना जारी होने की तिथि से प्रारंभ हो जाएगी तथा इच्छुक उम्मीदवार अपना आवेदन सादे कागज पर अपने पूर्ण विवरण के साथ दिनांक 14 जुलाई 2026 तक शाम 5 बजे तक जमा करवा सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि आपको एक बार फिर बता दें, 14 जुलाई सन 2026 शाम 5 बजे तक। रोजगार समाचार समाप्त हुए।
1: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं, आइए सुनते हैं विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस। सबरस कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं गुलाम अली की आवाज में गाए गजल के साथ।

मिलना था इत्तेफाक, बिछड़ना नसीब था। मिलना था इत्तेफाक, बिछड़ना नसीब था। वो उतनी दूर हो गया जितना करीब था। मैं उसको देखने को तरसती ही रह गई। मैं उसको देखने को तरसती ही रह गई। जिस शख्स की हथेली पे मेरा नसीब था।

0: बडाली ब्रदर्स की आवाज़ में अभी आपने सुना ये कलाम। अब हम आपको सुनवा रहे हैं प्रकाश कौर, सुरिंदर कौर और आशा सिंह मस्ताना की आवाज़ों में ये पंजाबी लोकगीत।
1: तैनू मिलने दा चा माया करके बहाना कोई

विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। अब हम आपको सुनवा रहे हैं गुरदास मान की आवाज़ में ये पंजाबी गीत।

गुरदास मान की आवाज़ में गाए इस पंजाबी गीत के साथ ही आज का सबरस कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं देशभक्ति गीत।

0: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। अब आकाशवाणी दिल्ली से समाचार संध्या रिले की जाएगी और रात्रि 9 बजे अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: कहा, दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते से भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर तेजी से बढ़ेगा। वियतनाम में नाव दुर्घटना में 15 भारतीयों की मौत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने समान नागरिक संहिता के मसौदा विधेयक की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान। फीफा फुटबॉल विश्व कप में नॉर्वे और इंग्लैंड तथा मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला। और तीरंदाजी विश्व कप के 4थे चरण में भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के सामने अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी ऐतिहासिक 2 दिवसीय न्यूजीलैंड यात्रा पूरी कर भारत के लिए रवाना हो गए हैं। 4 दशकों से अधिक समय बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा रही जिसने दोनों देशों के संबंधों को नई गति दी। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच व्यापक वार्ता हुई। दोनों नेताओं की मौजूदगी में रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन तथा डेयरी एवं पशुपालन सहित 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को न्यूजीलैंड का विश्वसनीय मित्र बताते हुए भारतीय समुदाय के योगदान और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह यात्रा भारत न्यूजीलैंड संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत है।
3: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है, पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूँ हम सफल होंगे।
2: मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसके अध्यक्ष होंगे। मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत रॉय भी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जाँच के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी ने कहा है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। गोवा में मीडिया से बातचीत में श्री चौधरी ने कहा कि सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाली 41 सदस्यीय समिति सरकारों, राजनीतिक दलों, संवैधानिक विशेषज्ञों, नागरिक समाज और अन्य हितधारकों के विचार जानने के लिए राज्यों का दौरा कर रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट के आज वियतनाम के फुक्वोक द्वीप के पास पलट जाने से 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि मृतकों में 13 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मृतकों की सूची साझा करते हुए कहा कि ये नाम वियतनामी अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। दूतावास के अनुसार मृतकों में से 10 तमिलनाडु से, 3 आंध्र प्रदेश से और 2 केरलम से थे। नाव में

0: 32 भारतीय पर्यटकों, 3 चालक दल के सदस्यों और 1 परिचारक सहित कुल 36 लोग सवार थे। 17 यात्रियों और चालक दल के 4 सदस्यों सहित 21 लोगों को बचा लिया गया और अस्पतालों में भर्ती कराया गया। 2 जीवित बचे लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है और उन्हें गहन चिकित्सा देखभाल दी जा रही है। एक रिपोर्ट।
1: 32 भारतीय पर्यटकों और 4 चालक दल के सदस्यों को ले जा रही यह नाव होन में रूत नोगोई द्वीप से लगभग 400 मीटर दूर पलट गई, जिसके बाद बचाव अभियान शुरू किया गया। हनोई स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि खोज और बचाव अभियान जारी है। कुछ घंटे पहले हुई इस दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। वहीं प्रभावित परिवारों को जानकारी और सहायता प्रदान करने के लिए हो ची मिन्ह सिटी स्थित भारतीय दूतावास में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। यहां 8-4-3-6-2-8-1-7-9-3-0-8-4-9-1-5-5-2-3-7-1-4 और 8-4-3-3-4-5-2-0-4-1-4 नंबरों से संपर्क किया जा सकता है। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिकों के साथ हुई इस दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। अपने संदेश में उपराष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनों को खोने वाले परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने व्यक्तित्व निर्माण में पुस्तकालयों की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख करते हुए युवा पीढ़ी से पुस्तकालयों से जुड़ने की अपील की है। आज नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्घाटन करते हुए उन्होंने राष्ट्र निर्माण में पुस्तकालयों की भूमिका का उल्लेख किया और कहा कि वे आधुनिक शिक्षा के साथ साथ जन समुदाय में देश की संस्कृति और ज्ञान के प्रसार का सशक्त माध्यम हैं। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय में 32,000 से अधिक पुस्तकों का संग्रह है। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय में शोधकर्ताओं के लिए समर्पित सुविधाएं, एक आधुनिक बहुउद्देशीय सभागार, समकालीन पाठन क्षेत्र, बाल क्षेत्र, एक शोध केंद्र और 1 करोड़ ऑनलाइन पुस्तकों तक पहुंच प्रदान करने वाला एक ई पुस्तकालय मौजूद है। पुस्तकालय में हर स्थान पर मुफ्त वाईफाई उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि कई मॉनिटर भी लगाए गए हैं, जिससे आगंतुक अध्ययन के दौरान नोट्स ले सकते हैं, सामग्री डाउनलोड कर सकते हैं तथा अपने विचारों को और विकसित कर सकते हैं। पुस्तकालय अत्याधुनिक RFID आधारित पुस्तक प्रबंधन प्रणाली से सुसज्जित है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना ने देश भर में 2 लाख से ज्यादा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को ऋण मंजूर करने का अहम पड़ाव पार कर लिया है। योजना के अंतर्गत 20,300 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ है और लगभग 11 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। नई दिल्ली में आज विशेष कार्यक्रम में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि ये उपलब्धि भारत की खाद्य प्रसंस्करण विकास यात्रा के अगले चरण के लिए मजबूत आधार है। श्री पासवान ने योजना के तहत मिलने वाली सीड कैपिटल की सहायता का भी उल्लेख किया। इसके माध्यम से 4,18,000 से ज्यादा स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की मदद की गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के नंदीगामा क्षेत्र में स्थित मेधा रेल कोच कलपुर्जा निर्माण सुविधा स्थल का निरीक्षण किया। 375 एकड़ भूभाग में फैली ये विशाल औद्योगिक इकाई रेलवे के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति को प्रदर्शित करती है। अपनी यात्रा के दौरान श्री वैष्णव ने मेक इन इंडिया पहल के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में निजी क्षेत्र के उद्यमों को बढ़ावा देने संबंधी सरकार की वचनबद्धता पर बल दिया। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वैच्छिक परिवार नियोजन, जागरूक निर्णय और स्वस्थ परिवार समावेशी तथा सतत विकास की मजबूत नींव है। सोशल मीडिया संदेश में उन्होंने कहा कि इस वर्ष का विषय है माँ और बच्चे के कल्याण के लिए गर्भधारण के बीच स्वस्थ अंतराल और नियोजित पितृत्व। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने विश्व जनसंख्या दिवस 2026 के अवसर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सर्वोत्तम पद्धतियों पर मासिक वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किया है। इस पहल का उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच स्वास्थ्य सेवा नवाचारों को साझा करना और उनका विस्तार करना है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज महाराष्ट्र के नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने बताया कि बैठक में वैकल्पिक जैव ईंधन तथा प्रदूषण मुक्त प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सड़क, रेल,

0: विमानन और जल परिवहन को कार्बन न्यूट्रल बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि सहयोग को और मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 भी अपनाई गई।
1: ट्रांसपोर्ट सेक्टर में विशेष रूप से हमारी रोड सेक्टर, रेलवे, जलमार्ग और एविएशन एक क्षेत्र में कार्बन न्यूट्रल हम कैसे बने, अल्टरनेटिव और बायोफ्यूल का भी उपयोग कैसे करें और प्रदूषण से तो मुक्ति मिलेगी भी और उसके साथ साथ जो नई नई टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन है, रिसर्च है, अलग अलग ब्रिक्स देशों में एक दूसरे में कैसे कोऑपरेशन करें, कोऑर्डिनेशन निर्माण करें, इसके बारे में एक रेजोल्यूशन पास हुआ है और उसमें आगे की नीति भी तय हुई है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिनों में देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इन इलाकों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ओडिशा शामिल हैं। इस बीच विभाग ने कल असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम और बिहार में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2-3 दिनों में बारिश वाले इलाकों के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आने की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश में कल लू की स्थिति हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के फिर से सक्रिय होने के बाद महाराष्ट्र में खरीफ फसल की बुआई में तेजी आई है। कृषि आयुक्त कार्यालय के अनुसार 6.51 हेक्टेयर पर बुआई पूरी हो चुकी है। इस बुवाई में 7 जुलाई तक गन्ने को छोड़कर राज्य के 14.44 करोड़ हेक्टेयर औसत क्षेत्र के 45% हिस्से को सम्मिलित किया गया है। गन्ने की खेती सहित 6.58 करोड़ हेक्टेयर में बुवाई और रोपाई का काम पूरा हो चुका है। ये कुल क्षेत्र का 42% है। तूफान बावी के चीन के पूर्वी तट की ओर बढ़ने के कारण चीन में एहतियातन 6 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। ये तूफान जापान के साकिशिमा द्वीपों और उत्तरी ताइवान से गुजरने के बाद अब चीन के लिए खतरा बना हुआ है। मेघालय अनानास महोत्सव 2026 का चौथा संस्करण नई दिल्ली के दिल्ली हाट में शुरू हो गया है। इसमें बाजार संपर्क को बढ़ावा देने के लिए राज्य के अनानास उत्पादकों को प्रदर्शित किया जा रहा है। और अब खेल खबरें। फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। दूसरे मुकाबले में कल सुबह 6:30 बजे मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। फ्रांस और स्पेन पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नम, प्रीतिका प्रदीप और चिकिता तनिपार्थी की टुकड़ी ने आज तीरंदाजी विश्व कप के चौथे चरण में रजत पदक अपने नाम किया। टीम को महिला कंपाउंड टीम स्पर्धा के फाइनल में कोलंबिया से हार का सामना करना पड़ा। वहीं प्रीतिका प्रदीप ने व्यक्तिगत महिला कंपाउंड में कांस्य पदक जीता। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में चेकिया की कैरोलिना मुखोवा और लिंडा नोस्कोवा आमने सामने हैं। वहीं पुरुष डबल्स के फाइनल में ब्रिटेन के हेनरी पैटन और फिनलैंड के हैरी हेलियावारा ने क्रोएशिया के मटे पाविक और अल साल्वाडोर के मार्सेलो अरेवालो की जोड़ी को 7-6, 7-6 से हराकर पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम किया है। भारत ने इंग्लैंड के साथ 5 T20 मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला साउथहैम्पटन में जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 16 ओवर में 1 विकेट पर 210 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड ने श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त हासिल कर रखी है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम और इंग्लैंड के बीच एकमात्र टेस्ट मैच लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर खेला जा रहा है। दूसरे दिन आज भारत ने अपनी दूसरी पारी में ताज़ा समाचार मिलने तक बिना विकेट गंवाए 42 रन बना लिए हैं। इससे पहले इंग्लैंड की पहली पारी 170 रन पर सिमट गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न करने के बाद स्वदेश रवाना। कहा, दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते से भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर तेजी से बढ़ेगा। वियतनाम में नाव दुर्घटना में 15 भारतीयों की मौत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने समान नागरिक संहिता के मसौदा विधेयक की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में नॉर्वे और इंग्लैंड तथा

0: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 9:15 हुए हैं। अब आकाशवाणी शिमला से कार्यक्रम हिमदर्शन रिले किया जाएगा।
1: श्रोताओं नमस्कार। साप्ताहिक समाचार डायरी हिमदर्शन के साथ मैं ज्ञान ठाकुर। इस अंक में हम आपको जानकारी देंगे इस सप्ताह हुई मुख्य गतिविधियों के बारे में। पहले इस सप्ताह की मुख्य सुर्खियां। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, प्रदेश के समग्र विकास में ग्रामीण विकास व पंचायतीराज विभाग की अहम भूमिका। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा, प्रदेश में CBSE से संबद्ध सरकारी स्कूलों के लिए 3,400 से अधिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जारी। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान के अनुसार, अवैध खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही सरकार, जुलाई अगस्त में खनन पर पूर्ण प्रतिबंध। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर का आरोप, अनुभवहीनता व गलत नीतियों के कारण सुक्खू सरकार ने हिमाचल को 2 दशक पीछे धकेला। और मॉनसून की सक्रियता से प्रदेश के अधिकांश भागों में वर्षा जारी, नदी नालों का जलस्तर बढ़ा, लोगों को सतर्क रहने की सलाह। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार ग्रामीण विकास व पंचायतीराज विभाग को मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। शिमला में विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश के समग्र विकास में ग्रामीण विकास व पंचायतीराज विभाग की अहम भूमिका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में निर्माणाधीन पंचायत घरों को पूरा करने के लिए सरकार 30 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाएगी। उन्होंने अधिकारियों को विभिन्न योजनाओं का तेजी से क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि पात्र लोगों को समय पर इनका लाभ मिल सके। ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों के बेहतर विपणन के लिए शिमला में हिमाचल हॉट का निर्माण किया जा रहा है। बैठक में ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्यूजीलैंड दौरे के दौरान संभावित ट्रेड डील को लेकर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों का स्वागत है, लेकिन इनमें हिमाचल के बागवानों और किसानों के हितों की हर हाल में रक्षा होनी चाहिए। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि आयात शुल्क घटाकर पहले ही कम कर दिया गया है, जिसे और नहीं घटाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आयात शुल्क में कटौती का सीधा असर प्रदेश के सेब उत्पादकों और किसानों पर पड़ सकता है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि ऐसे सभी मामलों पर गंभीर मंथन की जरूरत है, और जब भी प्रदेश के किसानों और बागवानों के हित प्रभावित होंगे, कांग्रेस सरकार उनकी आवाज मजबूती से उठाएगी और उनके हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेगी।
2: हम चाहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड डील्स होनी चाहिए, उसमें कोई दोराय नहीं है। यू के साथ ऑलरेडी हो चुकी है, वैसे ही यूनाइटेड किंगडम के साथ भी होनी चाहिए, अमेरिका के साथ भी होनी चाहिए, सभी मुल्कों के साथ होनी चाहिए, उसमें कोई दोराय नहीं है। मगर उसमें हिमाचल के बागवान, हिमाचल के किसान के जो हित है उनको सुरक्षित रखना, ये हमारा उसमें दायित्व बनता है। चाहे वो स्टोन फ्रूट्स है, चाहे वो कल फ्रूट्स है, चाहे वो डेयरी प्रोडक्ट्स है, हर चीज में जहाँ से भी इसका इम्पोर्ट होता है या जहाँ से भी हिमाचल उसको और राज्यों में भेज रहा है, उसमें अगर बाहर से उसमें इम्पोर्ट ड्यूटी को कम किया जाएगा तो स्वाभाविक है कि हिमाचल के बागवान को उसका भुगतान करना पड़ेगा। तो इन सब चीजों के ऊपर गहर चिंतन और मंथन करने की आवश्यकता है।
1: शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में CBSE से संबद्ध सरकारी विद्यालयों के लिए 3,468 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया प्रगति पर है। शिमला में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये बात कही। शिक्षा मंत्री ने कहा कि 158 विद्यालयों को CBSE पाठ्यक्रम की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिनमें से 146 विद्यालयों को CBSE की संबद्धता प्राप्त हो चुकी है।

0: रोहित ठाकुर ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2022-23 से 2024-25 के दौरान 9,359 विद्यार्थियों को डॉक्टर वाईएस परमार डिजिटल विद्यार्थी योजना के तहत टैबलेट प्रदान किए गए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला से वर्चुअल माध्यम से धर्मशाला में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के नए कार्यालय का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस कार्यालय के धर्मशाला में खुलने से कांगड़ा सहित आसपास के जिलों के लोगों को अब शिमला नहीं जाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने कांगड़ा जिले को प्रदेश की पर्यटन राजधानी घोषित किया है और इसी दिशा में कई सरकारी कार्यालयों को कांगड़ा स्थानांतरित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भी अन्य सरकारी कार्यालयों को कांगड़ा जिले में स्थानांतरित करने की योजना है।
1: धर्मशाला हमारी पर्यटन राजधानी के रूप में हमने घोषित किया है। मतलब यहाँ कुछ ऑफिस जाएंगे, काफी बिल्डिंगें यहाँ खाली पड़ी है, तो यहाँ के लोगों के रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे और यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति में भी मजबूती आएगी। तो अभी काफी बिल्डिंगें यहाँ खाली है और मेरा तो विचार है कि कुछ और ऑफिसों को भी यहाँ आने वाले वक्त में शिफ्ट किया जाए।
0: इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला से ही मंडी चंडीगढ़ और कुल्लू मंडी चंडीगढ़ के बीच प्रतिदिन चलने वाली हेलीकॉप्टर सेवाओं का भी वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। मंडी चंडीगढ़ हेलीकॉप्टर सेवा केंद्र सरकार की क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के तहत संचालित की जाएगी, जबकि कुल्लू मंडी चंडीगढ़ के लिए हेरिटेज एविएशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा गैर RCS मॉडल के अंतर्गत इस सेवा का संचालन किया जाएगा। ये सेवाएं नवनिर्मित कंगनीधार हेलीपोर्ट से संचालित होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सेवाओं से यात्रा समय में उल्लेखनीय कमी आएगी, आपातकालीन सेवाओं की क्षमता मजबूत होगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलने सहित स्थानीय निवासियों और पर्यटकों को बेहतर सुविधा मिलेगी।
2: मंडी वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंडी के लिए ये एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि मंडी से चंडीगढ़ की डायरेक्ट फ्लाइट आपको हेलीकॉप्टर के रूप में उपलब्ध करवाई जा रही है। निश्चित रूप से एयर कनेक्टिविटी से जोड़ना प्रदेश के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। हमारा ये प्रयास है कि सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में हमारे हेलीपोर्ट्स बने।
0: उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि राज्य सरकार अवैध खनन के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। शिमला में उन्होंने कहा कि प्रदेश में जहां भी अवैध खनन की शिकायतें आती हैं, वहां संबंधित विभागों की जिम्मेदारी तय की जाती है। उद्योग मंत्री ने स्पष्ट किया कि सितंबर माह तक खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लागू है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।
3: इलीगल माइनिंग हिमाचल प्रदेश के जिस मर्जी कोने में होगी, सख्त एडमिनिस्ट्रेशन को, चाहे माइनिंग डिपार्टमेंट है चाहे पुलिस डिपार्टमेंट है, उनको सख्त हिदायत दी गई है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इस लीगल माइनिंग में चाहे किसी भी राजनीतिक दल का, चाहे सत्ता दल का कोई व्यक्ति, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। प्रदेश में मुहिम चलाई गई है, चाहे वो सिरमौर जिला है, चाहे सोलन जिला है, चाहे ऊना जिला है, चाहे नूरपुर जिला है। 2 महीने जुलाई और अगस्त में माइनिंग बंद कर दिया, सितंबर के महीने में जाकर जो है अब माइनिंग खुलेगी।
0: सांसद सुरेश कश्यप ने अधिकारियों को केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का क्रियान्वयन गंभीरता, पारदर्शिता और समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए हैं। वे नाहन में जिला विकास समन्वय व निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। सुरेश कश्यप ने कहा कि केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाना है। इस दौरान उन्होंने मॉनसून सीजन के दौरान संबंधित विभागों को किसी भी आपदा से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहने के निर्देश दिए।
4: भारत सरकार की जो योजना है, अच्छी प्रोग्रेस हमको देखने को मिली। कुल मिलाकर लक्ष्य यही है कि केंद्र सरकार के द्वारा जिस प्रकार से ये लक्ष्य रखा गया है कि जो अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति उस तक भी इन योजनाओं का लाभ मिल सके, उस दिशा में हमने अधिकारियों को ये भी निर्देशित किया है कि गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए।
0: रेणुका बांध विस्थापित संघर्ष समिति ने HPCL प्रबंधन से बेघर परिवारों को एक मुश्त मुआवजा देने की मांग की है ताकि प्रभावित परिवारों को राहत मिल सके। समिति के प्रेस सचिव योगेश ठाकुर ने HPCL के प्रबंध निदेशक से मुलाकात कर बेघर परिवारों से जुड़े मुद्दों को उठाया। उन्होंने बताया कि प्रबंध निदेशक ने आश्वासन दिया है कि हाउसलेस परिवारों को 75% मुआवजा एक मुश्त देने का प्रयास किया जाएगा।
5: हाउसलेस जो परिवार है सबको जो है एक मुश्त में पैसा दे दो ताकि गरीब लोग भी जो है अपना मकान लगा सके। MD साहब ने जो है हमें ये आश्वासन दिया है, जिन्होंने घर नहीं बनाए हैं उनको 75% जो है एक मुश्त में पैसा दिया जाएगा, जो हमारे को 28 लाख मिलना है।
0: विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा है कि अनुभवहीनता और गलत नीतियों के कारण प्रदेश की सुक्खू सरकार ने हिमाचल को 2 दशक पीछे धकेल दिया है। शिमला में एक TV चैनल के कॉन्क्लेव में उन्होंने

0: आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार में मंत्रियों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है और मुख्यमंत्री की हठधर्मिता वाली कार्यशैली से उनकी विश्वसनीयता पूरी तरह खत्म हो चुकी है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में विकास पूरी तरह से ठप है और 2000 से अधिक संस्थान बंद पड़े हैं। उन्होंने कहा कि सुबह बंद किए गए कॉलेजों को विधायकों के दबाव में शाम तक दोबारा खोलने के आदेश जारी कर व्यवस्था का मजाक बनाया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कांग्रेस सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी है और आर्थिक कुप्रबंधन से प्रदेश को कर्ज के बोझ तले दबाया जा रहा है। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा है कि कांगड़ा जिला के ढगवार में निर्माणाधीन अत्याधुनिक दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र किसानों की आय बढ़ाने का आधार बनेगा। वे धर्मशाला में इस संयंत्र के निर्माण कार्य व आधारभूत सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। कृषि मंत्री ने कहा कि परियोजना की नियमित अंतराल पर समीक्षा की जा रही है ताकि सभी कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरे किए जा सकें।
1: ढगवार का मिल्क प्लांट है, उसकी एक रिव्यू मीटिंग जो थी हमने रखी है, और जो भी हमारे ऑफिसर साहिबान हैं और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट अथॉरिटीज के जो भी ऑफिसर्स हैं उनके साथ इंटरेक्शंस करके जो टाइमलाइन हमने इस प्रोजेक्ट की एक्सीक्यूशन दी है उसके ऊपर चर्चा की गई है। जो हमने एक टाइमलाइन इनको दिया है कि इसको आपने प्रोजेक्ट को जो है वो एक्सीक्यूट करना है, और जो बेसिक अमेनिटीज हैं जिसमें ज्यादा करके पानी है, बिजली है और सिविल वर्क है, इसको बड़ी जल्दी पूरा करना है।
0: मॉनसून की सक्रियता के चलते राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में रुक रुक कर वर्षा का क्रम जारी है। इस वर्षा से प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। किन्नौर जिला की लीपा पंचायत के पेजर नाले में आई भीषण बाढ़ से लीपा गांव को जोड़ने वाला पुल जलमग्न होने से आसपास कई घरों को भी खतरा उत्पन्न हो गया है और लीपा गांव का अन्य क्षेत्रों से संपर्क पूरी तरह कट गया है। जिले के कूपा गांव के ऊपर पहाड़ी क्षेत्र से पत्थर गिरने की घटना के बाद प्रशासन ने एहतियात के तौर पर गांव के 13 लोगों को जीरा फार्म में सुरक्षित ठहराया है। उधर सिरमौर जिले में लगातार हो रही भारी वर्षा के चलते दर्जनों सड़कें बंद हो गई हैं और बड़ी संख्या में बिजली ट्रांसफार्मर ठप होने से कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 7 जिलों शिमला, सिरमौर, कुल्लू, मंडी, बिलासपुर, कांगड़ा और चंबा के कुछ क्षेत्रों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं से वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव और संगठन की मजबूती के लिए आपसी तालमेल व अनुशासन से कार्य करने का आह्वान किया है। रजनी पाटिल की अध्यक्षता में शिमला में कांग्रेस की 3 दिनों तक मंथन बैठक आयोजित की गई, जिसमें संगठन को मजबूत बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
2: लोगों के कुछ गिले शिकवे थे, हमारी बात नहीं मानी जाती है, जो भी कुछ है उसको हम सब सीएम के सामने बैठ के सबसे बात करवाई, सब मंत्रियों को बोला तो वो हमने सबसे बात। अभी धीरे धीरे हमारे वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, हमारे सब कमिटीज बन रही है और एक बार पूरा हो जाएगा तो हम सरकार के साथ उसका तालमेल रखेंगे और सरकार के साथ मिलकर सब काम करेंगे। अनुशासन तो संगठन में होना चाहिए।
0: उधर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कोर ग्रुप की एक बैठक शिमला स्थित पार्टी कार्यालय दीप कमल में आयोजित की गई। बैठक में भाजपा के सभी वरिष्ठ नेता व सदस्य मौजूद रहे। बैठक के बाद पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने बताया कि कोर ग्रुप ने प्रदेश की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों, हाल ही में संपन्न हुए पंचायती राज व शहरी निकाय चुनावों के परिणामों और आगामी संगठनात्मक मुद्दों की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई।
3: 3.5-4 साल के कांग्रेस सरकार के जो जन विरोधी काम, जनता के खिलाफ जो काम किए उनको लेकर के पार्टी अगले दिनों में जन आंदोलन खड़े करे। कांग्रेस ने गरीब का राशन महंगा कर दिया, गारंटियों के नाम पर हिमाचल प्रदेश की जनता को ठगा, माफिया राज लूट का अड्डा बन गया, कानून व्यवस्था तार तार हो गई, हिमाचल तरह तरह से भ्रष्टाचार के जाल में फंस गया।
0: इसी के साथ हिमदर्शन का ये अंक समाप्त हुआ। प्रस्तुतकर्ता रितेश कपूर और प्रवक्ता ज्ञान ठाकुर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी की अखिल भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। वर्षा भारत के लिए केवल एक ऋतु नहीं बल्कि नवजीवन का उत्सव है। बादलों का आगमन, धरती की सोंधी गंध, खेतों की हरियाली और लोकगीतों की स्वर लहरियां, ये सब मिलकर हमारी सांस्कृतिक स्मृति का हिस्सा बनते हैं। भारतीय मनीषा ने जल को सदैव जीवन का मूल माना है। ऋग्वेद का ये मंत्र कहता है, आपो हिष्ठा मयो भुवा, यानी जल ही सुख, समृद्धि और कल्याण का स्रोत है। यही कारण है कि भारत ने जल का केवल उपयोग नहीं किया, उसका सम्मान भी किया। कहीं बावड़ियां बनी, कहीं तालाब, कहीं कुंड, तो कहीं मंदिरों के सरोवर। वर्षा की हर बूंद को संजोना हमारी जीवन पद्धति का एक हिस्सा ही था। आज परिस्थितियां थोड़ी बदल रही हैं, तो कहना चाहिए बदल चुकी हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा का स्वरूप भी बदला। कहीं अतिवृष्टि, कहीं अल्पवृष्टि और कई क्षेत्रों में लगातार गिरता भूजल स्तर, ये संकेत हमें सचेत करते हैं कि जल संरक्षण अब विकल्प नहीं, आवश्यकता है। इसी सोच को जन भागीदारी का स्वरूप देने के उद्देश्य से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर कैच द रेन अभियान प्रारंभ किया गया। इसका संदेश है, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, यानी जहां भी वर्षा हो, जब भी वर्षा हो, उसकी प्रत्येक बूंद को सहेजिए। प्रधानमंत्री ने मन की बात के अनेक संस्करणों में भी जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आग्रह किया है। उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों में तालाबों के पुनर्जीवन, वर्षा जल संचयन और सामुदायिक प्रयासों के प्रेरक उदाहरणों का उल्लेख करते हुए कहा है कि जल संरक्षण तभी सफल होगा जब ये शासन का नहीं समाज का संकल्प बने। ये अभियान वस्तुतः आधुनिक भारत को उसकी ही प्राचीन जल संस्कृति से जोड़ने का एक अद्भुत प्रयास है। बारिश की हर बूंद प्रकृति का उपहार है। उसे सहेजना केवल पर्यावरण की रक्षा नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति के उस मूल भाव का सम्मान भी है जो हमें सिखाता है कि प्रकृति से जितना लें उतना उसे लौटाएं भी। प्रकृति के प्रति श्रद्धा भारतीय संस्कृति को उसकी अनोखी अनूठी पहचान देती है। यही सांस्कृतिक चेतना हमारे पर्वों में भी दिखाई देती है, हमारे उत्सवों में भी दिखाई देती है, जहां आस्था और लोक जीवन एकाकार हो जाते हैं।
1: यो यो यो यो यो नथो चोड़ी नोंदी।
0: इसी क्रम में पुरी की विश्व विख्यात श्री जगन्नाथ रथ यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि भारतीय सांस्कृतिक समावेशिता, लोक आस्था और शिल्प परंपरा का एक अद्भुत उत्सव है। और इसी पर केंद्रित है हमारी अगली प्रस्तुति नित्य नीलाचल।

जैसा शरीर वैसा देव, अर्थात शरीर के लिए जो आवश्यक है देव पूजन भी उसी विधि के अनुसार होना चाहिए। इस भावपूर्ण विचारधारा का प्रतीक है उड़ीसा के पुरी में अनुष्ठित हो रही यह नवदिनात्मक यात्रा। भक्त और भगवान के बीच सारे व्यवधान को तोड़कर प्रभु बलभद्र, देवी सुभद्रा और प्रभु श्री जगन्नाथ रथारूढ़ हो

0: कर रत्नवेदी को छोड़कर पूरी बड़दांड में यात्रा करते हैं। श्री गुंडीचा मंदिर में 7 दिन रहकर बाहुड़ा यात्रा में भाई बहन श्री मंदिर को वापस आते हैं। यह यात्रा भाव की यात्रा है, समन्वय की यात्रा है। कठोपनिषद में कहा गया है, आत्मानम रथिनम विधि शरीरम रथमेव तु। रथ यात्रा की महानता के बारे में गवेषक अशोक पांडे कहते हैं,
1: भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा प्रतिवर्ष आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को बड़े आकार में अनुष्ठित होती है। प्रत्येक वर्ष सरस्वती पूजा यानी वसंत पंचमी से काष्ठ संग्रह का कार्य शुरू होता है। रथ निर्माण में लगभग 205 प्रकार के सेवायत कार्य करते हैं।
0: साल में एक बार अनुष्ठित इस रथ यात्रा की प्रस्तुति बहुत पहले से होती है। श्रीनगर के सम्मुख स्थित रथ खला में पवित्र अक्षय तृतीया से ही रथ का कार्य आरंभ हो जाता है। इसमें विश्वकर्मा महाराणा, रूपकार, चित्रकार, भोई सेवक, करतिया सेवक, ताम्र विशोई, ओझा महाराणा और अन्य सेवक हिस्सा लेते हैं। रथ निर्माण के परंपरा के ऊपर प्रकाश डालते हुए पुरी के मुख्य विश्वकर्मा सेवक विजय कुमार महापात्रा जी का कहना है,
2: मैं नंदीघोष रथ का मुख्य महाराणा सेवक हूँ। 1971 से हम एक कार्य कर रहा हूँ। भगवान जी जो रथ का काम होता है ना, ये हर साल बैसाख महीने अक्षय तृतीया तिथि से शुरू होता है और आषाढ़ श्री गुंडीचा के पहला दिन नेत्र उत्सव के दिन समाप्त हो जाता है। तीनों रथ में सबसे प्रथम का लकड़ी है फांसी। फांसी का लकड़ी इस्तेमाल किया जाता है। फांसी, इसके बाद ढोरा और एक लकड़ी है, इसका नाम है असन। फांसी, ढोरा, असन की लकड़ी में ये तीनों रथ निर्माण किया जाता है और मही सिमली का लकड़ी में ये निर्माण किया जाता है। हमारा विश्वकर्मा के साथ सहयोग करने के लिए अर्थात लकड़ी को उठाने के लिए भोई सेवक है। इसके बाद लोहे का काम करने के लिए कमार सेवक है और चित्र का काम करने के लिए चित्रकार सेवक है, रूपकार सेवक है, लकड़ी में रूप देता है। महाराणा, भोई, कमार, रूपकार, चित्रकार सेवक के द्वारा यही रथ का कार्य संपन्न होता है। अक्षय तृतीया तिथि से जब भगवान जगन्नाथ जी का रथ का कार्य शुभ दिया जाता है, इसके बाद रथ का काम शुरू होता है। इसके बाद ये जो नृसिंह चतुर्दशी तिथि आता है और एक काम जोड़ दिया जाता है, इसका नाम है गुज्जर। जगन्नाथ जी का चंदन यात्रा होता है ना अक्षय तृतीया तिथि से, जो भोर तिथि आएगा चंदन यात्रा के आखिरी दिन, आखिरी दिन में दोनों पहियों में एक अक्ष संजोग किया जाता है। प्रभु के आज्ञामण आने से बाद हर कार्य यहाँ पर प्रभु के आज्ञा से होता है। अक्षय तृतीया तिथि से प्रभु आज्ञा देता है, मेरा रथ को शुभारंभ करो। इसके बाद रथ का कार्य शुभ किया जाता है। भौरी तिथि में प्रभु आज्ञा देंगे, मेरा रथ को खड़ा करो। इसके बाद दोनों पहिया में एक अक्ष संजोग किया जाता है। नेत्रोत्सव तिथि से प्रभु आज्ञा देंगे, मेरा रथ को मेरे दरवाजे पर लाओ। आज्ञा माल आने से बाद खींच के ले जाएंगे प्रभु दरवाजे पर। जगन्नाथ जी का रथ सबसे बड़ा है और बलभद्र जी का रथ जरा छोटा है, सुभद्रा माई का रथ सबसे छोटा है। जगन्नाथ जी का रथ में 16 पहिया लगता है, बलभद्र जी का रथ में 14 पहिया लगता है और सुभद्रा माई का रथ में 12 पहिया लगता है। इस तीनों रथ ऐसे बना जाता है और कोई जगह में इसी तरह रथ नहीं बना जाता है।
0: श्रीक्षेत्र धाम में भक्त के साथ भगवान के अपूर्व मिलन के दो मुख्य यात्राएं होती हैं। पहला स्नान यात्रा, दूसरा गुंडीचा यात्रा। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन मंदिर के स्वर्ण कुएं से 108 घड़े जल से श्री बलभद्र, देवी सुभद्रा, श्री जगन्नाथ और श्री सुदर्शन को स्नान कराया जाता है। इस दिन प्रभु श्री जगन्नाथ गजानन वेश धारण करते हैं। आषाढ़ कृष्ण प्रतिपदा से तीनों ठाकुर अणसर घर में रहते हैं। इस समय अणसर घर की पट्टी में तीनों ठाकुरों की एक चित्रपट की पूजा की जाती है, इसे पट्टदिया कहते हैं। दैतापति सेवक हलधर दास महापात्र के अनुसार,
3: मैं हूँ हलधर दास महापात्र, बलभद्र जी का 12 ग्रही दैतापति हूँ। प्रभु स्नान का बाद में अंदर जाते हैं, हमारा सेवा शुरू होता है, श्रृंगार करते हैं, वेश करते हैं। रात को समय भगवान अनसर पिंडी को चल जाते हैं। ये सेवा हमारा अमावस्या तक सेवा होता है। ये सेवा 15 दिन में चलते हैं। यहाँ अनसर का घर में शुक्ल वस्त्र परिधान होगा और शुक्ल फूल लगी होगा। एकादश का दिन महाप्रभु

0: अणसर खत्म होने के बाद प्रभु आरोग्य लाभ करते हैं। साधारण मनुष्य के जीवन में जो घटित होता है वही श्री मंदिर में भी होता है। अणसर के बाद नेत्रोत्सव, उसके बाद रथ यात्रा। ताल ध्वज, देव दलन और नंदी घोष तीनों रथ सुशोभित होकर सिंह द्वार के सम्मुख प्रभु की प्रतीक्षा करते हैं। धाड़ी पहंडी में कब आएंगी चतुर्धा मूर्ति?
1: रथ खला से तीनों ही रथ सज धज करके तैयार करके लाए जाते हैं और श्री मंदिर के महाद्वार के ठीक सामने उत्तर दिशा की तरफ मोड़ करके खड़ा कर दिया जाता है। ऐसे में भगवान जगन्नाथ अपने रत्न वेदी का त्याग करके बाहर निकलते हैं और पहंडी विजय करते निश्चलानंद सरस्वती महाराज अपने परिकरों के साथ तीनों ही रथों का वे अवलोकन करते हैं और रथों पर जाकर के अपना आत्मनिवेदन चतुर्धा देव विग्रहों को देते हैं। उनके वापस आने के बाद सीधे श्री नाहर से पुरी के गजपति महाराज भगवान जगन्नाथ के प्रथम सेवक तीनों ही रथों पर वे सोने के मुठ वाले झाड़ू से छेरा पोरा करते हैं और इस तरह से भगवान जगन्नाथ जब जाते हैं अपने गुंडीचा घर में जाकर वहां 7 दिन तक विश्राम करते हैं, उसको गुंडीचा महोत्सव कहते हैं।

0: रथ यात्रा की समाप्ति बाहुड़ा यात्रा में होती है। यात्रा तो समाप्त हो जाती है, पर प्रभु की अनंत लीला सिमंदिर के रत्न सिंहासन में चलती रहती है। सिमंदिर के शिखर पर पतित पावन की ध्वजा लहराती रहती है। उसी ध्वजा में सारे विश्वास का समन्वय होता है। ऐसा लगता है जैसे सबकी सांसें तरंगित हो रही है महोदधि में। और कभी इस दृश्य को शब्दबद्ध करते हुए भाव विभोर होके गाने लगते हैं, देखो ये नित्य नीलाचल सभी तीर्थों का संगम स्थल, देखो ये नित्य नीलाचल सभी तीर्थों का संगम स्थल।
1: ये था लघु रूपक नित्य नीलाचल। मूल उड़िया आलेख तरुण कांति राउत का था, जिसका हिंदी अनुवाद किया डॉक्टर रश्मि रेखा जिन्ना ने। वाचन और प्रस्तुति थी प्रज्ञा पारमिता साहू की। आकाशवाणी कटक से। भारत की सांस्कृतिक विविधता का एक सुंदर पक्ष ये भी है कि यहाँ ऋतुएं केवल मौसम नहीं बदलती, बल्कि अपने साथ स्वाद, रंग और उत्सव भी लेकर आती हैं। इसी स्वाद और विरासत की एक अनूठी झलक मिलती है दिल्ली में हर साल आयोजित आम महोत्सव में। यहाँ देश के अलग अलग राज्यों से लाई गई सैकड़ों किस्मों के आम न केवल प्रदर्शित किए जाते हैं, बल्कि भारतीय बागवानी, कृषि अनुसंधान और फल संस्कृति की समृद्ध परंपरा का भी परिचय कराते हैं। पत्रिका में हमारी अगली प्रस्तुति है इसी आयोजन पर। ये आम कुछ खास है।
2: मैं डॉक्टर एके सिंह, एक्स प्रिंसिपल साइंटिस्ट, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, और मैंगो के विषय में आपको ये बताना चाहूँगा कि आम महोत्सव जो हमारा करने का जो उद्देश्य होता है वो होता है कि हम पूरे कंट्री से सभी जगहों पे एक दूसरे को एक मिठास के रूप में ये परिचित करा सकें। और चूंकि एक आम ऐसा फसल है जो कि ट्रॉपिकल से लेके सब ट्रॉपिकल रीजन माने उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, हर जगह उगाया जाता है। केवल अंतर ये होता है कि हर जगह की जलवायु में प्रजाति विशेष का विशेष महत्व होता है, और उस सूक्ष्म जलवायु में जो क्षेत्र विशेष का होता है उसमें आम का स्वाद अलग ही होता है। तो हमारा उद्देश्य होता है कि हर क्षेत्र के आम यहाँ पे आए और वो अपनी मिठास पूरी जनता के बीच में ले जाए और जनता सभी प्रजातियों के बारे में जान सके कि उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम तक कौन सी प्रजातियां उगाई जाती हैं। इस बार देखिए वैसे तो आए थे 20 पार्टिसिपेंट्स ऐसे आए थे जो ग्रोवर्स थे, और 6 पार्टिसिपेंट्स ऐसे आए थे जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थे, और वो हमने कवर किया था उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, दिल्ली, तो 5-6 स्टेट ही हमने पूरा कंप्लीट कवर किया।

0: डॉक्टर नितेंद्र विक्रम सिंह है, प्रधान वैज्ञानिक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से। हमारे पास हमारे संस्थान से विगत 15 वर्षों में लगभग 10 संकर किस्में विकसित की गई है आम की। उषा सूर्या है, उषा अरुणिमा, उषा सूर्या एक सिलेक्शन है, बाकी सारी संकर किस्में है। अरुणिमा है, आपका प्रतिभा है, श्रेष्ठ है, पीताम्बर है, लालिमा है, अभी रिसेंटली हमने दीपशिखा भी रिलीज की है। मोस्टली अम्रपाली और संचेषण के संकरण से बना है, पर कुछ किस्में जिसमें दशहरी और लाल सिंदूरी भी सम्मिलित। जैसा आप सभी देखते हैं, ऐसे आम महोत्सव यहाँ चल रहा है और आम के नाम पे देखिए दिल्ली की जगह में कितने लोग, कितनी भीड़ यहाँ उमड़ी। आम केवल एक फल नहीं है, आम एक इमोशनल कनेक्शन है लोग। जैसे आप यूपी की बात कर लें तो वहाँ दशहरी है, आप वेस्ट बंगाल की बात कर लें वहाँ मालदा बहुत फेमस है, बिहार में जरदालू है, किशनभोग है, आप साउथ में चले जाए, आंध्र में चले जाए तो वहाँ बैगना पल्ली है, महाराष्ट्र में चले जाए तो अल्फांसो है, गुजरात में केसर है। तो ऐसे ही विभिन्न किस्में हैं जो मिठास अपने स्वाद से लोगों को एक दूसरे से जोड़ती है।
1: मेरा नाम भरतराज सिंह यादव है, मैं एमपी कठियोड़ा से आया हूँ। ऊर्जा ये साइज में सबसे बड़ा, इंडिया का सबसे बड़ा आम है और ये हमारे कठियोड़ा में होता है, हमारे गाँव में। और भी बहुत सारी वेराइटीज है लेकिन हमारे सीजन अभी खत्म हो चुका है तो हम लोग इतनी लेके आए।
2: मेरा नाम रामकिशोर मौर्या है, मैं मलिहाबाद लखनऊ से हूँ। हमारे यहाँ अनेक प्रकार की प्रजातियों के आम पाए जाते हैं जिनको लोग जानते नहीं, इसलिए दिखाने के लिए कि लोग जाने पहचाने। हम अकेले 250 वैरायटी यहाँ आम की वैरायटी प्रस्तुत किए हैं, जिसमें खट्टे मीठे हैं और कुछ चूस कर खाने वाले हैं, कुछ काट के खाने वाले हैं, कुछ अचार की वैरायटियाँ विशेष कर, जो कि सभी प्रजातियों का अपना एक अनूठा स्वाद है, ताकि इन लोगों को मार्केट में जहाँ भी दिखे उनका स्वाद ले और खाए, तभी उसके बाद हमारे किसान की आमदनी बढ़ेगी। जो हमारी पुरानी हमारे पैतृक वैरायटियाँ है वो जीवित रहने, अन्यथा विलुप्त हो जाएंगी।
3: मैं कदीम चंदन नर्सरी मलिहाबाद लखनऊ से आया हुआ हूँ। मेरा नाम शेख शादाब अली है, मेरा पुरखों से ये काम चला आ रहा है नर्सरी का, जो अलग अलग वैरायटी को डेवलपमेंट करते हैं, तैयार करते हैं, पौधे नए नए निकालते हैं। हमारे पास तमाम सी वैरायटी हैं, सुरखा बर्मा है, गुलाब खास है, हुसनारा है, दशहरी है, राम केला है, जन्नत पसंद है, साजिद पसंद है, बनारसी है, रस कपूर है, तमाम सी वैरायटी, इतनी वैरायटी है कि यहाँ पे आपको हम गिनाते हुए थक जाएंगे। अदर सी तमाम सी ऐसी वैरायटी है जो आप एक दूसरे को मिलाती है, उसकी मिठास इतनी मिठास होती है जो दिल को खुश कर देती है और दिलों में मोहब्बत पैदा कर देती है। जो भी आम खाते हैं और दिल से हमको दुआएं देके जाती
4: है। ये आम कुछ खास है। दिल्ली के वार्षिक आम महोत्सव के बहाने भारत की फल समृद्धि, कृषि परंपरा और विविधता की रोचक यात्रा अभी आपने सुनी। सहयोग श्रीनाथ दीक्षित का था। भारत की सांस्कृतिक धरोहर केवल परंपराओं से नहीं, उन कलाकारों से भी समृद्ध होती है जो अपनी साधना से लोक और शास्त्र के बीच एक सेतु बन जाते हैं और देह के परे जाकर समय पर अपने हस्ताक्षर अंकित कर देते हैं। दुख की बात यह है कि बीते कुछ समय में ऐसी ही दो विशिष्ट विभूतियों ने इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। सबसे पहले बात लोक गाथा की विश्व यात्री पद्म विभूषण तीजन बाई की। छत्तीसगढ़ की लोक गाथा पंडवानी को गांव की चौपाल से अंतरराष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाने वाली तीजन बाई ने अपने सशक्त गायन, प्रभावशाली अभिनय और अद्भुत कथन शैली से लोक कला को नई पहचान दिलाई। उन्होंने परंपरागत सीमाओं को तोड़ते हुए पंडवानी की कपालिक शैली को अपनाया और अपनी अनूठी प्रस्तुति के माध्यम से भारतीय लोक नाट्य को विश्वव्यापी सम्मान दिलाया। उनके स्वरों में लोक जीवन की मिट्टी, महाभारत की कथा और भारतीय लोक संस्कृति की आत्मा एक साथ सुनाई देती है। सुनते हैं तीजन बाई से आकाशवाणी रायपुर के लिए रिकॉर्ड किया गया उनका एक पुराना साक्षात्कार।

वहाँ हमार लालन पालन हुईस। हमर माँ के नाम सुखबती और पिताजी के नाम छनुक लाल रही से। छह भाई बहनी रहे हैं, दो भाई चार बहनी। गरीब होने के नाता ऐसे गुजारा बहुत दिन ले चलत रही से। अब जब मैं बड़े लड़की हूँ तो संज्ञान हो गए तो लोग लेके ला छोड़ के चल देवे। भाई बहनी मन के पूरा देखभाल मैं करूँ। हमन छयो भाई बहनी में कोनो पढ़े लिखे नहीं है। हमार दाई है बांस गीत गावे और हमार बाबू बांस बजावे। माँ के साथ गुनगुनाए के जो आदत पड़ीस तो ऐसे पड़ीस कि वो एकदम लट लग गए। लट लगे तो मैं कर्मा ददरिया सुआ पड़की बांस गीत गा लेते रहे हूँ। माँ गावे और

लाठी भोरा भी अब्बड़ खेलत रहे हो, कबड्डी खेलत रहे हो, सूर खेलत रहे हो, खो खो खेलत रहे हो। तो रास्ता में मोर नाना के घर पड़त रही से, छोटे नाना के दनियारी गांव में, तो छोटे से नौकर झोपड़ा रही से, ते में भीतर में बैठ के पंडवानी के गायन गात रही से, बिजलाल पारधी मोर नाना जी के नाम। और वो ऐसे टेर लगाईस द्रौपदी बन के श्री कृष्ण जिला, तो वो आवाज सुने के बाद तो मोर रोम रोम एकदम खड़ा हो गई। अरे बाप रे, हाथ कतेक सुंदर एकर आवाज और कतेक बढ़िया भगवान ल पुकारत है। और ये लोग मन हा बिजलाल नाम रही से, पर भगवान के नाम जपे ना तो जपरी कहा भी। 11-13 के लगभग में रही हूँ मैं, तो ये बच्चा कतेक सुंदर एकर दिल में लगाव है। तो सुने बरा थे कि वो छोटे से चटाई निकाली सब कथे में बैठ बेटा में बैठ। कतका कन सुने ऐसे की कही तो एक हफ्ता के जतका कहानी सुनाए रही से नहीं, तेला 5-10 मिनट में खत्म कर दियो। तो नाना के आंखी में आंसू आ गए। उसी समय वो बोली कि बेटा मोर घर में हीरा है हे प्रभु, और मैं नहीं परखे सके हूँ इसे की। आज भी गुंजा थे टेर के आधार पे ही मैं टेर लगा था जब पंडवानी गाता हूँ। तो

गदगद कर देती। ऐसे लग जाते कि हम धरती में नहीं कि स्वर्ग में हनका ऐसे लागते, मोर मन लागते भाई। जब अच्छा कथा में हम डूब के उन मन ला सुनाथन और उन मन कोई कोई जगह रोए धोए की बात है, उन मन रोना शुरू कर देते, हम उतका सम्मान पाके अपन आप ला हम पूरा उकरे ऊपर अर्पण कर देथन ते हमला कई कौन सी मिट्टी में बना के हमला भेजे, घर से हमला सब लोग ले सम्मान और प्यार मिला थे, ये में अब बड़ा आनंद आते। आज भी वही है, अब आगे बार मालिक के हाथ।

मैं तो एक तो नारी हूँ है ना, और नारी के पात्र कहे माँ मोला कोई कष्ट नहीं पड़े और आनंद आते ज्यादा, पर जब भीम के रोल करता हूँ तब तो दुगुना आनंद आते। मैं अपन आप मैं भीम समझे लग जाता हूँ कि मैं ही भीम हूँ, कि वो की जोशीला गदा पकड़ के रिंग था, तेकर कारण वही है कि मैं सचमुच में वो समय मैं भीम की रोल नहीं करके मैं खुद भीम हूँ, ऐसे अनुभव लागते।

0: कर सकत रहे हूँ, ओला एती तेती बहका सकत रहे हूँ, ओमें अच्छा अच्छा रोचक डाल सकत रहे हूँ, पर वो रोचक डाले में वो चीज नहीं दिखतीस, वो तो बर्बाद हो जातीस ना, फिर नाम कहाँ होतीस। तो ये चीज बचाए के खातिर हमला सब जने जुल मिल के अपन संस्कृति ला अच्छा सजा के रखे मा हमन ला फायदा है, हमारे आने वाले पीढ़ी मन ला फायदा है। सिखाए में जो अनादा थे मैं अब कुछ मुला अच्छा नहीं लगे, कतको लेकर रोते रोवत रोवत गाथे, तो बोले भूर यारो बोले चुचकारो ये गाडर ही ते गाडर भी बेटा बहुत सुंदर गाले था, बोले बढ़ावा भी दो। तो ये में बड़ा आनंद आते मने गुरु बन के काम करो, तो आपके समय में मोला बहुत है अच्छा लागते, लेका मल्ला सिखा के दे दो।
1: तपी करत मैं धुरुला भेटे हूं और नरसिंह ला भेटे हूं खंभा मा, भुईर बिनत सौरी ला भेटे हूं क्यों टल भेटे हूं।

0: और अब स्मरण करते हैं भारतीय रंगमंच की एक महान विभूति विजया मेहता का। विजया मेहता आधुनिक भारतीय रंगमंच की उन अग्रणी निर्देशकों में थी जिन्होंने मराठी रंगभूमि को नई सौंदर्य दृष्टि, प्रयोगशीलता और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। उन्होंने शास्त्रीय और आधुनिक रंग भाषा के बीच एक सशक्त सेतु बनाया। अभिनय, निर्देशन, रंग प्रशिक्षण और नाट्य चिंतन, हर क्षेत्र में उनका योगदान उल्लेखनीय रहा। उनके व्यक्तित्व और योगदान पर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं सुप्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक अमोल पालेकर।
1: विजया जी एक ऐसी अभिनेत्री थी जिसे दिग्गज कहना भी कम होगा। एक छोटी सी बात मैं कह दूं कि विजया जी के बाद जितनी भी अभिनेत्रियां मराठी स्टेज पे आई और बड़ी अच्छी अभिनेत्री, उन सब पे और जिन्होंने विजया जी के साथ काम किया था, उन सब पे विजया जी के अभिनय की छाप इतनी जबरदस्त थी कि ये कौन से स्कूल से आई है ये बताने की जरूरत नहीं रहती थी। मतलब उनके करियर के शुरुआत से आखिर तक उन्होंने एक ऐसी छाप छोड़ दी मराठी रंगमंच पर कि जिसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। रंगायन जैसी संस्था का उन्होंने निर्माण किया और अलग अलग प्रायोगिक नाटक उन्होंने पेश करना शुरू किया। उन्होंने एक अपना प्रेक्षक वर्ग बनाया जो बढ़ते गया। और विजया जी के बारे में एक बात कहना बहुत जरूरी है और समझना, विजया जी ने उनकी शुरुआत प्रायोगिक रंगमंच से की लेकिन वहां से वो मेनस्ट्रीम रंगमंच पर चली गई और मेनस्ट्रीम रंगमंच पर उन्होंने अभिनय भी किया और निर्देशन बहुत ज्यादा किया। सवाल उठाना, अलग किस्म के नाटक पेश करना, नए नए नाटककार पेश करना, ये सारा योगदान विजया जी ने बड़े काबिलियत के साथ किया।
0: भारतीय लोक कला और रंगमंच की ये दोनों विलक्षण साधिकाएं अपने अपने क्षेत्र में सृजन, समर्पण और सांस्कृतिक प्रतिबद्धता की ऐसी विरासत छोड़ गई हैं जो हमेशा हमारा मार्गदर्शन करती रहेगी। भारतीय संस्कृति की शक्ति उसकी निरंतरता में है। प्रकृति के संरक्षण से लेकर लोक आस्था तक, कृषि परंपरा से लेकर सृजनशील कलाकारों की विरासत तक, हर धारा एक ही सांस्कृतिक प्रवाह का विस्तार है। इसी विश्वास के साथ आज की अखिल भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती यहीं संपन्न होती है। नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 10 बजने को है अब आकाशवाणी मुंबई से संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम रिले किया जाएगा।

0: ये आकाशवाणी है। नमस्कार, संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है डॉक्टर रामावरपु माधुरी देवी का कर्नाटक शैली में वीणा वादन।
1: दिस इज आकाशवाणी। गुड इवनिंग लिसनर्स, वेलकम टू द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक।

0: Tonight we present a Veena recital in Carnatic style by Dr. Ramavarapu Madhuri Devi. Dr. Ramavarapu Sharath Babu और श्रीमती विजयलक्ष्मी की बेटी डॉक्टर आर माधुरी देवी ने वीणा वादन की शिक्षा अपनी माताजी वीणा गुरु श्रीमती रामवरपु विजयलक्ष्मी के पास प्राप्त की। आपने संगीत की बारीकियां सुप्रसिद्ध वीणा विद्वान डॉक्टर ई मणि शंकर शास्त्री से सीखी। मनोधर्म का पालन करते हुए वीणा पर लयबद्ध तरीके से रस और भाव का प्रदर्शन डॉक्टर रामवरपु माधुरी देवी की विशिष्टता रही है। वीणा वादन में आकाशवाणी द्वारा ए ग्रेड प्राप्त डॉक्टर आर माधुरी देवी ने कई भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी कला का प्रदर्शन किया है। आपको विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित भी किया जा चुका है। बॉर्न टू डॉक्टर रामावरपु शरद बाबू एंड लेट श्रीमती रामावरपु विजयलक्ष्मी, डॉक्टर माधुरी देवी इज एन ए ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी। शी बिगैन हर ट्रेनिंग इन वीणा एट एन अर्ली एज अंडर द गाइडेंस ऑफ हर मदर, a well-known Veena guru, and even gave her first presentation at the age of 8. She later honed her skills under the tutelage of the renowned Veena artist, late Dr. Imani Shankar Shastri. Dr. Madhuri Devi has earned her PhD degree for her thesis on the rasa elements in Telugu musical compositions of the prominent composers since Annamacharya up to 19th century. As an artist, she has performed extensively in respected platforms all over the globe and is the recipient of a number of awards, titles and felicitations. Her music has been appreciated for expounding the rasa and bhava aspects of melody, manodharma and her command over laya. She also has a number of compositions to her credit.
1: आज के कार्यक्रम में डॉक्टर रामवरपु माधुरी देवी की संगत कर रहे हैं मृदंगम पर श्री महादासु येडकोंडलु और घटम पर श्री मावडूरु सूर्यप्रसाद।
0: In tonight's concert, Dr. Ramavarapu Madhuri Devi is accompanied by Sri Mahadasu Yedukondalu on the mridangam and Sri Mavadooru Suryaprasad on the ghatam.
1: Dr. R. Madhuri Devi, आज के कार्यक्रम का आरंभ नाटराग में मुत्तैया भागवतार की रचना शक्ति गणपतिम से कर रही हैं, जो कि रूपक ताल में निबद्ध है।
0: Dr. Ramavarapu Madhuri Devi begins her concert with Shakti Ganapati, a composition of Muttaya Bhagavatar in Nataragam Rupak Talam.

0: डॉक्टर आर माधुरी देवी की अगली प्रस्तुति है रीति गौड़ राग में संत त्यागराज की रचना नन्नु विड़ची कदलकुरा जो कि त्रिपुट ताल में निबद्ध है.
1: She next presents a composition of Saint Tyagaraja in Riti Gaula Ragam, Triputa Talam.

0: अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज आप डॉक्टर रामावरपु माधुरी देवी का कर्नाटक शैली में वीणा वादन सुन रहे हैं। आपकी संगत कर रहे हैं मृदंगम पर श्री महादासु येडुकोंडलु और घटम पर श्री मावडूरु सूर्य प्रसाद। कार्यक्रम को जारी रखते हुए डॉक्टर आर माधुरी देवी की अगली प्रस्तुति है कापी राग में वनमालीय जी आर स्वामी की रचना जानकी रमणा, जो कि आदि ताल में निबद्ध है।
1: You have been listening to a Veena recital in Carnatic style by Dr. Ramavarapu Madhuri Devi in tonight's national program of music. She is accompanied by Sri Mahadasu Erukondalu on the Mridangam and Sri Mavaduru Surya Prasad on the Ghatam. Continuing her presentation, Dr. Madhuri Devi will now present Janaki Ramana, a composition of Vanamaliya J.R. Swami in Kapi Ragam Aditalam.

0: कन्यावर्तनम, जिसे मृदंगम पर प्रस्तुत किया श्री महादासु येड़ुकोंडलु ने और घटम पर श्री मावडूरु सूर्य प्रसाद ने। डॉक्टर रामवरपु माधुरी देवी आज के कार्यक्रम का समापन बेहाग राग में डॉक्टर मंगलमपल्ली बालमुरली कृष्णाकृत तिल्लाना से कर रही हैं, जो कि आदि ताल में निबद्ध है।
1: That was Thaniyavartanam on the Mridangam by Sri Mahadasu Erukondalu and on the Ghatam by Sri Mavuduru Surya Prasad. Dr. Ramavarapu Madhuri Devi concludes her performance this evening with a Tillana of Dr. Mangalampalli Balamurali Krishna. It is in Behag Ragam Aditalam.

0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी तक आप डॉक्टर रामवरपु माधुरी देवी का कर्नाटक शैली में वीणा वादन सुन रहे थे। आपकी संगत कर रहे थे मृदंगम पर श्री महादासु येडुकोंडलु और घटम पर श्री मावडूरु सूर्य प्रसाद। इसी के साथ आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम यही सम्पन्न होता है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के विशाखापट्टनम केंद्र में ध्वन्यांकित किया गया।
1: With this we come to the end of tonight's national program of music, wherein we brought you a Veena recital in Carnatic style by Dr. Ramavarapu Madhuri Devi. She was accompanied by Sri Mahadasu Erukondalu on the mridangam and Sri Mavuduru Surya Prasad on the ghatam. This program was recorded earlier at the studios of Akashvani Vishakhapatnam.
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर।
3: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गई हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के सामने अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ब्यौरा हमारी विशेष संवाददाता से।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी ऐतिहासिक 2 दिवसीय न्यूजीलैंड यात्रा पूरी कर भारत के लिए रवाना हो गए हैं। 4 दशकों से अधिक समय बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा रही जिसने दोनों देशों के संबंधों को नई गति दी। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच व्यापक वार्ता हुई। दोनों नेताओं की मौजूदगी में रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन

0: पशुधन तथा डेयरी एवं पशुपालन सहित 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को न्यूजीलैंड का विश्वसनीय मित्र बताते हुए भारतीय समुदाय के योगदान और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह यात्रा भारत न्यूजीलैंड संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत है। मंजुमीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत राय भी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए समिति गठन करने का निर्णय लिया गया था। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी ने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के चुनाव के एक साथ कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। गोवा में मीडिया से बातचीत में श्री चौधरी ने कहा कि सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाली 41 सदस्यीय समिति सरकारों, राजनीतिक दलों, संवैधानिक विशेषज्ञों, नागरिक समाज और अन्य हितधारकों के विचार जानने के लिए राज्यों का दौरा कर रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के नंदीगामा क्षेत्र में स्थित मेधा रेल कोच कलपुर्जा निर्माण सुविधा स्थल का निरीक्षण किया। 375 एकड़ भूभाग में फैली ये विशाल औद्योगिक इकाई रेलवे के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति को प्रदर्शित करती है। अपनी यात्रा के दौरान श्री वैष्णव ने मेक इन इंडिया पहल के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में निजी क्षेत्र के उद्यमों को बढ़ावा देने संबंधी सरकार की वचनबद्धता पर बल दिया। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा लगाए गए उस आरोप की आलोचना की है जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि श्री अब्दुल्ला का ये बयान अत्यंत गैर जिम्मेदाराना है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट के आज वियतनाम के फु कोक द्वीप के पास पलट जाने से 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि मृतकों में 13 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मृतकों की सूची साझा करते हुए कहा कि ये नाम वियतनामी अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। दूतावास के अनुसार मृतकों में से 10 तमिलनाडु से, 3 आंध्र प्रदेश और 2 केरलम में से थे। नाव में 32 भारतीय पर्यटक, 3 चालक दल के सदस्यों और 1 परिचारक सहित कुल 36 लोग सवार थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। साउथैम्पटन में खेले जा रहे 5 T20 मैचों की श्रृंखला के अंतिम मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत के सामने 258 रन का लक्ष्य रखा है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 19वें ओवर में 7 विकेट पर 193 रन बना लिए हैं। फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। दूसरे मुकाबले में कल सुबह 6:30 बजे मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अमृत भूषण। Prime Minister Narendra Modi has concluded his historic 2-day visit to New Zealand and departed for India. The visit, the first by an Indian Prime Minister to New Zealand in over 4 decades, gave a major boost to bilateral ties. During the visit, Mr. Modi held talks with his New Zealand counterpart, Christopher Luxon. The two leaders witnessed the exchange of 5 memoranda of understanding in areas including defence, tourism, sports, disaster management and dairy and animal husbandry. A major highlight of the visit was the community event at Auckland's Spark Arena, attended by over 10,000 members of the Indian diaspora. Prime Minister Modi thanked Prime Minister Luxon for his warm hospitality and said the visit had opened a new chapter in India.